FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की नौवीं तिथि, तदनुसार 30 मई 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारे

FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजीआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी।

0: न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जन्म जन्म के पाप पुण्यों से संवर्धित इस काया को, इस तन मन को निर्मल करना इतना आसान नहीं। इसे निर्मल कर सकते हैं तो केवल प्रभु की शरण में जाकर, उनके नाम का सुमिरन कर।

हमें सुख के समय भी सृष्टि के पालनकर्ता का ध्यान करना चाहिए। परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हों या अनुकूल, इस भंवर में हमारी नैया का केवल एकमात्र सहारा है राम नाम।

हम भले ही कितने ही भौतिक साधनों को एकत्र कर लें, लेकिन हमारे मन को अनंत सुख केवल ईश्वर के चरणों में ही मिल सकता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं रामचरित मानस गान। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है, प्रस्तुति स्वर श्रीकांत परगांवकर का है।

सिंहासन पर श्रीराम की पादुका की स्थापना करके भरत नंदीग्राम में पर्णकुटी बनवा वहां इस प्रकार अनासक्त भाव से निवास करने लगे हैं जिस प्रकार चंपा के उद्यान में भ्रमर अनासक्त रहता है। उनका शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है किंतु मुखमंडल की कांति पूर्ववत बनी हुई है। शरद ऋतु में जल घटता है किंतु बेंत विकसित होते हैं और कमल खिल जाते हैं। शम दम संयम और उपवास रूपी नक्षत्रों से भरत जी के हृदय का आकाश आलोकित है। उनकी निष्ठा और विश्वास ध्रुव तारे की भांति अटल हैं। 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है। श्री राम की स्मृति आकाश गंगा जैसी निर्दोष और प्रकाशमान है। भरत नित्य प्रति श्री राम की पादुका का पूजन करके उन्हीं से आज्ञा मांगकर राजकाज करते हैं। उनका परम पवित्र आचरण व्रत और संयम देखकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं। अयोध्या कांड के समापन प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत का जन्म यदि न होता तो मुनियों के लिए भी दुष्प्राप्य यज्ञ नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता।

श्रोताओं, अभी आपने सुना रामचरित मानस गान। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था और प्रस्तुति स्वर श्रीकांत परगांवकर का था। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज के दिवस की बात करें तो आज शनिवार है। विक्रम संवत 2083 के अधिक ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, तदनुसार 30 मई 2026। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं ये देशगान।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना संदेश। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको देते हैं जानकारी हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

गीता संदेश आप सुनेंगे शाम 6:20 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे अध्याय 4 के श्लोक 22 से 24 की व्याख्या। व्याख्याकार होंगे डॉक्टर ओम प्रकाश राय।

शाम 6:30 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम ग्राम संसार का समय रहेगा शाम 7:00। सुबह 7:40 पर आप सुनेंगे हरियाणवी लोकगीत का कार्यक्रम बाजे नगाड़ा।

युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा शाम 5:30 पर। कार्यक्रम दिल पुकारे का आनंद लीजिएगा सुबह 7:10 पर। सुबह 8:30 पर हम लाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्वरांजलि। कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र का समय रहेगा सुबह 10:00।

शाम 5:05 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम जय जवान हम लाएंगे शाम 7:30 पर। शाम 7:45 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता का। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन सकते हैं रात 8:00। रात्रि 10:00 आनंद लीजिएगा व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें का।

ये थी हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7 बजे सुनिएगा हिंदी समाचार, 7:05 पर समय रहेगा अंग्रेजी समाचारों का, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: इत्यस्य स्थापना कृता अस्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् आसीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटंस दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटंस दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर

मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पेश ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों अभी आपने सुना गीत फिल्म प्रेम रोग से। इस गीत को लिखा था संतोष आनंद ने और आवाज़ थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। और आइए कार्यक्रम दिल पुकारे में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म राजा और रंग से। ये गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दोस्तों अभी आपने सुना गीत फिल्म राजा और रंग से, और आइए कार्यक्रम दिल पुकारे में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म कस्मे वादे से, और ये गीत है किशोर कुमार, अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल पुकारे आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अभी आपने सुना गीत फिल्म कस्मे वादे से। ये गीत था किशोर कुमार, अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। और आइए कार्यक्रम दिल पुकारे में सुनिए ये अगला गीत। ये गीत है इंदीवर का लिखा हुआ, संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने और आवाज़ है लता मंगेशकर और मुकेश की। और ये गीत है फिल्म सरस्वती चंद्रा से।

अभी आपने सुना गीत फिल्म सरस्वती चंद्रा से, और आइए कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म अकेले हम अकेले तुम से, और ये गीत है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

0: तो इसी के साथ कार्यक्रम दिल पुकारे अब यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल पुकारे FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हरियाणवी लोकगीत का कार्यक्रम बाजय नगाड़ा। हरियाणवी लोकगीत के कार्यक्रम बाजय नगाड़ा में हमारे आज के कलाकार हैं पवन कुमार गौर। आइए कार्यक्रम में लोकगीत सुनने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 और दोपहर 12:30 DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
4: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

खांड कैसी गच्ची होगी बठियारी की रंदी होई कदे बिना कच्ची होगी जुनसी मंगे राम का गया वत सोला अंडे।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोकगीत का कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा। और हरियाणवी लोकगीत के कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा में हमारे आज के कलाकार थे पवन कुमार गौर। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 8:15 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पैसे दो हस्बैंड जी?
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के?
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
4: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
3: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
5: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
3: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने

0: अली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर 3rd स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है।

0: 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कुंकड़ी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजीलॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप सभी श्रोताओं को महक का प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, हम जानते हैं कि कार्यक्रम में समय हो गया है कि हम आपसे साझा करें आज का प्रश्न, और हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे। तो चलिए आइए, आपको बताते हैं आज का हमारा प्रश्न, जिसका जवाब आप हमें देंगे और हम आपके नाम को करेंगे कार्यक्रम में शामिल। तो दोस्तों, आज आपको बताना है कि खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। दोस्तों, आपको देना है इस आसान से प्रश्न का जवाब, लेकिन प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए। आज आपको बताना है खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, और इस प्रश्न का जवाब आप हमें दे सकते हैं 8:45 तक हमारे केंद्र के नंबर 9466021336 पर। श्रोताओं, एक ही बार मैसेज कीजिएगा और एक मैसेज में केवल 3 ही नाम शामिल कीजिएगा, और हम आपके मैसेज को, आपके नाम को कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे।

दोस्तों आइए अब आपको कार्यक्रम में जानकारी देते हैं गोवा राज्य दिवस के बारे में। दोस्तों आज 30 मई है और 30 मई को गोवा का जो है वो राज्य स्थापना दिवस होता है। गोवा राज्य स्थापना दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। दोस्तों वर्ष 1987 में 30 मई को गोवा को पूर्ण राज्य दिवस का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, जिससे यह भारत का 25वां राज्य बना था। और अगर इसकी ऐतिहासिक

भूमि के बारे में बात की जाए तो गोवा पर 1510 से 1961 तक पुर्तगालियों का शासन था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगालियों ने गोवा को नहीं छोड़ा, जिसके कारण भारत सरकार ने 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन और दीव को मुक्त कराया। इसके बाद 1962 में संविधान के 12वें संशोधन के द्वारा इन क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 1967 में गोवा में एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया, जिसमें गोवा के लोगों ने महाराष्ट्र में विलय के बजाय एक अलग पहचान बनाए रखने का निर्णय लिया और 30 मई 1987 को गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से अलग कर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि दमन और दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। इस अवसर पर कोंकणी को गोवा की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया और पणजी को राजधानी बनाया गया। दोस्तों, ये थी जानकारी गोवा राज्य दिवस के बारे में।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मंगल भवन मंगल हारी।
8: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
9: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
10: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
11: दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम खाने की बात करते हैं, मतलब जब हम सब्जियों की बात करते हैं, तो सबसे पहले कौन सी सब्जी जो है, वो कौन सा खाद्य पदार्थ है जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है? आलू है ना। दोस्तों 30 मई को हर दिन अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है और यह दिन वैश्विक खाद्य सुरक्षा, पोषण और गरीबी उन्मूलन में आलू के महत्व को उजागर किया जाता है और साथ ही इसके आर्थिक और कृषि मूल्य पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आलू दुनिया भर में 2/3 से अधिक आबादी के आहार का एक मुख्य हिस्सा है। यह लाखों किसानों और श्रमिकों के लिए स्थायी रोजगार और आर्थिक विकास का एक मुख्य स्रोत है और दुनिया भर में लगभग 4000 से ज़्यादा प्रकार के आलू उगाए जाते हैं। दोस्तों आलू की उत्पत्ति जो थी वो दक्षिण अमेरिका के एंडीज क्षेत्र में हुई थी जहां यह हजारों वर्षों से उगाया जाता था। फिर 16वीं शताब्दी में यह यूरोप पहुंचा और पूरी दुनिया में फैल गया और संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनाना घोषित किया, जिसका पहला आयोजन 2024 में हुआ। दोस्तों आलू दुनिया की तीसरी सबसे अधिक खपत की जाने वाली फसल है जो चावल और गेहूं के बाद आती है। और आपको बता दें कि आलू का सबसे जो प्रमुख घटक है वो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और इसमें मुख्य रूप से स्टार्च पाया जाता है। दोस्तों आलू में विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं जो एक पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ से बनाते हैं और आलू में लगभग 75-80% पानी होता है जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आलू की खेती में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर बढ़ते हैं, जिससे कि विशेषकर छोटे और महिला किसानों के लिए फ़ायदा होता है और आलू की खेती में तुलनात्मक रूप से पानी जो है और भूमि, इन दोनों की ही जो ज़रूरत है वो कम पड़ती है और जिससे ये पर्यावरण के लिए अनुकूल फसल बनती है। दोस्तों भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है और अगर भारत में भी हम प्रमुख प्रदेशों की बात करें, प्रमुख राज्यों की बात करें, तो भारत के

जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। दोस्तों ये थी जानकारी कि हमारा जो सब्जियों का मुख्य खाद्य पदार्थ है आलू, उसका आलू जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसके बारे में।

दोस्तों, कार्यक्रम में हमने आपसे प्रश्न किया था कि खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, और इसका सही जवाब है नई दिल्ली। खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन 28 और 29 मई 2026 को NASC कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सम्मेलन जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें राज्य कृषि मंत्रियों, ICAR अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करना, नवीन कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादकता एवं लचीलेपन में सुधार करना था। और जिन श्रोताओं ने हमें आज के प्रश्न का सही जवाब दिया है, तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं उन श्रोताओं के नाम। योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से आप हैं, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल, शिलाई हिमाचल प्रदेश से तन्मय सिंह और सिद्धांत सिंह, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से आप हैं, गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले, शिलाई हिमाचल प्रदेश से ललिता सिंह, भगवान सिंह, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले, सोलन हिमाचल से आप हैं टिया और कृष्णा, मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह, ढाणी कुतुबपुर हांसी हिसार से, क्षमा कीजिए, ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अनाया और ओजस अवाना, और गांव चोहलदा बागपत से आप हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, आकली दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी, लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से आप हैं कृति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, और गांव सांतड़ी से ईश्वर दयाल कंबोज, लाजवंती कंबोज और भव्य कंबोज, अनारकली बाजार जगराव से आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, छत्तीसगढ़ बोर्ड सरा से आप हैं वैभवी साहू, विभूति साहू, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से माघीराम सैनी, पूनम सैनी, गांव ब्राह्मणावाला भाना नरवाना से मेघराज शर्मा, कुरुक्षेत्र से गौतम, गांव सातड़ी से मदन कंबोज, प्रियांशु कंबोज और समृद्ध कंबोज, बिहार स्टेट से डब्लू उल्लाह बेलदार, वलीउल्लाह बेलदार, सोनम वली बेलदार, संबलपुर काकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, और हमें सही जवाब दिया है आप हैं बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुनत,

और हमें सही जवाब भेजा है आप हैं सोंगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से कोमल सेन, तोषण सेन और विनायक सेन, नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनीता जाधव और सोनल प्रसाद जाधव, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, बुल्ढाना वडचिंगी से अमोल मानकर, बुल्ढाना इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, नागल से इंद्राज, जगूड़ी से रणधीर बांगड़ और युगम, गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार कंबोज, वंश और भुवेश कुमार कंबोज, गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी, मोहम्मद जोहान सैफी, लीबा मलिक, और हमें सही जवाब भेजा आप हैं गांव हीरा वाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, जिला हिसार से आप हैं सज्जन जांगड़ा, कार्तिक और वेदांश जांगड़ा, राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद, और हमें सही जवाब दिया है आप हैं महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण और राहुल साहू, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बाता, नीलम बाता, सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, हियेश कुमार चंदन, और हमें सही जवाब दिया है आप हैं रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और बेबी फातमा गाजी, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आप हैं आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर, डेर पाटन गुजरात से धीरज वीरबारी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा और निमित दिशानी, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन और रचिता बिटिया, और पंचकुला चंडीगढ़ से आप हैं राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु, छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू, भोपालगढ़ राजस्थान से आप हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार, धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे और संदीप बाठे, गुजरात गांधीग्राम से आप हैं प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और हिरेन भाई, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराज से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप यमेकर, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु, सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से आप हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, मामूलवाड़ी महाराज से सोपान ताड़े और विजया ताड़े, जमशेदपुर से हरजिंद्र भाटिया, एंजल भाटिया और सोनू भाटिया, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से आप हैं रविंद्र और इंद्रजीत कौर, सातड़ी से मदन कंबोज, प्रियांशु कंबोज और स्मृत कंबोज, गांव उगाला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, और हमें सही जवाब दिया है आप हैं रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, खैल बाजार पानीपत से आप हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू भावना मल्होत्रा और अनिल कटारिया, ताजमंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर और मोहम्मद हसनैन पवार, बंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश गौड़ और आशीष गौड़, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राजेश सावले पाटिल, कल्लनगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी पवार और हीना सईद खोखर, बनबगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, बलोदा छत्तीसगढ़ से आप हैं दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, गांव बांडीवाला फाजिलका से हमें सही जवाब दिया है गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से आप हैं ओम बागड़िया, क्रियांश बागड़िया और बेबी गरिमा बागड़िया, साई विहार रामपुर से आप हैं सरिता मौर्य, गौतम बी प्रकाश और कुछ गौतम, रादौर से राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा, साहिल पुजारा, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े और करुणा कांबड़े, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, और गुजरात गांधीग्राम से आप हैं प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और लड्डू कुमारी, तराई माल रायगढ़ से अंशु साहू और निशु साहू, और हमें सही जवाब दिया है भिलाई छत्तीसगढ़ से आप हैं मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भारशंकर, श्रीमती प्रिया भारशंकर और कुमारी समीक्षा भारशंकर, बीलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जाहिद अली सैफी और आबाद खान, कोरासी छत्तीसगढ़ से आप हैं पवन क्रांति साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू, सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण भाई गुजराती, जगदीश भाई गुजराती और हिरेन भाई, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से

मुकेश गोस्वामी और मधु गोस्वामी। हमें सही जवाब दिया है, आप हैं कदुआपड़ा जगत सिंहपुर ओडिशा से कविता साहू, प्रमोद कुमार साहू। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से आप हैं वीना ढिंगरा, कृतिका विशु और विजय। नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस नवहानकर, निर्मला नवहानकर और विशाल नवहानकर। और हमें सही जवाब भेजा है आप हैं गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे ने। अनारकली बाजार जगराओं से आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, गब्या मल्होत्रा। और हमें सही जवाब दिया है आप हैं ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन शहनवाज और सरफराज अब्बासी। और मदनपुर छत्तीसगढ़ से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। संबलपुर काकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और रजस्वी यादव। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी। और हमें सही जवाब दिया है आप हैं गांव सांतड़ी से, जी आपका नाम हो गया है। और रसेड़ा छत्तीसगढ़ से आप हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी और योगेश कुमार साहू। सेक्टर 5 कुरुक्षेत्र से आप हैं संजीव स्वामी। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे और अंजलि करवा। और हमें सही जवाब दिया आप हैं नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और अनुराग मोहन। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और भव्या कुमारी। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से आप हैं राजेश साबले पाटिल और श्रीमती शीतल साबले। गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भयान और सुरेंद्र भयान। बेंगलोर से जयश्री और सुनील। गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला और योगेश। तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कटवासरा, सचिन कटवासरा और योगेश कटवासरा। और हमें सही जवाब दिया है आप हैं गंजू डुंडवारा उत्तर प्रदेश से भुवन प्रकाश गौतम और श्रेय गौतम। नजफगढ़ नई दिल्ली से सुमन, गौरव शर्मा, सौरभ शर्मा। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, प्रवीण जी बजाज भाई और इमरान अहमद फूलवाले। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, जी आपका नाम हो चुका है। और हमें जो जवाब दिया है आप हैं गोराया जालंधर से, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़। जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी। और ये थे उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें आज के प्रश्न का सही जवाब दिया है। और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये गीत।

दोस्तों आजकल देश के कई शहरों में तापमान जो है वो 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, और ऐसे में हमें खुद का भी ध्यान रखना होता है और जिन डिवाइसेस को हम यूज़ कर रहे होते हैं हमें उनका भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमारा फ़ोन। दोस्तों अब फ़ोन भी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, चार्जिंग बीच में रुक जा रही है और बैटरी जो है वो तेज़ी से ख़त्म हो रही है। लगातार ओवरहीटिंग सिर्फ बैटरी को ही नहीं बल्कि प्रोसेसर, कैमरा, सेंसर और डिस्प्ले और पूरे फ़ोन की परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर फ़ोन जो है वो लगातार गर्म हो रहा है जिससे बैटरी हेल्थ जो है वो तेज़ी से गिर रही है और चार्जिंग धीमी हो रही है और प्रोसेसर स्पीड घट रही है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है थर्मल थ्रॉटलिंग, यानी फ़ोन खुद को बचाने के लिए परफॉर्मेंस को कम कर देता है। और ऐसे में हमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जब हम कहीं बाहर धूप से आए हैं तो हमारा फ़ोन जो है वो गर्म होता है, ऐसे में धूप से आने के तुरंत बाद हमें फ़ोन को चार्जिंग पर नहीं लगाना चाहिए। अगर फ़ोन पहले से गर्म है तो उसे थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए ताकि जो फ़ोन जो है वो सामान्य तापमान पर आ जाए और उसके बाद उसे चार्जिंग पर लगाना चाहिए। हमें कभी भी गर्म कार के भीतर जो है वो फ़ोन को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कार के अंदर का तापमान जो है वो बाहर की तुलना में कई डिग्री ज़्यादा हो सकता है। ऐसे में अगर हम कार को बंद करके जा रहे हैं और फ़ोन कार में छोड़ देंगे तो बैटरी और डिस्प्ले दोनों को

नुकसान हो सकता है और बैटरी जो है वो फ़ोन की जो बैटरी है वो फूल सकती है और इससे स्क्रीन पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है और इसी के साथ साथ कैमरा और सेंसर भी प्रभावित हो सकते हैं। और दोस्तों हमें ऐसे में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बाहर से कहीं धूप से आएं और हमारा फ़ोन जो है वो गर्म है तो ऐसे में हमें फ़ोन को फ्रिज या एसी के ठीक सामने नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे अचानक तापमान में बदलाव आने से फ़ोन के अंदर नमी बन सकती है जो फ़ोन के सर्किट को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम अपनी स्मार्ट डिवाइसेस का ध्यान रख सकते हैं गर्मी के मौसम में भी और हमें रखना भी चाहिए क्योंकि आजकल के समय में ये जो है वो हमारे लिए एक ज़रूरत बन गई है, लेकिन इसका जो है वो हमें सीमित उपयोग करना चाहिए। और ये थी जानकारी कि किस तरह से हम हीट वेव के असर से अपने स्मार्ट डिवाइसेस को बचा सकते हैं। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों आजकल जो है वो गर्मी बहुत बढ़ गई है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मौसम जो है वो जैसा भी हो, गर्मी कितनी भी अधिक हो जाए, हमें से कुछ लोगों की आदत होती है कि हमें वर्कआउट यानी हमें एक्सरसाइज करनी ही होती है। और दोस्तों देखा जाए तो ये अच्छा भी है कि हमें हमारी दैनिक दिनचर्या में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन ऐसे में इस झुलसाती गर्मी में वर्कआउट क्या जारी रखना चाहिए? जी जारी रखना चाहिए, लेकिन ऐसे में मौसम में बदलाव को देखते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्री वर्कआउट मील पर ध्यान देना ज़रूरी है, यानी कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे पहले जो हम खा रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों गर्मियों में एक्सरसाइज से पहले हल्का और आसानी से पचने वाला जो है वो खाना हमें लेना चाहिए, जिसमें 30 से 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और लाइट प्रोटीन होना चाहिए। ऐसे में केले, खजूर, बादाम या दही के साथ ओट्स और मौसमी फलों की स्मूदी हम ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमें ध्यान रखना चाहिए हमारी हाइड्रेशन का, यानी क्या हम पानी कम तो नहीं पी रहे। कसरत के 2 घंटे पहले खुद को हाइड्रेट करें। अगर आपका वज़न 60 किलोग्राम के आसपास है तो आप आधा लीटर पानी पी सकते हैं, यानी हर किलोग्राम के हिसाब से 5 से 10 मिलीलीटर पानी पीना चाहिए। और कसरत के दौरान भी हर 20 मिनट में पानी या नारियल पानी पी सकते हैं। और हमें ध्यान रखना चाहिए इन छोटी छोटी बातों का ताकि हम एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल भी करें, तो ऐसे में हमें हमारे शरीर में हाइड्रेशन की कमी ना हो और जो है वो हमारी डाइट भी सही रहे।

दोस्तों इसी के साथ दीजिए इजाजत, कार्यक्रम सुबह सवेरे अब यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM बैंड 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि।

दोस्तों, कार्यक्रम स्वरांजलि में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। और आइए कार्यक्रम स्वरांजलि की शुरुआत हम करते हैं गुरु रंधावा के गाए इस गीत के साथ।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों, संदेश से पहले आपने सुना गुरु रंधावा को। आइए कार्यक्रम स्वरांजलि में अगली रचना सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज में।

दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम स्वरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।

0: परेश रावल कहते हैं कि फिल्मों में अभिनय के लिए अगर हिंदुस्तानी सिनेमा के कोई आदर्श हैं उनके लिए तो वो हैं बलराज साहनी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी। परेश रावल का ये भी मानना है कि अभिनय उन्हें बड़ा ही दिलचस्प करियर लगता है क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में एक जीवन में कई जीवन जीने का मौका मिलता है। अर्जुन के बाद परेश रावल को फिल्मी दुनिया में अपना नाम अच्छी तरह से कमाने का मौका मिला तो वो थी महेश भट्ट की सन 1986 में आई फिल्म नाम। इसमें भी परेश रावल ने विलेन का रोल किया था। इसके बाद तो परेश रावल ने कई फिल्मों में तरह तरह के रोल किए। कभी वो बतौर विलेन नजर आए, कभी चरित्र अभिनेता के तौर पर, और कभी आपको हंसाते हुए नजर आए, कॉमेडी करते हुए।
1: विश्वजीत, हाँ बोल, ए इसमें कौन सी साड़ी पहननी है, है?
2: पता नहीं इनकी नाम भूलने की बीमारी कब जाएगी। इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या कर रहे हो?
1: अरे भाई कल तुमने जो 15-20 साड़ी।
2: परमजीत।
1: कौन परमजीत?
2: मेरा नाम परमजीत है जिससे तुमने शादी की है।
1: अभी अभी सोना बेटा तुम्हारी बात को बोलो ना। अच्छा क्या बात बात में चिल्लाते रहने का है?
3: ओहो डैडी, मेरा नाम सोना नहीं मोना है।
1: ये साड़ी की उलझन में मैं इसका नाम भी भूल गया, परिमल।
4: डैडी जी मेरा नाम परिमल नहीं, अनमोल है।
2: ए, मणिलाल पटेल।
1: ये नाम मैंने कब रखा?
2: बचपन से।
1: बचपन से? बचपन से मेरा ये नाम है और मुझे अभी बताती हो तुम? ले अभी मैं याद रखूंगा, मेरा नाम मेथी लाल है बस।
2: ओ जीसस।
1: जीसस? अभी तुमने बोला ना मेरा नाम मेथी लाल है, अभी जीसस।
2: गेट आउट, गेट आउट।
0: परेश रावल की सबसे मशहूर कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी। परेश मानते हैं कि हेरा फेरी की सफलता का सारा श्रेय जाता है इस फिल्म के लेखक नीरज वोरा को, जिन्होंने कॉमेडी को बड़ी अच्छी तरह से निभाया था।
5: आप गांव में घर है ना आपके?
6: नहीं है। क्यों
5: नहीं? क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया है? तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कहां कुत्ते की तरह भटकोगे।
7: देख राजू, जबान को लगाम दे, समझा?
5: देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका।
6: सच बात बोलता तो मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे दे रे बाबा।
7: आपको मुझ पे भरोसा नहीं?
5: ये इसके दिल में खोट है।
7: तेरे दिल में खोट है? मैं तो किराया देकर रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता।
5: हाँ तो मुफ्त में रहता तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ।
7: तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ।
5: हाँ तो करना तू।
7: हाँ तो तू भी करना।
5: हाँ तो कागज लेके आना।
7: तू कागज ले।
5: अरे मैं क्यों लेके आऊं? मैं क्यों? तुम दो मिनट, दोनों बाहर जाओ, पेपर लेके आओ, जाओ।
6: इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले मेरे को। नहीं रे, इन दोनों को उठा ले।
5: हेलो, पेपर पे साइन किया है, इसने अभी तक नहीं किया, खोट है इसके दिल में।
7: करता हूं ना, साइन कर रे बाबा, साइन कर। तू कर ले साइन, साइन कर।
8: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
7: क्या हुआ? क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया?
5: गाना? ये सब बहानेबाजी है, मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन नहीं करने वाला।
7: ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे, साइन कर।
8: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
7: आपको गाना नहीं सुना दे रहा?
5: कौन सा गाना?
7: साफ सुनाई दे रहा है।
5: ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ इसका बोरिया पिस्तौल उठाओ, बाहर फेंक दो इसको।
7: ये तो साइन कर रहे, साइन कर रहे, गाना गाना लगा ले, साइन कर रहे गाने।
9: हेलो
5: हेलो, देवी प्रसाद।
9: नहीं देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे?
5: सर वो मेरी मछली का क्या हुआ?
9: वो तो मैं खा गया।
5: खा गए?
9: हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया।
0: बतौर विलेन परेश रावल अपनी दो फिल्मों को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, एक है फिल्म डकैत और दूसरी फिल्म

0: क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो वो मिल नहीं सकते थे, वो इस दुनिया में नहीं है। तो परेश का जवाब था कि उन्होंने असंख्य तस्वीरें उनकी देखी और उन तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगाया कि सरदार पटेल किस तरह से बोलते होंगे, किस तरह से चलते होंगे और उनका स्वभाव किस तरह का होगा। इसके अलावा उन्होंने इस अभिनय के लिए बहुत सारी रिसर्च भी की।
1: फिर वही बात, हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। और अगर बंटवारा होना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद देश के आजाद लोग करेंगे, अंग्रेज सरकार नहीं।
0: पूजा भट्ट की फिल्म तमन्ना को वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक वृहन्नला का, एक हिजड़े का किरदार निभाया था। परेश ये कहते हैं कि ऐसे किरदार भी मानवीय होते हैं, उनका अपना संघर्ष, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं और इस फिल्म के जरिए उन्होंने इस तरह के चरित्र की तकलीफों को सिनेमा के पर्दे पर जीवंत कर दिया था।

0: हीरा फेरी फिर हीरा फेरी, आंखें आवारा पागल दीवाना, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, मालामाल वीकली, गोलमाल, हलचल, छुप छुप के, भागम भाग, शंकर दादा, भूल भुलैया, वेलकम, मेरे बाप पहले आप, ती दनादन और हंगामा जैसी ना जाने कितनी फिल्में हैं जिनके जरिए परेश रावल ने आपको हंसाया है।
1: और नाचते नाचते तुम्हारे पांव कहां पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो।
2: अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डाके?
1: अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और ये जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घूमर जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा?
0: सन 1994 में परेश रावल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म वो छोकरी के लिए, और फिल्म सर के लिए उन्होंने जीता फिल्म फेयर पुरस्कार।
3: हम लोगों को इतना खुश देखकर आपको अजीब लग रहा है ना? मैं बताता हूँ, बात यह है कि जब ये छोटी थी ना तो खुश रहती थी, खेलती रहती थी, हाँ, लेकिन जिस दिन से इसकी माँ गई है ना, चुप हो गई है। घर एकदम शमशान हो गया था और इतने साल के बाद आपने सर पे हाथ रख दिया, मेरे घर में जान आ गई है।
0: सन 2001 में फिल्म हेरा फेरी के लिए परेश रावल चुने गए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन फिल्म फेयर की ओर से। सन 2003 में आवारा पागल दीवाना फिल्म के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता।
4: मेरा गला बैठने को आया है? तू क्या कान दुकान पे बेच के आया है? साला बेरा, इधर कचरा नहीं डालने का? ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ। ये गुलाब वाला तेरा नाम क्या है?
5: लिसन जेंटलमैन,
4: ये साला कौन सा नाम है? समझ में नहीं आता, इधर कचरा नहीं डालने का।
5: I'm sorry.
4: अबे सॉरी क्या इंडिया समझा है? गुना करो, सॉरी बोलो,
6: क्या हुआ बड़ी जी?
4: अबे ये साला घन चक्कर को मैं एक कलाक से समझा भी नहीं थकी गया, इधर कचरा नहीं डालने का। इसको बोल इधर से कचरा उठावे वरना।
0: परेश रावल की एक महत्वपूर्ण फिल्म है अंदाज अपना अपना, जिसमें वो सलमान खान और आमिर खान के साथ नजर आए थे। परेश रावल रंगमंच पर भी सक्रिय हैं। उनकी कंपनी टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाती है और उन्होंने एक फिल्म का निर्माण भी किया है, ओ माय गॉड। ये फिल्म गुजराती के एक प्रसिद्ध नाटक पर आधारित थी।
7: किसे भेजनी है नोटिस?
8: भगवान को।
7: मिस्टर भगवान? सरनेम
8: पता नहीं क्योंकि हम लोग मिले नहीं है।
7: अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। अरे ये नोटिस

0: सन 2014 में भारत सरकार ने परेश रावल को पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी माने अभिनेता परेश रावल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में आप सभी को महक का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का कार्यक्रम हम लेकर हाजिर हैं और हम कर रहे हैं इंतज़ार कि हमारे श्रोता जो हैं वो कार्यक्रम में फ़ोन मिलाएंगे। हमारे केंद्र के नंबर हमारे केंद्र के नंबर 222-138 और कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड है 017-44। और हमारे जो श्रोता हैं हमें फ़ोन मिलाएंगे और हम अपने श्रोताओं से करेंगे बातचीत और उन्हें सुनवाएंगे उनके पसंदीदा गीत। और जब तक हमारे श्रोता हमें फ़ोन करते हैं तब तक के लिए हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। तो श्रोताओं, सुनिए इस गीत को।

श्रोताओं, हम कर रहे हैं आपकी फोन कॉल्स का इंतजार। हमारे केंद्र का नंबर है 221-322 और कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड है 0-1744।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में?
1: जी, मैं सोनीतपुर असम रंगापारा से, मेरा नाम है अमल बसमतारी।
0: जी अमल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में पहली बार फोन लगाया?
1: जी, आपके कार्यक्रम में आज मैं पहली बार कॉल लगाया है। कल से आपका प्रोग्राम सुनने के लिए शुरू किया था
0: जी।
1: कुछ अलग कार्यक्रम सुन रहे थे पहले के दिनों में, और इसके बारे में पता चल गया, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के बारे में पता चल गया, तो हम पार्टिसिपेट करने लगा हो। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का प्रोग्राम।
0: अच्छा जी,
1: इसी तो तरह जुड़ते रहेंगे, आगे भी कॉल करते रहेंगे।
0: हेलो
1: जी, आप कैसे हैं मैडम?
0: जी हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी बहुत अच्छे हूँ। असल में थोड़ा गर्मी पड़ने लगा है, आज धूप दे रहा है, तो कुछ देर के बाद बारिश आएगा जैसा लग रहा है।
0: हाँ जी,
1: अभी तो बहुत गर्मी पड़ रहा है
0: जी, मौसम ही ऐसा है।
1: एक गाने का फरमाइश था
0: जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं?
1: दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म का जो प्यार दिलों का मिला है, इस गाने को सुनना है मैम।
0: जी, तो आपने सुनना चाहा है,
1: और मैं गाने को सुनाने के लिए कुछ दोस्तों को याद कर सकता हूँ।
0: हाँ जी,
1: सबसे पहले डेडिकेट रहेगा भगवान सिंह परमार को, डेडिकेट रहेगा रमेश प्रजापति को, डेडिकेट रहेगा।
0: हाँ जी,
1: और अविनाश टैली को डेडिकेट रहेगा, और राकेश को डेडिकेट रहेगा, और पूरन वर्मा को डेडिकेट रहेगा, भाईकोन मुंडा को डेडिकेट रहेगा, रमेश पात्र को डेडिकेट रहेगा, और विमल बसुमतारी को डेडिकेट रहेगा। सभी हमारे वो आकाशवाणी सुनने वाले को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैम
0: जी,
1: और आपको भी, और पूरे कुरुक्षेत्र के इंजीनियर टीमों को डेडिकेट कर रहा हूँ
0: जी। और आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं आपका पसंदीदा गीत। आनंद लीजिए अपने इस पसंदीदा गीत का, और कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में?
1: जी नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार
1: जी, मैं राजकुमार गांव जोड़ माजरा से बात कर रहा हूँ जी।
0: जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी मैम धन्यवाद जी।
0: हाँ जी राजकुमार जी, आप हमारे कार्यक्रम कब से सुनते हैं? जी
1: मैम बहुत पुराने देखने रहे आपके, बहुत काफी टाइम से सुन रहे हैं मैम।
0: अच्छा जी।
1: मैं तो सुबह 6 बजे से मेरा एफएम होना चाहता है, रात को 9-10 बजे तक चलता है।
0: अच्छा जी, तो लगभग सभी कार्यक्रम सुनते हैं आप आकाशवाणी के?
1: जी सभी कार्यक्रम सुनता हूँ और काम भी करता रहता हूँ।
0: हाँ जी, क्या करते हैं आप?
1: जी मेरा गाँव में सैलून है।
0: अच्छा जी।
1: हाँ जी,
0: तो काम भी करते हैं और साथ साथ मनोरंजन भी होता है।
1: हाँ जी हाँ जी, मेरे जो कस्टमर है वो भी
0: हाँ जी
1: आपके इससे पुराने गाने सुन के बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं पूरे गाँव में तेरे दुकान पे भाई आनंद आता है पुराने गाने सुनने में।
0: अच्छा जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, बहुत खूब।
1: हाँ
0: जी, तो आज फिर कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप और कौन सा गीत सुनवाना चाहते हैं आप अपने?
1: जी आज याराना फिल्म का नाम है भोले ओ भोले।
0: अच्छा जी।
1: और मैंने आज 3-4 महीने बाद कॉल किया है ताकि अभी को मौका मिलना चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: तो कई दिन से मैं ये सुन रहा हूँ जी कि हमारे इस प्रोग्राम पे

0: ज्यादातर नए लिस्टर जुड़ रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: कई दिनों से लगातार नए बंदे कॉल करके बात अपने
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत से श्रोता सभी
0: जो एफएम पे फोन करते हैं सभी को यही हाथ जोड़ के बिनती करता हूँ, कम से कम एक महीने का तो टाइम जरूर दे।
1: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं याराना फिल्म से आपका ये पसंदीदा गीत।
0: धन्यवाद
1: जी।

0: हेलो।
1: हाँ जी
0: हाँ जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं हमारे साथ कार्यक्रम में?
1: हाँ जी मैडम जी,
0: हेलो।
1: तेजपाल बोल रही, तेजपाल जी।

0: हाँ जी हाँ
1: जी तेजपाल जी, आप कार्यक्रम में, आपका पहली बार फोन लगाया हमारे यहाँ?
0: हाँ जी
1: जी, आपका पहली बार फोन लगाया?
0: हाँ जी पहली बार ही लगाया जी फोन, बाकी भाई साहब सुनाते ये हमारे बार बार पहलो ही, ये तो बहुत लंबे टाइम से सुन रहे जी।
1: अच्छा जी, उनका शुभ नाम?
0: इनका नाम रणदीप सिंह जी।
1: अच्छा जी, तो इनके माध्यम से जुड़े हैं आप हमारे?
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: केंद्र
0: से इनके माध्यम से जुड़े जी।
1: अच्छा जी, क्या करते हैं आप?
0: मैं टीचर हूँ जी।
1: अच्छा जी
0: हाँ जी, डीपी हूँ जी। हाँ जी
1: हाँ जी हाँ जी, तो कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं आज आप कार्यक्रम में?
0: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो।
1: अच्छा जी, और आपके परिवार में कौन कौन है?
0: परिवार में जी बच्चे है जी, लड़का है मेरा।
1: हाँ जी,
0: वाइफ है, मम्मी है, एक भतीजा है
1: जी। जी, तो आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं क्रांति फिल्म से ये गीत। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका भी
1: जी।
0: ठीक है।

दोस्तों आइए अब कार्यक्रम में आपको जानकारी देते हैं। मोजाम्बिक की पूर्व शिक्षा और संस्कृति मंत्री ग्रेस माचेल को मिला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। दोस्तों मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका माचेल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मानवाधिकार कार्यकर्ता को शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवीय कार्यों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 2025 घोषित किए गए 2025 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया था। ट्रस्ट ने एक बयान में बताया कि एक सुश्री माचेल को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, इसी के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण और मानवीय कार्यों के क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में किए गए उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए चुना गया था। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और इसी के साथ साथ नकद पुरस्कार भी शामिल है। उन्हें एक प्रतिष्ठित अफ्रीकी राजनेता और मानवाधिकार अधिवक्ता के रूप में वर्णित करते हुए कहा गया कि सुश्री माचेल का जीवन भर का कार्य आत्मनिर्णय के संघर्ष और कमजोर समुदायों की सुरक्षा में निहित रहा है। 1990 के दशक में सुश्री माचेल ने सशस्त्र संघर्ष के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव पर संयुक्त

राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण अध्ययन का नेतृत्व किया जिसने वैश्विक मानवीय प्रतिक्रियाओं को नया रूप दिया। तब से उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय निकायों में अपनी सेवाएं दी और महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं की स्थापना भी की है। दोस्तों ये थी जानकारी मोजाम्बिक की पूर्व शिक्षा और संस्कृति मंत्री ग्रेस माशेल के बारे में। और आइए अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम जी।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन से श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम में?
1: जी मैं वीरेंद्र से। जी
0: हाँ जी
1: मैम जी, मेरे को गिफ्ट होना जी, दुल्हन हम ले जाएंगे का टाइटल सॉन्ग सुना देना मैम जी।
0: जी हम आपकी फरमाइश पर आपको सुनवाएंगे दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म का टाइटल सॉन्ग। जी वीरेंद्र जी, आप क्या करते हैं?
1: मैम जी मैं तो एक तो प्राइवेट काम करता हूँ जी, मैं खेती बाड़ी करता हूँ।
0: जी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से कब से जुड़े हुए हैं आप?
1: ये मैं अभी जब से न्यूज में आया है पहले जब से जुड़ा हूँ मैं।
0: अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं दुल्हन
1: हाँ
0: हम
1: जी,
0: ले
1: मैं सभी
0: जाएंगे
1: प्रोग्राम में
0: जुड़े
1: लेता हूँ
0: हुए।
1: जी, जैसे अगर पक्के हैं या कौन कौन पर है जितने
0: हाँ
1: प्रोग्राम
0: जी
1: है जी, मैं लेता हूँ मैं।
0: जी क्या कहना चाह रहे हैं आप?
1: मैं कह रहा हूँ जी आपके किसी प्रोग्राम में लेता हूँ, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फोन कॉल पर टाइप, तो कोई प्रोग्राम हो सही में लेता हूँ मैं।
0: जी आप एक बार फिर से कहिए। हेलो
1: हाँ जी
0: जी, आपकी आवाज नहीं आ पाई थी, आप क्या कहना चाह रहे हैं फिर से कहिए।
1: मैं ये कहने वाली कि मैं आपके सभी प्रोग्राम लेता हूँ, चाहे व्हाट्सएप पर हो चाहे फोन पर बैठता हूँ।
0: अच्छा जी, बहुत बहुत
1: हाँ
0: शुक्रिया कि आप हमारे जो है वो सभी कार्यक्रम सुनते हैं और उनमें प्रतिभागी बनते हैं।
1: जी धन्यवाद मैम।
0: जी

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

दोस्तों आइए अब आपको कार्यक्रम में जानकारी देते हैं कि क्या होते हैं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल और क्या होते हैं उनके नियुक्ति और कार्य के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। अगर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बारे में बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों वही व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने की योग्यता रखते हों, और इनके कार्य जो हैं वो भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, इसी के साथ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अन्य न्यायालयों में पैरवी करना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन करना और संसद की कार्यवाही में भी वे भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान का इन्हें अधिकार नहीं होता। इसी के साथ आपको जानकारी दें कि सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं। दोस्तों सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। यह एक संवैधानिक पद नहीं है बल्कि सरकार द्वारा बनाया गया पद है, और सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और इनकी नियुक्ति और सेवा की शर्तें सरकार निर्धारित करती है। सॉलिसिटर जनरल का कार्य अटॉर्नी जनरल की सहायता करना, इसी के साथ साथ सरकार की ओर से न्यायालयों में मुकदमों की पैरवी करना और महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यों का समन्वय करना होता है। दोस्तों ये थी जानकारी अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो हेलो। हाँ
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में?
1: ये राजकुमार जी, जिला करनाल से, गांव बालू है जी।
0: जी, गांव बालू, जिला करनाल से बात
1: हाँ
0: कर रहे हैं
1: हाँ
0: आप? हेलो।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा जी, राजकुमार जी, कार्यक्रम में पहली बार फोन लगा आपका?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा जी, क्या करते हैं आप?
1: ये खेती बाड़ी का काम है मैडम जी।
0: जी, और इसी के साथ साथ मनोरंजन भी करते हैं
1: हाँ
0: गीत
1: जी, हाँ जी,
0: सुनकर?
1: खेत में है फिलहाल जी।
0: अच्छा जी,
1: हाँ जी,
0: जी तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा जी, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: ये धर्मपीढ़ी फिल्म का है मैडम जी, ये वो मेरी महबूबा तुझे जाना हो तो जा।
0: अच्छा जी,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो हम आपकी फरमाइश को कर रहे हैं पूरा और आपको सुनवा रहे हैं आपका पसंदीदा गीत।
1: ठीक है मैडम, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र FM बैंड 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये पहला जो गीत है अब्दुल्ला फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है मन चित्रपट संगीत। अब आपको सुनवाते हैं एग्रीमेंट फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, गुलशन बावरा के बोल, संगीत है बप्पी लाहिरी का।

0: सुनहरे रहे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने करते
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली।

0: 2 जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया खयाम ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: दोस्तों नमस्कार, आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व तंबाकू दिवस पर आइए सुनते हैं BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के मैटिनी शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं 31 मई ये जो दिन है, इस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। और तंबाकू विरोध क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए, सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल जी को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू।
2: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लत है तंबाकू की, ये जो नशा होता है, ये लत के अलावा भी तंबाकू का कोई इस्तेमाल होता है, वो किस तरह से होता है?
3: जी एक्चुअली ह्यूमन ने तंबाकू का जो सेवन करने से पहले उसको कोई अलग तरीके से यूज करते थे।
2: हाँ हा।
3: जैसे कि हमारा देश खेती प्रधान देश है
2: जी, जी।
3: तो वहाँ पे खेती हमारा पूरा डिपेंडेंसी रहता है।
2: हाँ।
3: तो खेती को जो दो तीन चीजें से जो खतरा है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स
2: हाँ।
3: या बड़े जानवर वगैरह, इनसे खतरा रहता था, तो उनके खेती के जो बॉर्डर पे ये तंबाकू के प्लांट्स लगाए जाते थे।
2: अच्छा।
3: और उनकी वो स्मेल से जो वाइल्ड एनिमल्स वो दूर चले जाते थे। दूसरा था कि

0: खेती को दूसरा जो प्रॉब्लम था वो चूहे से, तो चूहे खेती खराब कर देते थे। तो अभी आज भी की तारीख में भी जो तंबाकू के जो लीव्स रहते हैं
1: जी जी,
0: वो जो बड़े रहते थे वो सूखने के बाद उसको गर्म करके,
1: अच्छा गर्म करके
0: उसको आग लगा के उसको चूहे के जो अंडरग्राउंड जो उनके
1: बिल होते हैं,
0: बिल होते हैं, हाँ। उसमें डाल देते, चूहे भाग जाते या मर जाते थे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: आज की तारीख में भी हमारे जो गाड़ी
1: में, ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है,
0: इवन सिटी में भी,
1: सिटी में
0: जो ड्यूरिंग द मानसून सीजन चूहे गाड़ी के जो वायर्स,
1: वायर कुतर जाते हैं,
0: तो उसको रोकने के लिए भी तंबाकू डाल देते थे उससे। तो उसके अलावा जो तंबाकू का जो पान रहते हैं उसको सूखने के बाद उसका पाउडर करते, उसको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड करके भी यूज होता था, जैसे इंसेक्ट्स है जो खेत को या धान को खराब ना कर दे। सो ये कुछ तरीके थे जो अदर देन सेवन हम इंसान इसको यूज करते थे। तो ये मुझे यहाँ पे कहना है कि तंबाकू से किसी को भी सेफ नहीं है, सब खतरे में है। अगर वो जीव छोटा है तो जल्दी मरेगा, अगर बड़ा है स्लोली स्लोली लेकिन मरेगा जरूर। तो तंबाकू के लिए कहा जाता है कि तंबाकू के जो सेवन करने वाले में से 50% लोग को तंबाकू मारी डालता है। तो ये मैं श्रोताओं को मैं चाहता हूँ कि बात ध्यान से सुने और अपने दिमाग में उसको हमेशा के लिए स्थापित कर दे।
1: जी जी जी, ये तो बस एक पेस्टिसाइड की तरह इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो केवल उतनी बात अच्छी है तंबाकू की, ये कह सकते हैं बस,
0: बाकी
1: कुछ नहीं। चलिए एक और आपसे बात जाननी थी कि आप BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और 2014 से आपने एक मुहिम चलाई थी तंबाकू विरोधी, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन में जितने लोग काम करते हैं, खासतौर से जो ड्राइवर्स होते हैं बस के और ट्रकों के ड्राइवर्स होते हैं, इन लोगों में ज्यादा लत होती है तंबाकू।
0: yes, yes.
1: तो आपने जो मुहिम चलाई है इसके विरोध में, तो उसके 12 साल हो गए, क्या फायदे आपको नजर आए?
0: या तो मैं श्रोताओं को बताऊं कि तंबाकू में 7000 अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं।
1: ओ,
0: रसायन, 7000
1: रसायन।
0: जब कोई भी इसको कंज्यूम करता है तो वो शरीर में जाके अलग अलग बीमारियां करते हैं, जैसे की सिंपल हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक आ सकता है, देन लकवा मार सकता है, अपने जो बोन्स है वो वीक हो जाते हैं, और तंबाकू खाने वाले लोगों को बैक पेन या शोल्डर पेन या फ्रैक्चर के भी प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा तंबाकू की वजह से TB शरीर की बीमारियां होती है, और सबसे डेंजर जैसे कि कैंसर, पर्टिकुलरली मुंह का कैंसर। तो ये सब बीमारी की वजह से हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज कर्मचारी उसकी लत के वजह से पीड़ित थे, और उसके वजह से हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन भी कम हो रहा था, बिकॉज बीमारी की वजह से वो काम पे नहीं आ सकते थे। तो हमने ये सब चीज को देख के हमने 2014 में तंबाकू मुक्त बेस्ट ये अभियान शुरू किया,
1: और मुक्त बेस्ट,
0: अच्छा, और आज तक उसको हमने कंटिन्यू किया है। तो 12 साल के आज ये अभियान को हो गए, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये 12 साल में 5000 हमारे कर्मचारी ने तंबाकू की व्यसन परमानेंटली छोड़ दिया है।
1: वाह।
0: उसके अलावा एक जो सर्वे है उसको हम गेट्स बोलते हैं, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे,
1: अच्छा।
0: उसके मुताबिक कि सरकार अगर 100 रुपीज टैक्स लेती है तंबाकू के ऊपर, तो सामने 816 रुपए का हमें अतिरिक्त भार हमें भुगतना पड़ता है। वो जो भार है मेनली तंबाकू वजह से जो बीमारियां होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा जो बीमारी की वजह से लोग काम पे नहीं जाते या प्रोडक्टिविटी लॉस के हिसाब से ये नुकसान। तो 12 साल में हमने देखा है कि बीमारियां कम हो गई, उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा कम हो गया, बीमारियां कम हो गई, इसलिए सिकनेस एब्सेंटिज्म भी हमारे कम हो गया, और इसके वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और रेवेन्यू भी बढ़ गया, और साथ साथ में बीमारियां कम हुई है, तो जो उसकी वजह से मॉर्टेलिटी थी
1: जी,
0: जो डेथ, वो भी हमारे इधर कम हो गई है, कैंसर के प्रमाण हमारे उधर कम हो गए। तो लोगों में एक अच्छी भावनाएं तैयार हुई है तंबाकू के विरुद्ध में। तो ये बीमारियां कम होने से ये जो लोग ठीक हो रहे हैं या जो बीमार कम पड़ रहे हैं, तो ये नोटिफाई किया गया, और हमारी जो अभियान को नेशनली और इंटरनेशनल भी रिकॉग्निशन मिला है, एक्नॉलेज किया गया, अवार्ड भी मिला है।
1: क्या बात
0: है। तो ये तो मैं चाहता हूँ कि पूरी भारत में ऐसे अभियान अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में
1: चलाया जाए
0: जो लोग अच्छे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े हमारी।
1: रूप से आप सभी, आप और आपकी पूरी टीम जो ये मुहिम चला रही है, अभियान चला रहे हैं, आप इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं।
0: यस, थैंक यू।
1: पुरस्कार भी आपको मिल चुका है और काफी उपलब्धियां रही इस अभियान के। बेसिक एक बहुत ही सवाल ये है कि लोग क्यों खाते हैं तंबाकू?

0: क्या होता होगा, ये नशे की शुरुआत कैसे होती है और वो खाने के बाद क्या उन्हें महसूस होता होगा कि वो फिर वो बार बार उसे खाने लग जाते हैं।
1: बेसिकली वो तंबाकू खुद से तो कोई खाता नहीं है
0: जी,
1: मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि पीयर प्रेशर, स्कूल कॉलेज के जमाने से दोस्त खा रहा है,
0: अच्छा
1: कलीग खा रहे, ले लेना,
0: अच्छा
1: ले लेना, तो छोटी छोटी शुरुआत छोटे से होती है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक रीजन ऐसा है, जब तंबाकू का सेवन किया जाता है
0: जी,
1: आइदर स्मोक से या स्मोकलेस से, तो अपने ब्रेन में एक केमिकल्स जो है
0: जी,
1: वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो केमिकल का नाम है डोपामिन।
0: ओके।
1: और डोपामिन जो कहते हैं इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं
0: जी,
1: वो जब डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ता है तो लोग स्ट्रेस फील करते हैं, उसको खुशी महसूस करते हैं, और सिंपल भाषा में बोले तो किक आती है उनको। और किक के वजह से लोग, ये पर्टिकुलर ड्राइवर्स, ये किक के वजह से ये तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये जो देन शुरुआत में बहुत कम मात्रा में तंबाकू की सेवन, बहुत कम मात्रा में डोपामिन लेवल बढ़ता है,
0: अच्छा।
1: लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे आगे ये लत बढ़ती है, तब वो डोपामिन लेवल बढ़ता है, तब तंबाकू का लेवल कंजम्पशन की मात्रा भी बढ़ जाती है,
0: अच्छा।
1: उसको कहते हैं कि निकोटीन रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर्स,
0: हाँ,
1: वो जो
0: हाँ,
1: है वो रेजिस्ट हो जाते हैं, तब थोड़ा भी डोपामिन बढ़ने के लिए ज्यादा मात्रा तंबाकू की कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है। तो ये विशेष साइकिल तैयार होती है,
0: यानी पहले एक ग्राम खाने पर भी जो खुशी मिलती थी,
1: हाँ,
0: वो 10 ग्राम खाने के बाद भी नहीं मिलती,
1: नहीं मिलती है, आगे
0: फिर वो मात्रा बढ़ती जाती
1: है, बढ़ते बाद इसलिए वो उसकी लत लगती जाती है और पेशेंट उसके पूरी अधीन हो जाता है, उसकी पूरी डिपेंडेंस तैयार हो जाती है, देन वो बीमारियां शुरू होती है।
0: अच्छा, फिर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बार लत लग जाए तो फिर वो कौन कौन सी बीमारियां, बहुत लंबी लिस्ट है।
1: यस, बहुत बड़ी लिस्ट है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि कैंसर, कैंसर ठीक है होता है, 100% होता है वो, लेकिन उसको टाइम लगता है। लेकिन उससे पहले जो होते हैं कि मैंने पहले बताया कि पहला तो जब तंबाकू खाते हैं तो पहले हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और कोई नोटिस नहीं करता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, देन ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, देन ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है देन डेफिनेटली वो हार्ट पे उसकी असर होने लगती है, तो देन हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाती है, देन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पैरालिसिस, उसके भी जब तंबाकू कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो खाने की जो पचन शक्ति है वो पुअर हो जाती है और उसके वजह से लोग उनको अपचन समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की दिक्कत होती है। जब एक अपचन होता है तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स या कैल्शियम, मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होने चाहिए वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और उसके वजह से पर्टिकुलरली कैल्शियम जो बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब आप तो बता रहे हैं तंबाकू खाने का ये असर है,
1: ये
0: साइड देखा गया है,
1: हाँ, हाँ,
0: कि वो जब तक वो तंबाकू नहीं खा लेते, हाँ, सुबह सुबह चाय पीने, हाँ, के बाद या सिगरेट नहीं पी लेते, तब तक उन्हें हाजत नहीं आती और वो टॉयलेट नहीं जाते।
1: वो एक मिथ है, वो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ मिथ। अपचन होता है तो कैल्शियम, सबसे बड़ा कैल्शियम का प्रॉब्लम शुरू होता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, इसलिए वजह से बेसिकली हड्डियां और मसल्स में कैल्शियम की बहुत नीड रहती है, जरूरत रहती है, तो ये मसल्स एंड हड्डियां भी वीक हो जाती है और ऐसे
0: बोन डेंसिटी कम हो जाती है,
1: बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो ऐसे जो तंबाकू जो खाने वाले लोगों में बैक पेन, मसल्स पेन और फ्रैक्चर की मात्रा भी ज्यादा रहती है। देन तंबाकू खाने की वजह से हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी बोलते हैं
0: जी,
1: वो
0: जी,
1: कम हो जाती है। और उससे अलावा लोग ड्यूटी पे रहते हैं तो लंच या डिनर या स्किप करने के लिए भी लोग,
0: अच्छा,
1: तंबाकू खाते, तो ये सब की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके वजह से जैसे कि जो क्षय रोग या टीबी शरीर की बीमारी का उनको ज्यादा खतरा रहता है
0: जी,
1: और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द एंड या नॉट द लीस्ट ये कैंसर की बीमारी
0: जी जी।
1: अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि तंबाकू को सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर होता है और भारत देश पूरे विश्व में
0: जी
1: तंबाकू की वजह से होने वाले
0: कैंसर के,
1: मुंह के कैंसर के प्रथम नंबर पे आता है।
0: ओहो।
1: और ये कलेक्टिवली जो भी मैंने बीमारियां बोली उसके वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोग की मृत्यु होती है, तो ये श्रोताओं को जानना बहुत जरूरी है।
0: ये बहुत दर्दनाक
1: चीज है,
0: मगर सत्य है,
1: लेकिन ये सत्य है
0: जी,
1: और
0: जी,
1: ये मैं नहीं बोल रहा हूँ,
0: हाँ,
1: ये ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के रिपोर्ट में लिखा है।
0: जी, जी, जी। हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि तंबाकू खाने से डायबिटीज होता है, मधुमेह।
1: यस, इस पे थोड़ा बाहर दूंगा
0: जी जी,
1: कि पहला तो हम समझ लेते कि पूरी दुनिया भर में,
0: हाँ,
1: दो देश में सबसे ज्यादा तंबाकू प्रोडक्शन होता है, उसका कंज्यूम भी होता है,
0: हाँ,
1: वो है एक है चीन और दूसरा नंबर पे हमारा भारत देश है।
0: अच्छा,
1: और दोनों देश में ही सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है, मधुमेह के पेशेंट है।
0: ओ, अच्छा।
1: तो ये इन

0: डायरेक्टली कोरिलेशन है कि तंबाकू वजह से डायबिटीज हो सकती है। आज की तारीख में देखें तो पूरी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं। पहले दो साल पहले चाइना में था, अभी भारत में हो गया, और दोनों में ज्यादा ही कंजम्पशन होता है। जैसे मैंने बताया कि तंबाकू में 7000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रहते हैं, वो कंज्यूम करने के बाद हमारा जो डायबिटीज का जो मेन जो कंट्रोल मैकेनिज्म है इंसुलिन, ये जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को और इंसुलिन के फंक्शन को ये तंबाकू अल्टर करता है।
1: अच्छा,
0: और बहुत सारे रीजंस है, और इसके वजह से शुगर कंट्रोल मैकेनिज्म हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है।
1: अच्छा।
0: अगर आप WHO की साइट पे जाओगे और डायबिटीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो उसके जो पांच प्रमुख कारण है उसमें पांचवा कारण है तंबाकू का व्यसन।
1: अच्छा,
0: तो लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि तंबाकू वजह डायबिटीज भी होती है।
1: मगर जरूरी नहीं कि डायबिटीज है तो उसको तंबाकू की लत होगी,
0: नॉट नेसेसरी, बट तंबाकू खाने वालों को रिस्क ज्यादा रहती है,
1: इसकी रिस्क है, तो डायबिटीज हो सकता है।
0: यस, हो सकता है, और वो डायबिटीज मतलब बहुत कड़वी बीमारी है।
1: जी जी जी, तंबाकू अगर कोई किसी को अगर उसका नशा है, लत है और वो छोड़ना चाहे तो निश्चित रूप से बहुत उसके फायदे उसको मिलेंगे।
0: yes,
1: मगर उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते होंगे।
0: yes,
1: तो हमें दोनों बातें बताइए।
0: yeah,
1: छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और एक बार वो छोड़ दे, निश्चय कर ले, अपना निर्धार पक्का हो जाए उसका कि छोड़ना है, तो उसके क्या क्या फायदे उसे होने वाले।
0: तो पहला हम उसके फायदे के बारे में बोलेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जब तंबाकू अगर सपोज वो सिर्फ हर एक घंटे में खाता है या किसी बहुत बार तो वो जब नींद से सुबह में उठता है तो अब कितने समय में उसको तंबाकू की जरूरत पड़ती है, वो एक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फैक्टर है।
1: अच्छा,
0: उसकी उसकी लत के बारे में हमें मालूम पड़ता है कि उठने के बाद कितने समय के बाद उसको तंबाकू खाने की जरूरत पड़ती है। तो जब तंबाकू उस समय पे नहीं खाया तो पहला तो उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहती है।
1: अच्छा,
0: वो बहुत जरूरी है हार्ट हेल्थ के लिए,
1: बेशक
0: हृदय की स्वास्थ्य के लिए उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है, तो वो नॉर्मल रहने लगती है। देन उसके बाद ब्लड प्रेशर, जो इसलिए अब हम जब भी एज अ डॉक्टर हम जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तब उसको पूछते हैं, अगर तंबाकू आप एडिक्ट हो तो आधे घंटे के बाद ही हम आपका बीपी चेक करेगा अगर आपने, क्योंकि हमें मालूम है ज्यादा ही दिखाने वाला है।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए तो इनडायरेक्टली जब तंबाकू का लत या एडिक्शन छोड़ते हो तो बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है।
1: अरे वाह,
0: तो ये दोनों हार्ट बीट्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता तो छोटा का हार्ट अटैक के रिस्क भी कम हो जाते
1: हैं। जी जी जी।
0: देन मैंने बताया कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने लगती है, हमारी जो पाचन शक्ति है वो इम्प्रूव हो जाती है, हमारे हड्डियाँ हमारे मसल्स वो स्ट्रांग होने लगते हैं। देन आगे जाके छोटा का तंबाकू के जो खाने वाले जो सबसे डेंजर प्रॉब्लम है वो है कैंसर, उसकी भी रिस्क कम हो जाती है। देन डायबिटीज में हमारे पास लोग है जिन्हें तंबाकू छोड़ दी है, उनकी डायबिटीज की गोलियां भी बन हो गई क्योंकि शुगर भी नॉर्मल होने लगी है अब इसकी।
1: अच्छा,
0: ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट है
1: कि
0: तंबाकू की लत छोड़ने के बाद उनकी डायबिटीज की गोलियां भी बन हो गई है।
1: क्या बात,
0: तो ये सब उसके फायदे है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसके क्या फायदे छोड़ने के बाद। तब यस, ये जरूरी है कि जब तंबाकू में जो 7000 केमिकल है उसमें से एक केमिकल का नाम है निकोटीन, और निकोटीन की वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है और उसकी वजह से उसकी लत लगती है।
1: अच्छा,
0: तो जब तंबाकू सडनली आप छोड़ देते हो, लोग कहते हैं कि हम आज मैं अगर पांच बार खाता हूं तो कल चार बार खाऊंगा, तीन तीन, तो ऐसा कभी नहीं होता, उसको झटके से ही छोड़ना है।
1: अच्छा,
0: तो ही फायदा होगा, तो ही उसकी लत छूटेगी। तो जब झटके से छोड़ते हो तब आपको निकोटीन का विड्रॉल सिम्टम 100% महसूस होगा,
1: शरीर जो है अपनी प्रतिक्रिया देता
0: है, वो महसूस होगा ही। वो जो विड्रॉल सिम्टम जैसे कि वीकनेस आ जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, पर्टिकुलर ड्राइवर कंडक्टर को ये बहुत होता था हमारे पास। तो ये लेकिन यहाँ पे जरूरी है कितना टाइम तक ये विड्रॉल सिम्टम रहता है।
1: अच्छा,
0: वो दो दिन से ज्यादा 2 हफ्ते चलता है, उसके बाद अपनी बॉडी खुद को एडजस्ट करने लगती है।
1: जी जी,
0: उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
1: तो पूरा शरीर अपने जो है सामान्य स्थिति में
0: आ जाता है, बस
1: जैसा तंबाकू खाने से पहले
0: था वैसा।
1: वाह,
0: बस थोड़ा दिन के लिए अपने को सहन करना है, और वो समय अगर निकाल डाला तो वापस कभी तंबाकू खाता नहीं।
1: कितनी जरूरी बात है।
0: यस,
1: हमारे श्रोताओं को उनमें से किसी को अगर ये लत है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत छोड़ दें,
0: झटके से छोड़ना है,
1: झटके से एक साथ,
0: बस।
1: और उसके बाद
0: दो दिन से दो हफ्ते
1: सोचना ही नहीं, दो हफ्ते ज्यादा से ज्यादा दो हफ्ते ये लक्षण रहेंगे,
0: विड्रॉल सिम्टम
1: और उसके बाद वो
0: सामान्य हो जाएगा, अपनी बॉडी अपने आप को रिकवर करती है।
1: वाह वाह, तो फायदे हमने जान लिए। हम तंबाकू की बातें जब होती है तो एक

0: एक्ट है, एक ऐसा नियम है, कुछ वो कानून है, कॉप्टा एक्ट कुछ ऐसा कहते हैं।
1: यस,
0: ये क्या होता है, क्या कॉप्टा एक्ट क्या है?
1: सी, जैसे तंबाकू की वजह से हमारे पास जैसे सबसे ज्यादा मौतें होती है, खर्चा होता है।
0: जी जी,
1: 100 रुपए के टैक्स के सामने 816 रुपए का हमें खर्चा हो रहा है। तो ये उसको और कम करने के लिए कुछ कानून बनाया है, उसको अच्छा। कोटपा एक्ट बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म है कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट।
0: अच्छा, कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, कोटपा एक्ट।
1: कोटपा एक्ट,
0: अच्छा।
1: उसके अंतर्गत आपको पब्लिक प्लेस में तंबाकू का कोई भी प्रकार का सेवन प्रतिबंध है, इज अ पनिशेबल ऑफेंस।
0: जी जी,
1: देन वो खाके पब्लिक प्लेस में थूकना भी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। देन उसके एडवर्टाइजमेंट
0: जी
1: जो होती है, हाँ। वो भी अलाउ नहीं है आपको कोई भी प्रकार के। सो ये एक एक्ट इसलिए लाया है कि लोग एक दूसरे को देख के जो खाते हैं वो ना खाए और उसकी लत और उसको कम करते जाए हम लोग। उसका फायदा हुआ है, कम हुई है,
0: हाँ।
1: जो लोग खाने वाले परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन जो उसे और हमें आगे लेके जाना है उसको एक्ट को, और अभी कुछ सरकार ने उसको कड़क किया है कि उसके अंतर्गत वो सरोगेसी एड बोलते हैं,
0: अच्छा।
1: उसको भी बैन किया है,
0: हाँ।
1: कि कुछ नाम सेम रखते हैं लेकिन कुछ अलग प्रोडक्ट रहता है। एक्स तंबाकू का जो प्रोडक्ट था पहले उसको खाली नाम सेम रखते हैं और प्रोडक्ट कुछ अलग रहते
0: हैं। होता तंबाकू ही है मगर उसको कुछ एक नया नाम और नया रूप दे देते हैं,
1: या तो फिर उसका प्रोडक्ट अलग कर देते हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: कि तब जो पहले वो नाम तंबाकू के वजह से के लिए यूज होता था,
0: हाँ।
1: अब वो तंबाकू के वजह से नहीं होते, कुछ अलग प्रोडक्ट जो नॉर्मली
0: अच्छा,
1: लोग
0: अच्छा, अच्छा,
1: खाते पीते हैं उसके लिए, तो
0: हाँ।
1: सरोगो एड बोलते हैं, उसको भी बैन किया है।
0: जी, जी।
1: तो ये इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू का कंजम्पशन कम हो जाए, उसके वजह से जो बीमारियां है कम हो जाए और खर्चे भी कम हो जाए।
0: तंबाकू तो नहीं मगर तंबाकू जैसे और तंबाकू इस्तेमाल करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसी की अभी बात कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग सीधे सीधे तंबाकू तो नहीं खाते मगर ऐसे प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्टली जिससे तंबाकू उनके शरीर में जाता है।
1: जैसे अभी बहुत कुछ आ गया है, इनहेलेशन आ गया है,
0: हाँ
1: भले सिगरेट नहीं पीते लेकिन कुछ इनहेलेशन तरीका ई सिगरेट आ गई है, उसको भी अलाउ नहीं है, वो भी हानिकारक है।
0: जी जी,
1: उसमें हानिकारक।
0: तो ये जो तंबाकू ना खाके अगर ये ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी उतना ही धोखा,
1: yes, yes,
0: उतना ही रिस्क।
1: yes, yes,
0: जो व्यक्ति तंबाकू नहीं खाता वो गलती से उसके शरीर में तंबाकू चला जाए तो पहला रिएक्शन बॉडी का तो ये होता है कि जैसे कभी पान खाते हुए पान में किसी ने हल्का सा तंबाकू डाल दिया और वो हमने खा लिया तो तुरंत उल्टियां होने लगती।
1: यस यस यस, और बहुत बार तो जैसे
0: और लेकिन जिनको लत लगती है उनको पहली बार ऐसा नहीं होता,
1: उनको नहीं होता। ये जो आपने बताया वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है पैसिव स्मोकिंग बोलते उसको,
0: हाँ।
1: कि अगर हस्बैंड स्मोक करता है,
0: जी जी,
1: उसके वाइफ है या उसके बच्चे है,
0: हाँ।
1: तो उसमें भी वो धुआं जाता है ना,
0: बिल्कुल,
1: वो धुआं जाता है। देन या घर में कोई तंबाकू खाता है तो उसको देख के बच्चे भी उसके खाने लगते हैं।
0: अच्छा,
1: तो ये बहुत जरूरी है। तो पैसिव स्मोकिंग की वजह से इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जैसे कोई एक फैमिली में एक हस्बैंड स्मोक करता है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसके वो धुआं उसको जाए तो उसके बच्चे को भी खतरा है
0: जी,
1: जो अभी तक दुनिया में आए नहीं है, उसको भी खतरा है,
0: उस पर भी असर हो रहा है,
1: बहुत खतरा है उसके लिए, सबसे ज्यादा खतरा है उसको तो
0: जी।
1: द पैसिव स्मोकिंग बोलते उसको,
0: हाँ।
1: ये सिर्फ चीजें लोगों को आई डोंट नो मालूम है या उसको इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, आई डोंट नो, बट लोगों को मालूम होना जरूरी है ये बातें।
0: अच्छा, हमने सुना है कि कुछ दवाइयों के तरीके में कुछ तरह के मेडिसिन है उसमें तंबाकू का इस्तेमाल भी होता है?
1: नहीं, आई डोंट थिंक सो।
0: अच्छा,
1: आई डोंट थिंक सो।
0: या कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो फलां डॉक्टर साहब ने कहा है कि पान में थोड़ा तंबाकू खा लिया करो ताकि आपका पेट अच्छा रहे।
1: नहीं, ये सब मिथ्स है, मिथ्स।
0: अच्छा,
1: है, मिथ्स है,
0: ऐसा कुछ।
1: सी, तंबाकू इतनी क्वांटिटी इज नॉट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी।
0: बस वो
1: बस उसको छोड़ना ही है ना, उसको नजदीक जाना ही नहीं उसके, बस बस। जैसे शुरुआत में बताया छोटा जीव है जल्दी मरेगा, बड़ा है तो बाद में मरेगा,
0: मरेगा जरूर। तो इस कठोर सत्य को, इस कटु सत्य को जो हमें जान लेना
1: चाहिए, जान एक्सेप्ट करना है, हमें
0: एक्सेप्ट करना है। कोई जादुई मिक्स आपने बनाया है?
1: यस, उसको हमने,
0: ये कैसे हुआ?
1: Yes,
0: कब हुआ?
1: Yeah.
0: और इसका क्या आपको परिणाम कैसा देखने को मिला?
1: उसको हमने नाम दिया मैजिक मिक्स।
0: अच्छा,
1: या मैजिक चूरन,
0: जादुई चूरन,
1: जादुई चूरन।
0: वाह।
1: जैसे अभी तंबाकू की जो एडिक्ट लोगों में दो प्रकार की एडिक्शन है, एक है साइकोलॉजिकल एडिक्शन जो 90% लोगों में, 10% लोग में फिजिकल डिपेंडेंसी है।
0: अच्छा,
1: तो 90% लोग बस उसको वो कलर का चूरण मांगता है और उसको हाथों में घसना है और खाना है, और उसका जो कैनिस्टर है या डब्बी बोले जो महाराष्ट्र में, तो वो उसको दिख गई तो उसको लगता है मैंने तंबाकू खा लिया। तो हमने वो बेस को ध्यान में रखते हमने चूर्ण

0: मैजिक मिक्स,
1: मैजिक मिक्स,
0: मैजिक मिक्स,
1: वाह वाह वाह।
0: और वो मैजिक ने सच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैजिक किया है।
1: हाँ।
0: और वो खा के बहुत सारे लोगों ने तंबाकू छोड़ दिया है।
1: वाह वाह।
0: तो मैं लोगों को बोलूंगा कि उसकी लिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब में।
1: अच्छा।
0: मैजिक मिक्स मेरा नाम डाल के आपको मिल जाए कैसे बनाना है।
1: हाँ।
0: हमने उसको कॉपीराइट किया है, आप कोई भी घर पे बना सकता है।
1: अच्छा।
0: और उसको यूज करे और अपनी जब भी तलब लगे।
1: हाँ।
0: तंबाकू की जगह उसको खाए।
1: मतलब ये मैजिक मिक्स कोई कमर्शियल प्रोडक्ट?
0: नो, इट इज नॉट कमर्शियल प्रोडक्ट।
1: ये सबके लिए है, सबके फायदे,
0: सबके फायदे के लिए। हमने उस खाली कॉपीराइट किया कि उसको कमर्शियल यूज कोई ना करे उसको।
1: अच्छा। हाँ,
0: तो आपके लिए ये आप खाओ, खुद बनाओ,
1: सबके लिए ये मुफ्त है, फ्री है,
0: खुद बनाइए घर पर खाइए।
1: तो ये फॉर्मूला जो है वो यूट्यूब पे देख करके बनाया जा सकता है।
0: और मेन बात उसको खा के थूकना भी नहीं है।
1: हाँ।
0: तो स्वच्छ भारत अभियान को भी हम प्रमोट कर रहे हैं उससे।
1: क्या बात है, वाह वाह।
0: उसके खाने के बाद वो निगलना ही है, क्योंकि वो निगलने के बाद बहुत सारे बेनिफिट देता है।
1: बिल्कुल,
0: सब ये अपने गर्म मसाले फायदे करेगी हमारे बॉडी को,
1: हमारे सुनने वालों के बेनिफिट के लिए।
0: यस।
1: हम इस मैजिक मिक्स का जो फॉर्मूला है।
0: हाँ।
1: उसे एक बार दोहराते हैं।
0: हाँ।
1: इसमें क्या क्या चीजें आपने डाली?
0: दालचीनी,
1: दालचीनी,
0: अजवाइन,
1: अजवाइन,
0: जीरा,
1: जीरा,
0: बड़ी सौंफ,
1: सौंफ,
0: सौंफ, और एक आध
1: लौंग।
0: अच्छा। उसको मिक्स करके,
1: लौंग तो एक ही ले रहे हैं, बाकी जितनी
0: बाकी इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी,
1: इक्वल क्वांटिटी,
0: इक्वल वन।
1: अच्छा।
0: उसको ग्राइंड करना है मिक्सर में, मिक्सर होगा वो बहुत तंबाकू सरीका लगेगा।
1: अच्छा।
0: लेकिन उसमें तंबाकू नहीं है।
1: हाँ।
0: चूने की जगह पे। हाँ। राइस पाउडर यूज करने का, वो भी घर चावल का आटा।
1: अच्छा।
0: तो ये आप करके उसको सेम कनिस्टर में,
1: तंबाकू मलने की आदत है,
0: ऐसे ही मल के खाओ,
1: मल के जो है अपना पूरा एक्शन कंप्लीट
0: करो, एक्शन कंप्लीट,
1: और उसके बाद चाहे तो उसको होठों में दबा ले थोड़ी देर,
0: या दबा लो
1: उसका जो जूस निकलेगा
0: वो
1: आपके शरीर के लिए फायदेमंद,
0: उसको थूकना भी नहीं है।
1: क्या बात है, बहुत ही जादुई बात है ये तंबाकू के बारे में, इस लत को छोड़ने के लिए जो है कारगर सिद्ध होगी। तो डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम के आखिर में कुछ तंबाकू छोड़ने के बारे में कुछ पते की बात हो जाए, आप क्या बताना चाहेंगे इस मौके पे?
0: मैं भारत के वासियों को बताना चाहता हूँ कि तंबाकू कभी भी हमें फायदा नहीं करता है, उससे सिर्फ नुकसान नुकसान नुकसान ही होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक भी नुकसान होता है।
1: जी जी,
0: वो लोगों को मालूम नहीं है। ऐसा सर्वे हुआ है कि अगर आपने तंबाकू की लत छोड़ दी तो आपका जो एक इंडिविजुअल घर की जो आर्थिक परिस्थिति 10% इम्प्रूव हो जाती है।
1: क्या बात है। मुझे एक और बात याद आई कि मेरे कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था।
0: हाँ।
1: और वो कृषि बैकग्राउंड से था।
0: हाँ।
1: उसके घर वाले जो है खेती करते थे। हाँ। तो वो कहता है वो तंबाकू खाया करता। हाँ। था बहुत नियमित रूप से।
0: हाँ।
1: और वो कहता है मुझे सांप ने अगर काट लिया तो मुझे जहर नहीं चढ़ेगा।
0: हाँ।
1: तो ये कितना बड़ा मिथ है, आप जरा
0: गलतफहमी है। ये तंबाकू छोड़ना बहुत जरूरी है
1: जी,
0: वो सिर्फ वो इंडिविजुअल को नहीं खाता है, पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है। जैसे हमने देखे, आप किसी को अगर अगर देखना है तो टाटा हॉस्पिटल में जाके एक बार चक्कर मार के आए बस, खाली।
1: हाँ।
0: समझ जाएंगे ये तंबाकू से क्या गड़बड़ होती है।
1: जी जी।
0: लोगों को जिंदा है लेकिन मुंह में खाना नहीं खा सकते, नाक में नलीर से खाना खाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने फैमिली को, अपने देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
1: जी,
0: उसको मजबूत करने के लिए, शारीरिक और मानसिक और आर्थिक मजबूत करने के लिए हमें तंबाकू की लत को छोड़ना ही है।
1: और कोई भी फॉर्म हो तंबाकू का,
0: कोई भी फॉर्म,
1: या तो कच्चा तंबाकू है या वो उसकी पाउडर
0: नसवाली है, स्मोकिंग है,
1: या स्मोकिंग है,
0: कोई भी प्रकार
1: किसी
0: का
1: भी से।
0: बस उसको छोड़ दो, बस खत्म करो, अपनी फैमिली और अपने देश के लिए उसको छोड़ दो।
1: बहुत ही अच्छी बात है, आज तंबाकू विरोध जो है इसके बारे में आपने बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी,
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। तंबाकू की वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोगों की मृत्यु होती है। तंबाकू की वजह से मनुष्य उसकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाती है, और उसके वजह से उनकी फैमिली बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। तो मैं आज तंबाकू विरुद्ध दिवस के निमित्त श्रोताओं को अपील करूँगा कि तंबाकू की व्यसन को पूरी तरह छोड़ दे, और झटके से छोड़ दे, और अपने फैमिली को और हमारे देश को मजबूत बनाए। धन्यवाद। देखा।

विश्व तंबाकू दिवस पर अभी आप सुन रहे थे VEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत। आज का मैटिनी शो बस यहीं तक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी

0: प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस पहुंची अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेता परेश रावल का जन्मदिन है। बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम उन्हें और उनकी फिल्मों के गाने आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। भागम भाग इस फिल्म का गाना रेमो फर्नांडिस और सुजीन की आवाज़ों में, समीर के बोल, संगीत प्रीतम का।

ये गाना है उदित नारायण की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, बीजू शाह का संगीत, फिल्म का नाम रावण राज।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आंखें फिल्म का गाना, नितिन रायकवार आदेश और अरुण बख्शी की आवाजों में। नितिन रायकवार के बोल, संगीत है जतिन ललित का।

अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम का, ओ माई गॉड, इस फिल्म का गाना है। कैलाश खेर, मीत ब्रदर्स और अनजान की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

ये है राजा फिल्म का गाना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये हंगामा फिल्म का गाना शान और साधना सरगम की आवाजों में। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना गम बाबा करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात।

0: तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
4: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना गोलमाल, इस फिल्म का गाना शेखर और स्नेहा पंत की आवाजों में, विशाल दादलानी और कुमार का लिखा हुआ गाना, संगीत है विशाल शेखर का।

0: की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। दोस्तों, आज जो इबारत या जो टेक्स्ट हमने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, तो उसको आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि एक हसीन शाम को मन किया कि ठंडे ठंडे पानी से नहा लूं, ये सोचते हुए कि ऐ दिल तू किस पे आ गया है। मन में उथल पुथल थी कि पीते पीते कभी कभी यूं अंडे का फंडा भी समझ लेना चाहिए, इसलिए मैंने कहा सूरज चढ़ा आपासा। तो उसने कहा आला बर्फी वाला। मैंने कहा जब तक समोसे में आलू रहेगा, इश्के भी चाशनी का बोलबाला रहेगा।
1: किया था इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक,
2: तो दिन सुबह से ही हसीन बन पड़ा है। सुबह से मौसम अटकेलियां कर रहा है, कभी धूप कभी छांव कभी तेज हवा हल्की सी बूंदाबांदी। इस मौसम का क्या वर्णन करूं, मन सुबह से झूम उठा, ये मौसम का जादू है मितवा, अब दिल पर काबू है मितवा। दोस्तों, आज जो इबारत हमने पोस्ट की उसमें कुछ जो गाने हैं वो खाने पीने की चीज़ों को लेकर है। आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम एक सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे स्नैक्स या बनाने में या फिर जो छोटा मोटा नाश्ता शाम के समय का होता है उसमें आलू का बहुत महत्व होता है। हम सभी को पसंद होता है, चाहे वो समोसा हो, आलू बड़ा हो, या फिर एक कोई सैंडविच हो जिसमें आलू डाला जाता हो। इस तरह के बहुत सारे नाश्ते बनाए जाते हैं आलू से। तो आलू हमारे जीवन में या हमारे रसोई घर में क्या महत्व रखता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, या इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हमें मिल सके, इस बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे जब शाम के नाश्ते की बात होती है तो सबसे पहले हमारा मन करता है कि आलू के पकोड़े खा लिए जाए, या आलू से बनी हुई ऐसे ही किसी नाश्ते की हमें याद आ जाती है। वैसे सबकी पसंद जो है वो अपनी अपनी अलग होती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर हम थोड़ी आलू की बातें करेंगे, और इसके अलावा कुछ और भी गीत हम सुनेंगे। सबसे पहले जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है दुल्हन एक रात की, इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं। संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। धर्मेंद्र और नूतन पर फिल्माया गया ये गाना है।

नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्माण

0: खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
1: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र को बाईपास परियोजना देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र के लिए यह बाईपास नहीं बल्कि सड़क मार्ग के रूप में जीवन रेखा है, जिसका कुरुक्षेत्र के नागरिकों को लंबे समय से इंतजार था। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 27 किलोमीटर 900 मीटर लंबा ये बाईपास कुरुक्षेत्र के दक्षिणी भाग से होकर निकाला जाएगा, जो कुरुक्षेत्र पिहोवा मार्ग पर ज्योतिसर के पास इंदम्बरी से शुरू होकर राज्य मुख्य मार्ग 6 एमडीआर 119 किरमिच रोड अमीन रोड व राष्ट्रीय मुख्य मार्ग 44 को जोड़ता हुआ गांव मथाना पर समाप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से न केवल पिपली चौक पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा बल्कि कुरुक्षेत्र शहर को जाम से स्थायी राहत मिलेगी। इस परियोजना के पूरा होने पर दिल्ली यमुनानगर हरिद्वार समेत पंजाब व कैथल की और यातायात और भी आसान व सुरक्षित हो जाएगा। ब्रह्म सरोवर ज्योतिसर एवं अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होने से कुरुक्षेत्र में पर्यटन व्यापार निवेश व रोजगार को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये ट्रिपल इंजन सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वैश्विक ताप वृद्धि की समस्या से निपटने व मां को सम्मान देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत आम लोगों ने बड़ी संख्या में न केवल अपनी मां के नाम पेड़ लगाए बल्कि उनका पोषण करने का कार्य भी किया। भिवानी जिला में शिक्षा विभाग के माध्यम से बीते वर्ष 2025-26 में जिला के 1178 प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में 1,16,800 पौधे लगाए गए। इस अभियान से न केवल स्कूली बच्चे जुड़े बल्कि आम नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में जुड़कर अपने अपने प्रांगण व सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए। भिवानी निवासी छात्रा आरोही राष्ट्रपति युवा अवार्डी अशोक भारद्वाज महंत चरणदास मोहनदत्त ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान से प्रेरित होकर उन्होंने न केवल प्रांगण बल्कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में पौधे लगाए। इससे न केवल उन्हें अपनी मां का सम्मान करने का अवसर मिला बल्कि इन पौधों से पर्यावरण का संरक्षण भी हुआ।
2: नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा आजाद सेवा समिति जैसे अनेक संगठन जो हमारे साथ में जो रहे और उनके तहत हमने काम किया। हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर जो हमने काम किया इसमें काफी बच्चे भी हमारे से जुड़े हैं, युवा भी जुड़े हैं, अनेक सामाजिक संगठन जुड़े हैं और सरकार और प्रशासन के जो डिपार्टमेंट से लोग हैं वो भी उनके साथ भी जुड़कर हमने काम किया। और हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कल यमुनानगर में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अवैध कॉलोनियों, फर्जी रजिस्ट्रियों, अवैध कब्जों, प्रदूषण, कालीबाजारी तथा जन समस्याओं से जुड़े मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री विज ने अवैध कॉलोनियां काटे जाने के मामले में संलिप्त संबंधित रजिस्ट्रारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आलू से बना हुआ कोई स्वादिष्ट नाश्ता जब आपके घर में बन रहा हो तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, और जब वो सुगंध फैलती है तो ऐसा भी कभी होता होगा ना कि आसपास में आपके कोई पड़ोसी, आपके कोई नाते रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त आपका दरवाज़ा खटखटाते होंगे और पूछते होंगे भाई आज क्या बन रहा है। एक साथी लिख रहे हैं, आलू वो सादगी है जो हर स्वाद में रंग भर देता है, इसलिए हर घर की रसोई में उसकी खास जगह होती है। हर सब्जी उसका साथ पाकर और भी स्वादिष्ट हो जाती है। आलू सच में रसोई का राजा है। आलू न दिखावे में बड़ा है न नाम में, लेकिन काम में सबसे बड़ा है। यही उसकी असली पहचान है जो हर मौसम, हर सब्जी और हर थाली में फिट हो जाए, वही असली राजा कहलाता है। आलू, आलू की कहानी सादगी की जीत है, कम में भी सबसे ज्यादा स्वाद देने की कला है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज मैं आलू की टिक्की बना रही हूँ। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे बटाटा वड़ा और फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। और एक हमारे साथी जो है उन्होंने हमें अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की शुभकामनाएं दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की खोज दक्षिण अमेरिका में हुई थी और आलू की कहानी वहीं से शुरू हुई थी। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बात चल रही तो आलू के पराठे, समोसे, पकौड़े से लेकर चिप्स, पापड़ तक सभी का स्वाद निराला है। सुबह सुबह आलू के पराठे मिल जाए, दोपहर में आलू की सब्जी और पूरी मिल जाए और शाम को समोसे मिल जाए तो कहना ही क्या। ये सिर्फ आलू ही नहीं, ये हमें सिखाता है कि हमें सब के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे आलू हर सब्जी में मिलकर इसका स्वाद बढ़ा देता है, वैसे ही हमें जीवन में होना चाहिए सबके साथ।
1: हर सब्जी में मिलकर इसका स्वाद बढ़ा देता है, वैसे ही हमें जीवन में होना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि हमारा महत्व हमेशा बना रहे। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के बिना भारतीय रसोई अधूरी है। यद्यपि आज आलू भारतीय रसोई का एक अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारतीय मूल की सामग्री नहीं है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू महज एक सब्जी नहीं है, ये एक एहसास है, ये वो निश्चल साथी है जो हर दूसरी सब्जी के साथ अपनी पहचान मिटाकर घुल मिल जाता है। कभी वो गोभी के साथ जुगलबंदी करता है तो कभी मटर के साथ मिलकर एक नया स्वाद रचता है। वो किसी राजा के थाल का हिस्सा भी है और एक गरीब की झोपड़ी में तसल्ली का निवाला भी है। और एक साथी

लेकिन मुझे तो पता ही नहीं आज आलू दिवस है। आज अजीब संयोग बना है, आज हमारी श्रीमती जी ने आलू के पराठे बनाए हैं, दही के साथ सेवन कर रहे हैं हम। बहुत धन्यवाद आपका। एक साथी लिख रहे हैं कि बेहद खूबसूरत गीत के साथ शुरुआत की है। वैसे आलू दिवस पर हमारे यहाँ आलू पालक टमाटर की सब्जी बनी है, मुझे आलू बहुत ज्यादा पसंद है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी रेसिपी पर सबसे ज्यादा आता है? कौन सी रेसिपी है जब आप ये कहते हैं कि ये दिल मुझे बता दे कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं? भाई भाई फिल्म का गाना, गीता दत्त की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत, अशोक कुमार और श्यामा पर फिल्माया गया गाना।

तो बताया क्या आपने कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी चीज पर आ गया है। बहुत सारे श्रोताओं ने इतनी सारी बातें लिखी है, लिखते हैं कि लाल टमाटर हरे मटर में मंडी चलने की ठानी, आलू भी तैयार हो गया, साथ चली गोभी रानी। मुझे आलू इसलिए पसंद है कि वो सभी के साथ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए सबको आलू भाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज भी लंच में दही वाले आलू बनाए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि उदयपुर जिले में फतेह स्कूल के पास में एक जगह है जहाँ के आलू बड़े बहुत फेमस है, मैं कल परीक्षा देने जा रहा हूँ, जरूर वहाँ के स्वादिष्ट आलू बड़ों का आनंद लूंगा। और एक साथी लिख रहे हैं कि इबारत कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया आपने, आज आलू दिवस पर गीतों का मजा मिलेगा। और लिखा है कि आलू दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, आलू बिना कोई रसोई बन नहीं सकती, ये सभी सब्जियों में मिक्स हो जाता है, चिप्स और पराठा तो आलू के ही स्वादिष्ट होते हैं, खिचड़ी और तहरी में मिलाकर उसका टेस्ट भी बदल दिया जाता है जो सबको पसंद आता है। अब तो मिठाइयों में भी आलू का प्रयोग होने लगा है, समोसा तो बिना आलू के बन ही नहीं सकता, आलू की पकौड़ी तो चटनी के साथ गर्मा गर्म खाने में बड़ा ही मजा आता है। एक साथ ही लिख रहे हैं कि आलू कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, आलू पौधे का भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं होता है। एक साथ ही ये लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों के राजा है, पर मैं तो कहूंगी रसोई की रानी है। एक माँ जानती है कि बच्चों को कैसे सब्जी खिलाना पड़ती है, आलू के साथ कुछ मिला दो तो खा लेते हैं। और हमारा जो बिहारी खाना है वो तो बिना आलू के पूरा ही नहीं बनता है, दाल भात चोखा लिट्टी चोखा, और अगर आलू नहीं है तो ये व्यंजन अधूरा है। संक्रांति में दही चूड़ा, उसके साथ आलू दम, सफर में जाना है पूरी के साथ आलू की भुजिया, बरसात के दिनों के लिए आलू का सूप होता, अतिथियों के लिए आलू के चिप्स, सर्दियों में आलू के अचार, आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आलू सब सब्जियों के साथ घुल मिल जाता है, और अपने यहाँ आलू का रायता बहुत पसंद किया जाता है जो दही के साथ बनाया जाता है। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि अगर ठंडे ठंडे पानी से ही नहाना था तो सूरज को और पास क्यों बुलाना था। बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर इस गाने में अगर आप गौर करेंगे तो एक लाइन आती है कि आलू टमाटर का साग, जी हाँ, जब बहुत भूख लगी हो तो आलू टमाटर का जो साग होता है ना, वो हमारे मन को कितना ललचाता है, ये इसमें दिखाया गया है, इसीलिए हमने इस गाने को चुना है। तो सुनिएगा आप ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू साधारण सा दिखता है लेकिन हर रसोई की जान है, हर मसाले और हर सब्जी के साथ मिलकर स्वाद दो गुना कर देता है, इसलिए उसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। जिस थाली में आलू हो वो थाली अधूरी नहीं लगती, वो हर स्वाद को पूरा करने की ताकत रखता है। आलू की खासियत यही है कि वो खुद में सादा होकर भी हर व्यंजन को खास बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हम और बैराग फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। ऐसा कभी होता होगा ना कि आपने फरमाइश की है कि मुझे आलू से बना हुआ समोसा खाना है, लेकिन बन कुछ और जाता है, आलू के पकोड़े बन जाते हैं या आलू की टिकिया बन जाती है, तो आपके दिल में यही आता होगा ना कि अरे मैंने तो ये बनाने के लिए कहा था पर आज तो ये बन गया है, कुछ अलग ही हो गया है। चलिए ऐसा ही कुछ गाना है, सुनते हैं बैराग फिल्म से।

कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि रेसिपी कौन सी बनने वाली होती है और क्या बन जाती है, हम कोशिश करते हैं एक नई चीज कुछ बनाने की और कुछ और बनाने का सोचते हैं लेकिन वो बन नहीं पाता, कुछ और ही बन जाता है, हो सकता है कि वो उससे ज्यादा स्वादिष्ट और कभी कभी वो स्वाद जिसकी हम उम्मीद रखते हैं वो कभी नहीं आता है तो भी मन बड़ा खिन्न हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू को ध्यान से खाओ क्योंकि आलू बाहर से ठंडा होता है लेकिन अंदर से गर्म होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू ज्यादा खाओगे तो आलू जैसे हो जाओगे और लौकी खाओगे तो लौकी जैसे बनोगे। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सचमुच सही हो गया, मैंने आज आलू के पराठे ही बनाए, पतिदेव को बहुत पसंद है मक्खन और अचार के साथ। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की लौंज एक प्रकार की मिठाई है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सर्दियों में नए आलू को मिट्टी की हांडी में जिसमें आग तपती है उसमें रख देते हैं, उस पके आलू खाने का अलग ही आनंद और स्वाद है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई इसके भी दिन बहुरे हैं और वो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के भल्ले भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, दही भल्ले की तरह ही। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू और दाल की बड़ी की चटपटी भाजी बहुत पसंद है, और तो और मैंने आपका कार्यक्रम सुनकर श्रीमती जी से वही भाजी का आग्रह किया और उन्होंने भोजन बन जाने के बाद भी मेरी फरमाइश के अनुरूप मुझे भाजी बनाकर वो दे रही है। एक साथी लिख रही कि किसी पड़ोसी ने तो दरवाजा नहीं खटखटाया पर हाँ कई बार हमारी बेटी और उसकी सहेलियों ने जरूर कहा कि बाहर से अंदर आते ही कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आलू बेसन की, क्योंकि

हम जब सैंडविच के लिए मसाला तैयार करते हैं तो उसमें अहम भूमिका तो आलू की होती है, पर उस पर और भी कई चीजें डाली जाती है। सबसे तेल, फिर उसमें थोड़ा जीरा, सौंफ और खड़ा धनिया, और फिर थोड़ा सा बेसन डालकर भुनना, फिर अमचूर या नींबू डालकर उसमें उबले आलू को डालना, और फिर कहीं जाकर इस मसाले को ब्रेड में डालकर सेकना, तब जाकर सबको खिलाना, और फिर उसके बाद सबकी तारीफ पाना। एक साथी लिख रहे हैं कि बंगाल का आलू, बिहार और मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें आलू से बनाई जाती है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल थोड़ा मौसम का मिजाज ठंडा है, बारिश हो जाने से प्याज की पकौड़ी, समोसे और कुछ गर्म नाश्ता खाने का मन करता है। मौसम के साथ जुबान का मिजाज भी बदल जाता है तो अच्छा खाने का मन करता है। चाहे जितनी भी गर्मी हो पर बाजारों में चाट के ठेलों पर खूब भीड़ होती है, आलू की टिक्की, समोसे बहुत खाए जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आलू का जो आकार होता है गोल गोल होता है, लेकिन एक लंबे आकार की भी चीज होती है, और उसके बारे में भी बहुत सारी बातें इस गाने में कही गई है, तो उसे भी हम सुन लेते हैं। जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का गाना है, प्रतीक जोसेफ की आवाज, इन्हीं का लिखा हुआ गाना है। संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत हिमेश रेशमिया का, और बड़े दिलचस्प अंदाज में इन्होंने जो है जीवन का फलसफा वो सिखाने की कोशिश की गई है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू की टिक्की के साथ चटपटी इमली की चटनी ऊपर दही से डाल दे फिर खाने में स्वाद आ जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि व्रत में तो आलू बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उबला आलू और दही का रायता फ्राई में फिंगर चिप्स, हर हाल में आलू बहुत अच्छा लगता है, समोसे तो आलू के बगैर बन ही नहीं सकते। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि आज ही मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि आलू टमाटर की रसीली सब्जी बनाना, कहते हैं कि डायबिटीज वालों को लाल आलू खाना चाहिए और उबले हुए आलू को 12 घंटे फ्रिज में रखने के बाद खाना चाहिए जिसमें से आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। एक के साथी लिख रहे हैं कि कटक का आलू दम दही बड़ा जिस किसी ने खाया उसे कटक घूमने आने का मजा आया। विश्व प्रसिद्ध आलू दम दही बड़ा के स्वाद सभी मुसाफिर के पेट भरने के लिए ये याद किया जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उनकी फरमाइश होती थी कि फिंगर आलू बनाने हैं, तो सच कह रहे हैं हम बनाते बनाते थक जाते पर वो सब खाते जाते थे, और तो और एक दो दोस्त भी आ जाते, वो दिन भी क्या दिन थे। आजकल तो मम्मी आलू ज्यादा नहीं खाने चाहिए ऐसा कहती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू तो हम लोगों के यहाँ पहले भी बोया जाता था और वो अगस्त सितंबर तक सब्जी का पूरा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके कम हो गया है। ये एक साथी लिख रहे हैं कि आलू भारतीय रसोई की रीढ़ है, इससे यदि इसे सही और संतुलित तरीके से जैसे कि उबाल कर या बेक करके पकाया जाए तो ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए बेहतरीन है। आलू भारतीय रसोई का राजा है जिसके बिना हर घर का भोजन अधूरा माना जाता है। स्वाद पोषण और उपयोगिता के मामले में भारतीय व्यंजनों में आलू का स्थान सबसे ऊपर है। आलू वाकई स्नैक्स का राजा है, ये इतना वर्सेटाइल है इसमें कोई भी लाजवाब डिश मिनटों में बनाई जा सकती है। तो फिलहाल अगला जो हम गीत सुनवा रहे हैं उसमें तो केवल आलू टमाटर का जो साग होता है उसे ही कितने इस तरीके से इसमें हम सुनेंगे इस गाने में कि भूख होती है तब तो वो चीज हमें और भी ललचाती है, लेकिन नहीं भी भूख हो तो बोलने का जो अंदाज है इस के बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ आलू टमाटर का साग खा लिया जाए। संगीत किसका है बताइए हमें।

टमाटर का साग, इमली की चटनी बने, रोटी करारी सी के ही उससे असली लगे। आलू टमाटर का साग इमली की चटनी बने, रोटी करारी

उजाला फिल्म का गाना हमने सुना, शंकर जयकिशन का इसमें संगीत है। और ये सही बात है कि जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो सब्जी या कुछ चीज बना के ले रहे वो आलू की होती है। आलू की सब्जी और पूरियां, या फिर मसाले वाली पूरियां, या फिर आलू के पराठे, या इस तरह की चीजें हम बना करके ले जाते हैं। यहाँ तक कि हम जब सफर में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो भी सबसे ज्यादा जो सब्जी आपको दिखाई पड़ेगी वो आलू की सब्जी ही होगी। एक साथी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का फरुखाबाद शहर के जो आलू होते हैं वो भारत में नंबर वन तरह के आलू होते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने जमाने और आज तक आलू बैंगन की सब्जी सबसे ज्यादा गुजरात के घरों में खाई जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि ज्यादा खाओगे तो एसिडिटी करेगा। जी हाँ, कोई भी चीज हो उसे अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि छोटे छोटे आलू को जाड़े के दिनों में हर घर में तापने के लिए जो अलाव जलाते हैं उसमें भून कर बच्चे अक्सर कटोरी में नमक उसमें डाल करके खाते हैं। गरम गरम बड़ा टेस्टी होता है। पहले गन्ने की पेराई होती थी तो खोलते कढ़ाई में जब राब तैयार होने को होती थी तो छोटे छोटे आलू को धागे में गुथ कर कढ़ाई में डाल देते थे। कितना मीठा और टेस्टी वो आलू के लिए जो है हम झगड़ा करते थे। अब तो गाँवों में गन्ने की पेराई बंद हो गई है तो मीठा आलू भी अब नहीं मिलता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल लाल आलू बहुत मिल रहे हैं जिनमें कम मात्रा में स्टार्च होता है और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की भाजी, बैंगन का भरता, बोले जी बोलो तो क्या खाओगे, ये एक इस गाने के बारे में इन्होंने लिखा है। और

एक साथी लिख रहे हैं कि सबसे सस्ता आलू है, जो सभी सब्जियों के भाव ज्यादा हो जाते हैं, तो केवल आलू धनिया डालकर रसदार सब्जी चावल और रोटी के साथ खाने का जो मजा है वो बड़ा आता है। और एक साथी लिख रही है कि आज आलू की बातें सुनकर हमारी बेटी ने भी फरमाइश कर दी कि अभी तो खाना बन गया है तो डिनर में आज मस्त आलू की रसेदार सब्जी जिसमें डाली हो थोड़ी सी केरी और उसके साथ हो जाए थोड़े से जीरा राइस, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी लिख रही है कि आलू की बात हो रही तो मुझे चूल्हे की आंच में सेक कर आलू बहुत पसंद आते हैं। जब कभी लंबी यात्रा पर जाता हूं तो मम्मी हमेशा ही आलू के पराठे और आलू की चटनी रखती है जो सूखी रहती है और आसानी से हम ले जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आलू की बातें तो हम कर रहे हैं, उसे चटपटे व्यंजन भी, लेकिन हो सकता है कि हमारे कई साथी हो जिन्हें कुछ मीठी चीजें भी पसंद हो, जैसे बर्फी वगैरह इस तरह की चीजें भी तो उन्हें पसंद आती है, या फिर आलू से भी हम आलू की बर्फी भी बना सकते हैं। कई साथियों ने हमारे लिखा है कि आलू का हलवा बनाया जाता है, आलू की बर्फी भी बनती है। तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं, बर्फी फिल्म का, स्वानंद किरकिरे के बोल, प्रीतम का संगीत है, आवाज किसकी है आप बताइए हमें।

मोहित चौहान की आवाज में ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम सब्जियों का राजा कह सकते हैं, एक ऐसी सब्जी जिसके सहारे हम कोई भी उत्सव मना सकते हैं, कोई भी त्योहार की शान बढ़ा सकते हैं। सब्जियों को खाने में मुंह बिगाड़ने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। गोभी आलू, मटर आलू, परवल आलू, कटहल आलू, टमाटर आलू, किसी भी कॉम्बिनेशन में सुपर हिट है। आलू समोसे में आलू, पराठे में आलू, पकौड़े में आलू। और एक साथी ने हमारे ये लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने आलू के महत्व को समझाने के लिए हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। इस साल की थीम है जहां

आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है। और ये थीम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों को सहारा देने में आलू की भूमिका को रेखांकित करती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि माँ के हाथ के बने आलू के पराठों का स्वाद अब कहाँ मिलेगा, आज आपने माँ की याद दिला दी। और एक साथी लिख रहे हैं कि भंडारे में आलू पूड़ी खाने का स्वाद तो खाने वाला ही जानता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मेरी बेटी पूना के एक घर में रहकर पढ़ रही थी, मैं कभी कभार 10-15 दिन के लिए जाती थी, उसकी सहेलियों को बहुत आलू के भरवा पराठे दही कर आया था बनाकर खिलाया था, आए दिन यही फरमाइश उनकी होती थी। चलिए धन्यवाद आपका। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं और देव कोहली के बोल हैं, अनु मलिक का इसमें संगीत है।

हर रोज़ का।

हो जाए कर्मा कर्म एक भोसा। अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ जब जब के

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म का ये गाना हमने सुना और सचमुच जब समोसे की बात आती है तो ज्यादातर उसमें आलू ही डाल करके बनाया जाता है। आलू के बगैर समोसे का मजा हमें तो नहीं आता है। हो सकता है बहुत सारे साथी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखते हो। एक साथी हमारे लिख रहे हैं, उन्होंने आलू बोने का सबसे अच्छा तरीका जो है उसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण लिखा है। पूरा तो हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो ये बात आपके काम की हो सकती है कि उन्होंने लिखा है कि सबसे अच्छा तरीका है कि खेत में 3-4 बार गहरी जुताई करके और मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना ले। बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक जैसे कि कार्बेंडाजिम से उपचारित करें और बीज को मेड़ों पर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में रोपे, जहां लाइन से लाइन की दूरी सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी इतने सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण इन्होंने लिखा है जो हो सकता है कि आपके काम का हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक ही इबारत रहती है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं। किसी को इसमें बहुत कुछ अच्छा नजर आता है और किसी को इसमें कुछ बिल्कुल नहीं भाता है। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि अब गिलास पानी से आधा भरा है, इसे आधा भरा कहें या आधा खाली कहें, ये हमारी सोच पर है। वैसे सबसे जो अच्छी बात यह है कि इससे हमें बहुत सारे गानों के बारे में जानकारी मिलती। चलिए अब बात ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने जीवन में वो चीजें खाई होती है और हमें अच्छी लगती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आपको आलू नहीं खाना है या मीठा नहीं खाना है या तला हुआ नहीं खाना है, और तब हमारे दिल में एक ही बात आती है कि हाय रे वो दिन क्यों ना आए कि जब आलू की इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बनती। चलिए अनुराधा फिल्म का गाना सुनते हैं।

और अब एक बड़ी सुंदर बात, आलू का रस चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है, ऑलराउंडर है आलू, ये हमारी एक साथी ने बात लिखी है। और इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: And today, the Indian pair secured their semi-final berth after defeating Malaysia's Chen Thang Ri and To Yi in the quarter-finals yesterday. Meanwhile, India's men's doubles duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will also be in semi-final action. In women's cricket, India to take on hosts England in the second T20 international in Bristol today, with the visitors aiming to seal the three-match series. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. India currently lead the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. And in cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in Qualifier 2 at New Chandigarh last night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Army prepared for Operation Sindhu 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his 5-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. US Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international of 3-match series in Bristol today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।

0: who laid down their lives in the line of duty.
1: लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ओ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
3: आज डी के शिव कुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले। स्वेरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की

0: रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया, जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बुद्धि खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड

0: का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्र ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन नाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुति कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: 2 जून सगी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम्हें,
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना बना के देखो ये फिल्म का नाम है। आशा भोसले और साथियों की आवाजें, SH बिहारी की बोल, संगीत है रवि का।

0: की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने में भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आजाद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बाजे घुंगरू फिल्म का ये गाना आपने सुना। मोहम्मद रफी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाजों में शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एस डी बर्मन का।
1: लगता है कुछ ऐसा

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत है डी डी।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बनारसी ठग इस फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाते हैं जिसमें हमारे श्रोताओं ने पत्र लिख करके हमें उस गाने को सुनने की फरमाइश भेजी है। तो पहला जो गीत है ये दिल फिल्म का गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शमसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से। ये पत्र आया है हमारे पास मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अनजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

कहा दिल खो गया, न जाने कहा दिल खो गया, न जाने कहा।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस, पायल, श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत मस्तानी

0: हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम्हें।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में है, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी मीत शिवांश, अनूप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फतेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो है गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

मन चाहे गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं की पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो है रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाजों में। इंडिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए और सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्नि वॉल्यूम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: जी,
1: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
0: आप मेरी ओर क्यों देख रही
1: हैं? ऐसे ही।
0: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
1: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
0: आप कौन हैं?
1: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
0: और मैं जेल में फरने आई हूँ।
1: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
0: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
1: मैं एक नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे हैं। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
0: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
1: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
0: मेरा नाम डेजी है।
1: डेजी?
0: क्या हुआ?
1: मुझे कुछ याद आ रहा है।
0: क्या?
1: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
0: हाँ।
1: आपने हाईकोर्ट में अपील नहीं की?
0: अपील कभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
1: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
0: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
1: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
0: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
1: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
0: मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा बकिया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थी, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के दो तीन अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
2: ओह, डॉक्टर रामदास। गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
3: गुड मॉर्निंग बेनी। गुड मॉर्निंग।
2: कभी तबीयत कैसी है?
3: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं। अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
3: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
2: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
3: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
2: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे, ये क्या? गिटार। गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
3: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ।
2: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
3: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
2: अच्छा,
3: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
2: तब तो दोनों ही दो तरह की इंस्ट्रूमेंट्स हुए क्यों?
0: नमस्ते डॉक्टर।
2: ओ नमस्ते,
3: कहाँ गई थी तुम?
0: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
3: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
2: भाई पत्नी जी ठहरी, उत्कंठा हो सकती है। डेजी टॉनिक किस लिए लाई?
3: हम दोनों के लिए।
0: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
3: इसकी बात पर ध्यान न दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे वरना।
2: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हो फिर मिलेंगे।
3: अच्छा,
0: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं, हम ऐसे हम वैसे?
3: इसमें हर्ज ही क्या है, सच तो यही है ना?
0: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
3: इसमें शर्म का है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है? देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
0: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें, इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: ख्याल है।
0: मुझे याद है ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छी हो जाओ फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये अच्छे बेनी।
0: डेज़ी इधर आओ ना।
1: बेनी

0: Benny. एक बात बता।
1: पूछो।
0: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
1: बताऊं? दोनों।
0: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
1: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
0: दिल?

0: कलाकार तो नहीं लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ।
1: आप डॉक्टर लॉरेंस हैं?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ।
3: तुम बेनी हो ना?
0: हाँ
3: डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
0: हाँ मैं लॉरेंस हूँ।
3: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
2: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
3: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका।
2: और मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पा बेनी।
3: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कंपिटेंट डॉक्टर होंगे।
2: तो क्या मैं कंपिटेंट नहीं हूँ?
3: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
2: यही कोई 14 या 15 साल।
3: और तुम मुझे देख नहीं पहचानगे, खासतौर पर इस हालत में? गजब की याददाश्त है तुम्हारी। मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
2: नमस्ते नमस्ते, तो मैं देखते ही समझ गया था
1: आप आ गई हैं। तो लगता है
2: सब वो बातें रहने दीजिए। अब बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
0: चेस्ट में पेन है।
2: हाँ हाँ।
0: दिल की तरफ भी पेन है।
2: वैसे
0: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
1: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
2: हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेज़ी
1: जी,
2: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूर होगा जरूर करूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
0: डेज़ी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेज़ी के सुपुर्द कर दिया है।
2: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
0: हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
2: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो हाँ। खैर जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया है?
0: बाय
2: बाय।
1: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
0: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
1: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती हूँ। सो रही है क्या?
0: अरे गिरजा, तुम?
1: आप यहाँ?
0: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
1: दिल में दर्द? किसकी दिल ही नहीं, उसके दिल में दर्द?
0: जरा शिष्टता से बात करो।
1: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
0: सर आहिस्ता बोलो।
1: मुझे पहचान लिया आपने?
0: हाँ पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
1: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
0: तुम ऐसा सोचती हो?
1: सोचती नहीं बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
0: हाँ ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
1: हाँ आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ?
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
1: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
0: क्या?
1: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
0: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
1: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक चेहरा थे। चेहरा?
0: मेरी समझ में नहीं आ रहा है आखिर बात क्या है।
1: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
0: चलो इससे बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
1: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनकी जान बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाजू की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
0: देखो मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ।
1: हो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा?
0: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इससे मैं कुछ ना कहूं।
1: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। दो तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती, मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गीता बातें कर रहे थे। मुझे कुछ नहीं कहना है।
0: लेकिन मुझे तो कहना है, कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूं।
1: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
0: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
1: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
0: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतनी काफी है।
1: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
0: लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटना हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया। बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज न वो संस्था है न वो ऑफिस।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
1: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
0: कितने रुपए खर्च हुए?
1: करीब 600। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वाले ने वो रकम माफ कर दी थी।
0: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकते हो। डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
1: क्या?
0: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
1: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
0: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरजा। मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
1: गिरजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
2: वो बेनी कहाँ है?
1: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
2: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
1: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
2: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट एक वॉल्व में गड़बड़ है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना। मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा।
1: डॉक्टर, किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर।
2: अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
1: मुझे बहुत डर लग रहा है।
2: तो इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी थी।
1: मुझे सुनने का साहस नहीं है
0: डेजी। धीरज रखो डेजी, धीरज रखो। बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अरे बेनी आ रहे हैं।
4: आइए आइए, कहाँ जा?
0: ओ डॉक्टर,
2: मैं जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता पेशेंट देखते नहीं मिलता।
0: इस पैकेट में क्या है? बता दूंगा। पहले ये बताओ, मेरी रिपोर्ट देखकर तुमने क्या डायग्नोज किया
2: है? रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
0: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
2: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूं, आई विल डू माई बेस्ट।
0: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कहते हो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
2: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं, सी यू अगेन, बाय।
1: तुम तो चेरिन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठाना है?
0: तुम्हारे लिए एक चीज है।
1: अच्छा, देखो तो।
0: लो, देख लो।
1: ये अब काहे को, और यहां
0: मेरी ओर से प्रेजेंट।
1: प्रेजेंट?
0: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? तुम उदास नजरों से मुझे घूर के ले हो। लो ये रख लो।
1: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रही हो? बेनी, हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
0: ऐसे मुझे भी लग रहा है, तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर, साड़ी पसंद आई?
1: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
0: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो मुझे ना समझ रहे हो, तुम अगर ऐसे ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देख कर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं, रो मत। देखो, अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो, रूठ जाऊं? नहीं नहीं ना। अच्छा तो फिर हंस दो। देखो ये ये ये ऐसे ऐसे।
1: क्या क्या हुआ? ले गए, ले गए ना। कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चलने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा। लेकिन मेरा सुख

0: लेकिन मेरे हृदय में दर्द था, सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर हो चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे, मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन मिस गिरजा मेरे पास आई।
1: मेरी हरकत क्या है? छोटी बच्ची की तरह
0: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
1: दुख तो मुझे भी है देवी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझका बहुत दुखदार किया था।
0: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई। मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
1: ना देवी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ में धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे तेरी जाति को शांति नहीं मिलेगी। कैसी? अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम तेज में बैठ कर बातें करेंगे।
0: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। हर एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस विवाह सूत्र में बंध गए।
2: अच्छा,
0: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
3: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्नि वॉल्यूम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
4: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
5: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
4: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्पीकिंग के दीप।
6: बधाई हो बधाई, जन्मदिन की तुम्हें।
4: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
6: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
4: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
7: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मित्र प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।

0: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
1: तो सुनने में भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ है अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: क्यों देखे थे?

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं, और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष है जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था। वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओं चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे कहा अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है, और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चुहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है, और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है, और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर, क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है, और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है, कहीं पानी गिरा के चली जाती है, कभी बाबा की बात भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है, और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
0: जी,
1: प्रैंक करने वाली वो मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदार
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है, वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है। तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ, आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी, बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा।
1: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
0: जी,
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी, जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो और जो विश खिलाई, अभी भी करती हूँ वैसे काम।
0: यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही है,
1: कर रही है।
0: और गुंजा
1: रहेगी
0: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है उस समय, बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, जो उनके दिलों को छू रही थी, और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
0: अच्छा।
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
0: जी,
1: उन्होंने बस एक ही चीज बोली तुम जैसी हो वैसी रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई।
0: अच्छा।
1: आपने तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
0: जी।
1: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
2: जी,
1: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
2: अरे वाह।
1: हाँ,
2: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी? आप अभिनेत्री, आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि
1: हाँ,
2: अभिनेत्री बनेंगी।
1: हाँ,
2: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
1: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
2: अच्छा।
1: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
2: जी,
1: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को।
2: हाँ।
1: और सब खा रही और मुझे बोल रहे वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
2: अच्छा।
1: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
2: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि साधना गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हमारे श्रोताओं को सुना दे। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती है आपके साक्षात्कार के साथ?
1: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए।
2: क्या हाँ।
1: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उससे बस आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
2: उतनी बुलंद आवाज।
1: हाँ, बुलंद आवाज थी
2: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको भारतीय परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थी, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दोहत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य अभिनय बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया।
0: अच्छा,
1: वो मेरी बहन करती थी।
0: अच्छा,
1: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा,
1: अब अफसोस की बात ये कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत दुखद घटना है।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नर्तकी हैं, उस जगीरा में हमने देखा
1: मैं मार खा के की हूँ।
0: वो किस्सा भी जरा बता रहे हो।
1: ये था बद्री जी थे
0: जी,
1: हमारे डांस डायरेक्टर
0: जी,
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो नहीं थी। उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली
0: जी
1: और घूम के आना जी, मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना, लेके डंडा मारा पैर में। एकदम ठीक कर दिया मैंने।
0: अच्छा, एक डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत का
0: लाठी के भूत
1: लाठी के भूत मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी।
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप उन तक पहुंचाया,
1: क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
0: हाँ,
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक कटक के डांस किया उसने। तो मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में वाशा वाला, कि आप एक सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पा,

0: लगा कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी, अगर सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में।
1: अच्छा,
0: वो बह गया, बह रहा था जैसे। तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी, छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ।
1: हाँ।
0: तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
1: अच्छा।
0: हाँ, ये है, ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते राइट तो चली जाती है एकदम बाहर कैमरे की तो यही सचिन और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो सीधे नहीं इतना सा बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
1: अच्छा,
0: तो 2-3 चीजें ये सीखे कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है।
1: हाँ।
0: ऐसे चल फिर उनकी बारी चली जाती है तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया
1: जी।
0: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
1: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
0: मुझे लगता है कि पहली बात एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए। तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया कम हो गया, और जो चीज है ही नहीं आपके अंदर और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके। तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को, हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
1: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए ऐसा आपका कहना है। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है, ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
0: हाँ,
1: एक ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना।
1: हाँ,
0: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
1: जी,
0: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी
1: जी,
0: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
1: जी,
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगू
1: जी।
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
0: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ, ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ। हाँ, कि
1: जी जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो साधना जी हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं।
0: हाँ,
1: तो मौका है, दस्तूर भी है कि आपसे पसंद सुन ली जाए।
0: अच्छा, ऐसा
1: जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग अच्छे लगते हैं, तो कुछ दिल ने कहा ऐसी भी बातें होती हैं,
1: वो उसका संगीत कितना
0: खूबसूरत और बहुत मीठा संगीत है,
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं खूबसूरत सा नगमा।
2: कुछ

0: गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई है, मस्ती के साथ सब करती गई है और उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं। तो
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी, तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा।
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन जब कटने होते हैं ना तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वाज सेटिस्फाइड जो थी, और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं।
0: हाँ।
1: तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है।
0: जी, जी जी
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी थोड़ा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है
0: जी,
1: तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा वो सीन क्यों काटा
0: जी।
1: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
0: नई
1: प्रोडक्शन में
0: जी जी,
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है।
0: हाँ।
1: बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने इवेंट्स में चले जाते हैं। आजकल हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
0: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे?

0: सेट पे ही रहते थे।
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।
0: अच्छा,
1: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं, या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है, तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सबको आदत
0: सारा लड़कियों से गिरी रहती थी।
1: हाँ, तो टाइम निकल जाता है, बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
0: जी।
1: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है। तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पे।
0: हाँ। नहीं वैसे आप बहुत हॉट है। हाँ। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के बाद।
1: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
0: जी,
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकरवर्णम फिल्म आई थी
0: जी,
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकरवर्णम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में
0: जी,
1: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। अगर मैं क्यों जाऊं, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब यहाँ तो। लेकिन वो ले गए
0: जी,
1: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम, ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन टू मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसे हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं,
0: वही तो सेम फिल्म।
1: हाँ, सेम फिल्म। लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल, मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी, जुड़ना ऐसी फिल्म
0: जी,
1: से
0: जी।
1: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहां पे
0: जी,
1: साउथ में सरगम ये सब उन्होंने बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन
0: मूर्तियां,
1: हाँ, तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
0: जी,
1: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ट अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद,
0: हाँ, जी जी, उसके बाद ही।
1: हाँ, तो मस्ती में की बस। और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज है
0: जी,
1: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
0: अच्छा,
1: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं, मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। तो वो फिल्म की, उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्म नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के, दादी बन के, चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
0: हाँ।
1: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी, फिर बच्चों को देखना ये सब, और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो पिछले 5 सालों की जुगनी
0: जी, जुगनी
1: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म है।
0: अच्छी
1: है। तो ये नए नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब, तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
0: जी।
1: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके। दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, ना सब मिल के काम कर रहे हैं,
0: मिल के काम कर रहे हैं, पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं।
1: फिर मैंने अनुराग कश्यप को मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
0: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है, तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
1: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे।
0: हाँ।
1: कि ऐसा ही करना है, और कई कई जगह तो वो आए पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी।
0: हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे,
1: आपको लेकर जाएगा। पति का नाम राजकुमार ही
0: नहीं, राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
1: वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
0: अच्छा, मैं हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
1: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा नहीं करूंगी। तो ये बिहार गया, छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है। तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम और मिलने आए, तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ। और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने। तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले, मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने। इनकार में जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जाते, इनको इतनी गुस्सा है। बोले शादी करके बताता हूँ इसको, कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
0: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली।
1: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर।
0: हाँ।
1: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
0: अच्छा,
1: फिर मेरी
0: वही लड़की हीरोइन चाहिए थी। हाँ। लेकिन उसके साथ शादी नहीं करा थी।
1: होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
0: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
1: ये रात भीगी भीगी

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की,
0: वो वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी,
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वही जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो ही प्यारी चढ़े वो
0: जी,
1: जो कि ब्लॉकबस्टर आज भी ब्लॉकबस्टर है
0: जी।
1: उसको मेरे फादर लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई,

0: हस्बैंड ने जबकि वो चले गए इस दुनिया से
1: जी,
0: गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
1: अच्छा,
0: तो उसमें मैंने काम किया
1: जी,
0: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो मैं घर में बैठी है चलो
1: इतना लाइक बना लिया होगा।
0: बहुत अच्छी फिल्म बनी लेकिन
1: बहुत प्यारी है।
0: हाँ, वो
1: अच्छी फिल्म जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहां की भाषा है उस भाषा में आ जाती है। ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी।
0: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
1: अच्छा
0: हमें अपनी जो बाइयां आती थी उन सबसे तो
1: मतलब वो चाट और लस्सी खाते
0: पीते। हाँ
1: जी,
0: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। सिर्फ मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने।
1: अच्छा,
0: कि मुझे आनी चाहिए क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
1: सरदार खड़े हैं और
0: तो हमारे पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं।
1: अच्छा,
0: हाँ हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी
1: जी,
0: हाँ ये काफी फर्क है
1: जी।
0: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है। अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या।
1: अच्छा,
0: ऐसा था।
1: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ, जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है, वो गीत हम सुनाना चाहेंगे।
0: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते हैं
1: जी,
0: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजा रे चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था और थोड़ा अलग था, चंदन चंदन ऐसा
1: बहुत,
0: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है।
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इसकी?
0: हाँ,
1: इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं। रविंद्र जैन वहां पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे, गाया जा रहा होगा।
0: हाँ,
1: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुन रहे?
0: बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा। अगर आप
1: जी, बहुत खूबसूरत गीत है
0: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे
1: जी,
0: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
1: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगे शायद?
1: बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि और लगता है सुनते रहो आप, चलते रहेंगे म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो,
1: बट जितना था सब भरा हुआ था। और उसकी जो ऊर्जा होती है ना, वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे।
1: मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था। उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने
1: में, और सुना रहे थे पसंद है नहीं, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे। अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी ना
0: जी,
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
0: शब्द भी लिख लेते थे
1: एक सेकंड में
0: 30 गाने एक समय पे,
1: 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
0: लगातार।
1: दादा कह रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया। तो
0: और कहीं लिखा नहीं जा रहे क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
1: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं, और सचिन, हमने बहुत शोज किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती, मैं तुमसे गवाता।
0: ये रविंद्र

0: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे उन सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
1: जी। और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो
0: हाँ,
1: आनंद ही अलग आता
0: हाँ, वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है।
1: अच्छा,
0: तो आई थिंक वो अखड़पन में सब कुछ सीख गई।
1: हाँ,
0: अल्लड़पन कहते ना,
1: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई।
0: ये बात है, मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना करो बस उसके बाद का जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
1: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, लगेगी तो संभाल लेना। बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करके, इतना नई रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे
0: घूमते? नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, कि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अब शूटिंग भी करेगी।
1: हाँ,
0: ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था।
1: अच्छा,
0: नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किया इसमें। लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो।
1: अरे वाह,
0: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी।
1: हाँ,
0: तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने
1: बोल दिया।
0: मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
1: तो यानी आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों
0: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
1: जी,
0: तो यहाँ भी हैं बस खुश रहे
1: जी। बिल्कुल साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का जो आपकी बदमाशियों से परेशान है, पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय की जगत में है?
0: नहीं, मेरा बेटा तो बहुत दूर है।
1: अच्छा,
0: उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
1: जी।
0: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की है
1: जी,
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
1: जी,
0: अनुपम जी ने,
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
1: हाँ, तो चल
0: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है ऑडिशन वगैरह, वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं,
1: मतलब तो उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता।
0: नहीं, मैं करती भी नहीं,
1: क्योंकि मेहनत करो
0: अपनी मेहनत करो,
1: ये बहुत अच्छी बात है।
0: मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
1: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समझ से आपको जान रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर दो घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं, तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है तो क्या आप करेंगी?
0: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30
1: जी,
0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुमने। मुझे थी जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोले 100%।
1: हाँ,
0: अब देखते हैं क्या होता है।
1: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया।
0: हाँ,
1: और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती है।
0: हाँ,
1: ऐसा मान के चलते चलिए, बोलिए चलिए, बड़ी बड़े पवित्र लोग यहाँ पर आए हैं।
0: हाँ,
1: आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है।
0: हाँ, लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं
1: जी,
0: कि ऐसा नहीं है कि लाइफ सिर्फ मतलब

0: बेड ऑफ रोजेस बोलते ना, बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ,
1: ऊर्जा सकारात्मक।
0: हाँ, वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है उस दौर में है। या मुझे फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है, मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊं या मर जाऊं।
1: अरे
0: हाँ, मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीज में मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था,
1: क्या बात है।
0: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें हमारा एक जी, और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें हमारा एक गाना जो है तो, क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई है तो कुछ गाने हम
0: कोशिश करते हूँ। चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ, मतलब मेरे लिए भगवान भी है, सब कुछ है
1: जी।
0: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज से सीखा है
1: जी,
0: उनके गाना गा देती हूँ
1: जी।

और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर दो घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं

0: बहुत कम ये ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
1: और बचता कभी नहीं,
0: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती माए
1: जी।
0: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं वो तो जिंदगी खत्म हो गई
1: जी।
0: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है। तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहनने से मुझे याद आया मैंने ब्रांड भी शुरू किया है।
1: अच्छा
0: हाँ, एक कच्चे धागे करके। अच्छा। और साड़ियां वीस वगैरह, मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है ये, ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी है पहेली
1: जी,
0: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। बहुत सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है।
1: अरे वाह।
0: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब देखें।
1: फिल्म है कैसी है पहेली,
0: कैसी है पहेली
1: जरूर से हम सभी विविध भारती परिवार जरूर से उनको देखेंगे, इतना हमें विश्वास है। और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आए, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
0: अच्छा लगा मुझे भी। अच्छा लगता है विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
1: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा लगता है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है। तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मोबी टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम्हें,
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 5 बजते हैं

अब से लेकर रात्रि 11 बजे तक आप सुनेंगे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए आज शाम प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ देर बाद शाम 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने। युवा दोस्तों के लिए उनका कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा युवाणी शाम 5:30 पर। आज इसमें मनोरंजन के साथ साथ योग को अपनाएं इस शीर्षक पर बातचीत भी होगी।

श्रोताओ, शाम 6:20 पर डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा आज सुनाएंगे गीता संदेश। गीता संदेश में आज आप सुन सकेंगे अध्याय 4 से श्लोक 22 से 24 तक की व्याख्या। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसानवाणी होगा हर रोज की तरह शाम 6:30 पर, और ग्रामीण आंचल और ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा हमारा कार्यक्रम ग्राम संसार होगा शाम 7:00 से। फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत का रहेगा जय जवान शाम 7:30 पर, और गैर फिल्मी रचनाओं के कार्यक्रम में गुलदस्ता का आप आनंद ले पाएंगे शाम 7:45 से। फिल्म संगीत और कुछ विशेष बातों से जुड़ा कार्यक्रम, कुछ बातें कुछ गीत, रात्रि 8:00 से।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें होगा रात्रि ठीक 10 बजे से, और इसके साथ साथ आज शाम की सभा में आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकेंगे हर रोज की तरह रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम आपके लिए, और दूसरा फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत रात्रि 9:30 से। इसके साथ समाचारों के समय इस प्रकार से रहेंगे, हिंदी में समाचार शाम ठीक 6 बजे, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि ठीक 11 बजे, अंग्रेजी में समाचार शाम 6:05 पर, रात्रि ठीक 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। हिंदी और अंग्रेजी के समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। श्रोताओ, और प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से हम रिले करेंगे हर रोज की तरह शाम 6:10 पर। तो ये थी आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 5:05 होते हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम, गाने नए पुराने। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में पहली प्रस्तुति लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म है सन्यासी। आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म थी सन्यासी। लीजिए अब सुनिए मोहरा फिल्म से ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप गीत सुन रहे थे। फिल्म थी धर्मवीर। और श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। जैसा कि आज हरियाणा प्रदेश में दोपहर बाद से ही मौसम खुशगवार है, तेज भीषण गर्मी से आज निश्चित रूप से सभी को राहत मिली होगी और सभी के चेहरों पर एक मुस्कान निश्चित रूप से आई होगी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था और आज

और इसके साथ ही कार्यक्रम गाने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 5:30 होते हैं। अब युवा दोस्त सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले युवा शक्ति को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, युवा शक्ति होश और जोश का एक युगल मिश्रण देखने को मिलता है, जिसमें जोश के साथ साथ होश की भी पूरी संभावनाएं मौजूद रहती हैं। जी हाँ, इसीलिए नौजवान को देश का भविष्य बताया गया है। और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी आधे से ज़्यादा आबादी आज के दिन पूरी दुनिया में जवान आबादी के रूप में जानी जाती है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, हम एक बड़ी मानव शक्ति के रूप में अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। ईश्वर का, ऊपर वाले का, हम सब के ऊपर ये बड़ा एक आशीर्वाद है। और जिस देश में युवा शक्ति इतने बड़े पैमाने पर मौजूद हो, तो निश्चित रूप से उस देश का भविष्य उज्जवल होता है, प्रगतिशील होता है। आज के इस कार्यक्रम में युवाओं का स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में दोस्तों, मनोरंजन तो आपका हम करवाएंगे ही, लेकिन आज योगा के ऊपर भी हम बात करेंगे, और जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहे और देश और समाज भी स्वस्थ रहे। और इसके साथ साथ कुछ अन्य उपयोगी जानकारियां भी आपके साथ साझा की जाएंगी। शुरुआत में आपको ले चलते हैं पहले मनोरंजन की दुनिया में, और फिर आपके साथ हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तो युवा दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी में अब आपके साथ हम एक चर्चा करेंगे और चर्चा का आज का हमारा जो टॉपिक है, शीर्षक है, वो है योगा, योग को अपनाएं। तो दोस्तों, योग की जहां तक बात आती है, केवल योग से हम अपने स्वास्थ्य को लाभ नहीं पहुंचाते, अपितु योग एक बहुत बड़ी अवधारणा है जो अनंत समय से भारतीय समाज में जुड़ी हुई है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, सन्यासियों ने काल दर कार, पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज को अपनाया है। वो इसलिए कि स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक जो स्वास्थ्य हमारा होता है वो भी हम प्राप्त कर सकें और इसके आगे बढ़ते हुए भी कुछ बातें योगा के बारे में हमारे सामने आती हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, साधु सन्यासी लोग रहे हैं, वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए, उस आदि और अनादि शक्ति का रहस्य जानने के लिए, उससे जुड़ने के लिए भी इसका सहारा लेते आए हैं। और जहां तक योगा की बात आती है तो योगा में केवल हम सिर्फ योग आसनों को ही शामिल नहीं करते। आसन अपनी जगह पूरी योगा के जो अष्टांग योग जो होता है उसके अंदर एक भाग है, जिसमें इस शरीर को अंदर से और बाहर से साफ, न केवल साफ सुथरा रखना अपितु मजबूती प्रदान भी करना, ताकि हर मौसम के अनुसार इस शरीर को ढाला जा सके, इस शरीर को एक मजबूती के स्तर पर रखा जा सके। जैसा मौसम आता है वैसा शरीर हमारा अपने आप ढलता चला जाता है या बनता चला जाता है, ये योगा हमें सिखाता है। आप सभी अच्छे से थोड़ा समझते भी होंगे, मानते भी होंगे कि जो हमारे साधु सन्यासी या इस तरह के जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं समाज में, कालखंड में, अलग अलग कालों में, समय के वर्षों में, जैसे भी आप समझे, तो दोस्तों देखेंगे कि अधिकतर साधु सन्यासी लोग रिहायशी क्षेत्रों से, आबादी वाले नगरों से, गांवों से, या इस तरह के जो भी क्षेत्र होते थे उनसे कुछ बाहर जाके अपना निवास स्थान बनाते थे, जिसे हम जंगल कह सकते हैं, वन कह सकते हैं, खेत खलिहान कह सकते हैं, ऊंचे पर्वत पहाड़ कह सकते हैं। तो वहां पर मौसमों के अनुसार अपने शरीर को, चाहे वो जंगल है, चाहे वो नदिया का किनारा है या पहाड़ है, किसी भी जगह पर है, शरीर को ढाला जा सके, मजबूत बनाया जा सके। चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, शरद ऋतु हो, वर्षा काल हो, कोई भी मौसम हो, तो दोस्तों शरीर को अंदरूनी रूप से साफ रखना और बाहर से मजबूती प्रदान करना, ये आसनों के माध्यम से हम सीखते हैं। लेकिन अष्टांग योग की अवधारणा बहुत बड़ी है, वह न केवल एक मनुष्य को अंदर से मजबूती देता है अपितु उसकी मानसिक सेहत को भी संतुलित अवस्था में लेके आता है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि हम सभी अगर इस अष्टांग योग को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने आप को मजबूती प्रदान करते हैं, अपने आप को एक खुशी के स्तर पर रखते हैं, अपितु अंदर से मजबूत होने से हमारा बाहरी या ऊपरी व्यवहार भी अच्छा होता है, जो कि समाज में आसपास जो लोग रहते हैं या जिनसे हम संपर्क में आते हैं उनको भी एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे मनुष्यों के बीच में, मानवता के बीच में एक अपनापन, भाईचारा या एक खुशी का माहौल बनता है, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है और स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो बात है ये युवाओं के ऊपर ज्यादा लागू होती है, क्योंकि वो राष्ट्र का भविष्य है, आने वाले समय का उनको देश का नेतृत्व भी करना है, अनेक अलग अलग तरह की जिम्मेवारियां भी समाज में और राष्ट्र के स्तर पर निभानी है। तो दोस्तों ये युवा शक्ति के लिए एक विशेष संदेश है कि वो योग को दिल से अपनाएं, और ना केवल योग एक शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत रखने का तरीका है, बल्कि ये एक पुरातन सनातन जीवन शैली रही है जिसे हमें आगे लेके जाना है। तो योग हमारे लिए हर तरीके से फायदेमंद है। तो दोस्तों अब इस चर्चा को हम देंगे विराम और आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से मनोरंजन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले ये विज्ञापन।
2: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
3: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

दूसरा आदमी इस फिल्म का दो गाना अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। राजेश रोशन का संगीत इस फिल्म के लिए था। और दोस्तों कार्यक्रम में लीजिए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फांसी फिल्म का ये गीत।

फांसी फिल्म का यह गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। गीत लिखा था गुलशन बावरा ने और संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं यह गीत जिसे हमने लिया है अदालत फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में आइए सुनते हैं।

हम अपने सुनने वालों को याद दिलाना चाहेंगे कि फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत रात्रि 8 बजे से और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें होगा रात्रि ठीक 10 बजे से FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और 6:10 पर प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से रिले करेंगे। तो कुछ क्षणों की प्रतीक्षा और उसके बाद हिंदी में

ये आकाशवाणी है। अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों

0: की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के संबंध में दिए गए आदेश के बाद अतिथि अध्यापकों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। सरकार ने कहा, न्यायालय का फैसला जल्द लागू होगा। पलवल जिले में हथीन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 बदमाशों को अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार किया और जींद में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति पारंगत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है। भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के योद्धाओं के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में युवा शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शिक्षा मंत्री आज चरखी दादरी के जोजू कला स्थित महिला महाविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मंत्री ने महाविद्यालय की 650 छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्रियां प्रदान की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बेटियां अब देश व प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को पढ़ाना और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना प्रदेश सरकार का मूल मंत्र है, इसीलिए सरकार ने प्रत्येक 20 किलोमीटर के दायरे में एक राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने का संकल्प लिया है, ताकि किसी भी बेटी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर ना जाना पड़े और उसकी पढ़ाई बाधित ना हो। मंत्री ने कहा कि जोजू कला महिला महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराकर महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिख रहा है। उन्होंने कहा कि जिस गांव की बेटियां कभी सीमित अवसरों तक सिमटी रहती थी, आज वहां बेटियां स्वर्ण पदक प्राप्त कर नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे केवल नौकरी पाने तक सीमित ना रहें, बल्कि लोगों को दिशा देने के लिए समाज का नेतृत्व भी करें। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए जाने के बाद अतिथि अध्यापकों के प्रतिनिधिमंडल ने आज खेल मंत्री गौरव गौतम के निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एवं खेल मंत्री गौरव गौतम का धन्यवाद व्यक्त किया। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि ये उन हजारों अध्यापकों के करीब 20 वर्षों के लंबे संघर्ष की जीत है, जिन्होंने लगातार अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई। श्री गौरव गौतम ने कहा कि देश व प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने में अध्यापकों की अहम भूमिका है। प्रदेश सरकार शिक्षकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और न्यायालय के फैसले को जल्द लागू किया जाएगा।
1: जिस प्रकार से आप लोगों का पक्ष हरियाणा सरकार ने माननीय न्यायालय में रखा और उससे सिर्फ हमारे पलवल के नहीं पूरे हरियाणा के गेस्ट टीचरों का फायदा हुआ है और जो न्यायालय का आदेश आया है आपका उसको लाभ मिल चुके, ऐसा हम लोग जल्दी प्रयास करेंगे।
0: चंडीगढ़ जनगणना संचालन निदेशालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण ब्लॉक कार्य पूर्ण कर लिया है। निदेशालय द्वारा जारी नवीनतम प्रगति रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी 294 मकान सूचीकरण ब्लॉकों को कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे चंडीगढ़ के सभी 10 जनगणना प्रभारों में 100% कवरेज हुई है। जनगणना संचालन निदेशक डॉ. नवजोत खोसा और प्रधान जनगणना अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि चंडीगढ़ जनगणना संचालन निदेशालय अब जनगणना 2027 के अगले चरण अर्थात जनसंख्या गणना के लिए पूर्णतः तैयार है, जो अगले वर्ष फरवरी में प्रस्तावित है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। पलवल जिले में हथीन पुलिस ने आज मुठभेड़ के बाद एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए हैं, जिनमें 12.5 बोर का राइफल नुमा हथियार, 315 बोर का कट्टा पिस्तौल व भारी मात्रा में कारतूस शामिल हैं। आरोपियों की उत्तर प्रदेश नंबर की कार भी जब्त की गई है। मुख्यालय में तैनात उप पुलिस अधीक्षक साहिल ढिल्लो ने बताया,
2: आरोपियों ने पुलिस पार्टी को टक्कर मारते हुए गाड़ी को होटल की तरफ भगा लिया। पुलिस ने उनके पीछे अपनी गाड़ी लगाई। पूरे जिले में नाकाबंदी की गई। मुंडकटी थाने के सामने नाका लगाया, वहां पर वाहनों की भीड़ के चलते वो गाड़ी रुक गई। आरोपियों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किए। हमारे एक कांस्टेबल देवेंद्र के पैर में गोली भी लग गई। आरोपियों ने गाड़ी को मरोली गाँव की तरफ मोड़ लिया और पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे और उनकी गाड़ियों के टायर के ऊपर गोली मारी गई। गोली लगने की वजह से टायर फट गए और गाड़ी रुक गई। पलवल पुलिस ने फायर किया, जिससे एक आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई और उनको काबू किया गया।
0: उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में पहचान उत्तर प्रदेश के इटावा जिला निवासी अक्रम कृष्ण आलोक माधव गुप्ता के रूप में हुई है। श्री ढिल्लो ने कहा कि फरार आरोपी विपुल द्विवेदी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के विभिन्न थानों में लूट, डकैती, अपहरण, जानलेवा हमलों के अभियोग दर्ज हैं। किसानों को रासायनिक खादों व जहरीले कीटनाशकों से मुक्ति दिलाने और पारंपरिक एवं वैज्ञानिक तरीकों से प्राकृतिक खेती में पारंगत करने के लिए जींद में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान हमेटी में 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जो कल समाप्त होगा। इस शिविर में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदेश भर से आए प्रगतिशील किसानों को आधुनिक और प्राकृतिक खेती के गुर सिखाए जा रहे हैं। संस्थान के मुख्य प्रशिक्षक डॉ. सुभाष ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह प्रशिक्षण रासायनिक खादों और कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। अंधाधुंध प्रयोग ने हमारे भोजन और उत्पादन को जहरीला बना दिया है।
3: इस समय हमारे यहाँ पे प्राकृतिक खेती के ऊपर 5 दिवसीय प्रशिक्षण चला हुआ है। प्राकृतिक खेती जो जहर मुक्त गो आधारित प्रकृति के अनुकूल प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा की जाती है, वो समय की जरूरत है, क्योंकि रासायनिक कीटनाशकों ने, रासायनिक उर्वरकों ने हमारे भोजन को, उत्पादन को जहरीला बना दिया है। हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है, हवा पानी प्रदूषित होता जा रहा है। बहुत सारी प्रजातियां, जैसे आप देख रहे हो केंचुआ है, मधुमक्खी है, चिड़िया है, इस विलुप्त होती जा रही है। इन सबको देखते हुए जरूरी हो गया है कि हम रसायन के प्राकृतिक तरीके से खेती को बढ़ावा दें।
0: प्रशिक्षण कर रहे गांव रंधाना के प्रगतिशील किसान दलबीर चहल ने बताया,
4: किसानों की ट्रेनिंग से प्राकृतिक खेती और जहर मुक्त खेती विषय है और करीब हरियाणा के 300 किसानों को चुना गया है जो प्रगतिशील किसान हैं। हमारे 300 किसान वो किसान हैं जो अपने स्तर पर 5-6 साल 8-10 साल से कार्य कर रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पर किसानों को बड़ी बड़ी सभा करके और खेतों में जाकर धरातल पर कार्य कर रहे हैं। किसान सरकार से मिलकर चलेंगे और मोटिवेट करने का काम करेंगे, किसान जहर मुक्त खेती को अपनाएं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा से आज का गीता संदेश। आज आप सुनेंगे अध्याय 4 से श्लोक 22 से 24 तक की व्याख्या।
6: श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चतुर्थ अध्याय के 22, 23 व 24 श्लोकों की व्याख्या। 22 में व उसके आगे के श्लोकों में प्रवृत्ति परायण कर्म योग के साधक की कर्मों में निर्लिप्तता का रहस्य बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार समझाते हुए कह रहे हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समह सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में हमेशा संतुष्ट रहता है, जो ईर्ष्या से रहित है, द्वंद्वों से सदा अतीत है तथा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करते हुए भी उसमें नहीं बंधता, अर्थात निष्काम भाव से फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्म करने पर फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति निंदा आदि जो कुछ मिलता है, ऐसी स्थिति में कर्म योगी के अंतःकरण में असंतोष नहीं होता तथा विद्या, बुद्धि, धन, मान सम्मान आदि गुण के संबंध से दूसरों की उन्नति देखकर जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता एवं हर्ष, शोक, राग, द्वेष, यश, अपयश, जय, पराजय आदि युग्म विकारों द्वंद्वों से जो परे है, कर्म फल मिलने पर सिद्धावस्था में वह विघ्न बाधा के कारण कर्म फल न मिलने पर असिद्धावस्था में विकार रहित रहते हुए जो एक समान अवस्था में रहता है, इस प्रकार से विभिन्न अवस्था में कर्म करता हुआ कर्म योगी विहित कर्मों का अनुष्ठान करके उनसे नहीं बंधता, उन कर्मों में लिप्त नहीं होता। यह ध्यातव्य है कि वर्तमान समय में तृष्णा बढ़ाने के कारण प्रत्येक मानव दुखी है, क्योंकि कहा है सही दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, ये ही दुख का मूल कारण है। गीता के इस श्लोक संदेश में निष्काम भाव से कर्म करता हुआ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ कर्म योगी सुखी रहता है। विस्तारवाद आज दुख का मूल कारण है, संतोषी ही सुखी रहता है। अब अगले श्लोक में वर्ण आश्रम स्वभाव व परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म ही जिन कर्म योगियों का यज्ञ है, लोक संग्रहार्थ निस्वार्थ भाव से आवश्यक क्रियाओं हेतु यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं, इस भाव का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो देहाभिमान और ममता से मुक्त हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात क्रियाओं, घटनाओं, परिस्थितियों, व्यक्तियों पदार्थों से स्वभाव छोड़कर लोक संग्रह अर्थ कर्म करते हुए कर्म योगी का इनसे जब लगाव समाप्त हो जाता है तथा जब वह अहंता व ममता से मुक्त हो जाता है तथा सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाती है, इस कारण प्रत्येक क्रिया में जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में लगा रहता है तथा निस्वार्थ भाव से केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ के लिए कर्मों का आचरण करता है, ऐसे पुरुष के जन्म जन्मांतर के पूर्व संचित कर्मों के साथ संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। फिर उसके किसी भी कर्म में फल देने की शक्ति नहीं रहती। शंकराचार्य के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के सिद्धांत को प्रस्तुत करता हुआ यह श्लोक हमें यह संदेश देता है कि यदि हम कर्म व उसके फल के प्रति आसक्त रहेंगे तो बार बार जन्म मरण के चक्कर में चक्कर काटते रहेंगे। अतः अनासक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहें, ये ही ध्यान देने योग्य बात है। अब भगवान श्री कृष्ण साधकों की रुचि विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप में वर्णन करते हुए सब कुछ ब्रह्म ही है, अर्जुन को इस प्रकार ब्रह्म यज्ञ के बारे में उपदेश देते हुए कहते हैं, ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अर्थात जिस यज्ञ में श्रुआ तिल जौ घी हवन करने वाला और हवन रूप क्रियाएं जो अर्पण करता है और जिस अग्नि में वह आहुति डालता है उसके लिए कर्ता क्रिया और कर्म, दृष्टा दृष्टि और दर्शन, श्रोत्र श्रवण और शब्द, यह सब ही ब्रह्म होते हैं, उसके लिए सब ब्रह्म में ही हवन किया गया होता है। ब्रह्म रूप कर्म समाधि से उसे ब्रह्म को ही प्राप्त होना है तथा प्राप्त किया जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है, अर्थात उसके लिए पूर्ण संसार ही ब्रह्म है। निरंतर सर्वत्र सम बुद्धि करते रहना, किसी को भी ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना, अंतिम ध्येय भी ब्रह्म ही समझना तथा स्वयं भी ब्रह्ममय बने रहना है। छांदोग्य उपनिषद के सर्वम खलुविदम ब्रह्म वाक्यानुसार यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है, क्योंकि जो यहाँ दृश्य मात्र है वह प्रतियक्षण अदृश्य में जा रहा है। इस अदृश्य की सत्ता भाव रूप ब्रह्म पर टिकी हुई है, अतः भाव रूप से एक ब्रह्म ही शेष रहता है। इस श्लोक के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को गीता यही संदेश देती है कि हम संपूर्ण कर्म निष्काम भाव से ब्रह्ममय होकर के करें। श्रोताओं, आज आपने गीता के चतुर्थ अध्याय के इन श्लोकों की व्याख्या सुनी।
5: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश, प्रस्तुति डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा की थी। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 6:30 होते हैं, अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। बहनों और भाइयों, आसपास के क्षेत्र की बात करें तो भाइयों राम जी ने थोड़ी सी कृपा तो जरूर करी, क्योंकि भाई गर्मी में बिल्कुल जो कति गर्मी कुसुती पड़ थी थोड़ी सी उसमें रात जरूर दी है। और कार्यक्रम किसान वाणी में साथियों कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर जरूर आते हैं। और आज हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा भाई वर्षाकालीन भिंडी की बिजाई, इसी तरह भाई नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी जरूर बताओगे। और भाई आज की नसीहत में हम बात करेंगे लागत कम करने के उपाय। इसी तरह भाई कार्यक्रम की जो शुरुआत हम हमेशा आज के कृषि प्रश्न से जरूर करते हैं, और आज का कृषि प्रश्न है खूंब क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र, भाई वो कौन सा जिला है जो हरियाणा में प्रथम है। प्रश्न एक बार फिर से, खूंब क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है, तो भाई उस जिले का अपना नाम जरूर बताना है। और इसका जो सही उत्तर आप हमारे को 9466021336 यानी 9460213636 पर 6:50 से पहले आप ज़रूर दीजिए। और भाई जो सही जवाब देगा उसे प्रगतिशील किसान बहन भाई का जो नाम हम जरूर बचेंगे भाई, और उसको बधाई भी देंगे। और इसी तरह आप बिना देरी के साथियों 6:50 से पहले आप इसका सही उत्तर आप हमारे को व्हाट्सएप या फिर SMS के माध्यम से जरूर दे सकते हैं 9460213636 पर। ये तो रहा भाई आज का कृषि प्रश्न। और बहनों भाइयों हमारी जो कोशिश यही रहती है कि भाई हम जो कृषि से संबंधित भाई चाहे हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई हो चाहे कृषि वैज्ञानिक क्यों ना हो, उनके पास जाकर हम महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर लाते हैं ताकि हमारी जो कृषि हमेशा आगे रहे। इसी तरह आज हमने बातचीत करी भाई खूंब क्षेत्र में की बात करी थी, और इसी क्षेत्र में भाई आज जो बातचीत हमने करी है ये भाई क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल सोनीपत में भाई जो प्रभारी है डॉक्टर अजय सिंह यादव से बातचीत करी थी। तो भाई बातचीत सुनते हैं खूंब क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल सोनीपत के प्रभारी अजय सिंह यादव से बातचीत।
7: नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अजय सिंह यादव जी जो कि क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल के प्रभारी है, और आज इनसे जानते हैं कि खूंब क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के क्या अवसर है। डॉक्टर साहब सबसे पहले कार्यक्रम में जुड़ने पर आपका स्वागत है।
8: नमस्कार साथियों
7: जी। डॉक्टर साहब ये बेरोजगार युवाओं के लिए अगर जो रोजगार के अवसर हम देखे तो खूंब क्षेत्र में किस प्रकार से हो सकते हैं?
8: नौजवान साथियों के लिए इसमें बहुत अच्छे अवसर हैं, मशरूम उत्पादन करके उसके आगे मार्केटिंग प्रोसेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि मशरूम अपने आप में जो है अच्छा प्रभावी फूड हो गया है आज के जमाने में, क्योंकि लोग जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो रहे हैं। मशरूम से प्रोटीन मिलते हैं, खनिज तत्व मिलते हैं, और अपने आप नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से इसके अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, विशेषकर जैसे कैंसर की बीमारी काफी बढ़ रही है, ऐसे ही ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स काफी बढ़ रहे हैं, शुगर के पेशेंट्स काफी बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एक रामबाण है, क्योंकि इसमें ऐसे नेचुरल प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्योंकि शुगर नहीं मौजूद है, ऐसी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें भोजन में नहीं है मशरूम खाने में, तो ये उन सबके लिए बहुत प्रभावी है, इसलिए लोग सचेत हो रहे हैं। तो प्रोटीन जो आजकल तो सिंथेटिक जो रेडीमेड जो प्रोटीन आ रहे हैं उसको के प्रति लोगों का क्रेज बढ़ रहा है, और ये नेचुरल जो प्रोटीन है अगर मशरूम को खाएंगे सीधे तौर पे विटामिन भी मिलेंगे प्रोटीन भी मिलेंगे, हाई फाइबर फूड है, हाई प्रोटीनेशियस फूड है। इसलिए नौजवान साथी जो हमारे युवा साथी हैं अपने स्वरोजगार के लिए मशरूम को अपनाकर अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अपने आप को रोजगार दे सकते हैं, दूसरे साथियों को रोजगार दे सकते हैं।
9: तो डॉक्टर साहब ये जो युवा इसकी शुरुआत कैसे करें, किस तरह उनकी शुरुआत रहेगी, अगर जो इस क्षेत्र में कोई आना चाहे, कोई ट्रेनिंग है, कोई कार्यक्रम है, तो इसकी एक शुरुआत कैसे करें युवा?
8: जी जो भी हमारे नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं जो रोजगार की तलाश में, वो सबसे पहले मशरूम उत्पादन करने के लिए, मशरूम की प्रोसेसिंग करने के लिए, मशरूम की मार्केटिंग करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और जो प्रशिक्षण है वो ये जो केंद्र है हरियाणा सरकार ने जो सन 2000 में शुरू किया था मुरथल में, यहाँ पे हाँ जी मुरथल में यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण हरियाणा का जो उद्यान विभाग है वो प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ स्पॉन्सर करता है, उसके तहत प्रशिक्षण ले लें जिससे हम पूरा कई प्रकार की जो मशरूम होती है उनका प्रशिक्षण की तकनीक बताते हैं, साथ में कैसे कहाँ पे वो प्रोसेसिंग करके कैसे उसके अचार बना सकते हैं, कैसे उसका मुरब्बा बना सकते हैं, कैसे उसकी जो है ड्राई करके उसको पाउडर बना के पापड़ बना सकते हैं, मंगोड़ी बना सकते हैं, ये सब चीजें, और किस तरह बैंक से मदद लेके इस कार्यक्रम को स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको एक विशेष तौर पर साथियों बताऊं कि मशरूम उत्पादन के लिए कोई खुला खेत नहीं चाहिए, कोई जमीन के विशेष प्रकार की जमीन की आवश्यकता नहीं है, जो भी खाली जमीन हो या शहर में रह रहे हैं, गांव के अंदर रह रहे हैं, वहां भी इसको शुरू किया जा सकता है। ये तो छत के ऊपर भी आप इसका एक ढांचा तैयार करके इसको शुरू कर सकते हैं। मशरूम एक इंडोर क्रॉप है बेसिकली, और उस वजह से ये है कि इंडोर क्रॉप है तो ये सिक्योर भी है, यानी कि कोई आंधी तूफान का, कोई ओड़ों का, कोई डर की वो नहीं है, ये एक सिक्योर क्रॉप है। तो यानी कि अगर इसको प्रशिक्षण लेके लगाते हैं, सही से कास्ट करेंगे तो मशरूम उत्पादन 100% होगा। और क्योंकि मशरूम की डिमांड लगातार बढ़ी रहती है, अब आजकल काफी अवेयरनेस हो गई है, तो मशरूम को लोगों ने डाइट में लेना शुरू कर दिया है, तो प्रशिक्षण प्राप्त करें और प्रशिक्षण प्राप्त करके इसका उत्पादन करें और आगे अपने जो जो है मार्केटिंग करें, ये सब चीजें हैं, तो अच्छा रोजगार साथियों के लिए एक रोजगार का साधन, स्वरोजगार का साधन बन रहा है।
9: जी तो डॉक्टर साहब ये जैसे आपने प्रशिक्षण बताया, इसके करने के बाद कोई सरकार की तरफ से भी योजना है कि भाई कोई युवा बेरोजगार है जो, हालांकि देखिए आर्थिक तौर पे तंग रहते बेरोजगार, तो कुछ ऐसी मदद हो या कुछ लोन की है या सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी है, किस प्रकार से कुछ इसके बारे में बताइए।
8: पहली बात तो सरकार प्रोत्साहन देती है प्रशिक्षण देने के लिए, तो जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये भी निःशुल्क है,
9: निःशुल्क है
8: ये, हाँ इसे 5 दिन का कार्यक्रम जो है उद्यान विभाग के द्वारा प्रायोजित होता है, ये कार्यक्रम जो है सारे साल जो है ना अलग अलग जैसे मुरथल केंद्र में तो होते ही उद्यान विभाग
9: की रहने की व्यवस्था यही होती है,
8: हाँ रहने खाने भोजन आने जाने की, हाँ रहने खाने की प्रबंध तो रहता ही है, साथ से आने जाने का किराए के भी प्रबंध इसमें सरकार के द्वारा किया होता है, तो इस तरह की प्रायोजित कार्यक्रम जो होते हैं ये है नंबर एक। दूसरी बात, अगर मशरूम उत्पादन के लिए जो नौजवान साथी आगे बढ़ता है तो उसको जो सुविधा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि मशरूम इंडोर के ऊपर एक रूम बनाना है, कमरा बनाना है, तो उसके लिए भी सहायता देती है। ऐसी उसके जो है मशरूम उत्पादन के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए, जैसे मशरूम आपको खेती करते हैं तो जमीन तैयार करते हैं, तो मशरूम की जो जमीन है वो खाद है, तो खाद जो है जिसको हम कंपोस्ट बोलते हैं उसको बनाने के लिए जो यूनिट की लागत है उसका भी 40% सब्सिडी देती है। ऐसी मशरूम का जो बीज उत्पादन है जिसको हम स्पान बोलते हैं, उसके भी कई सारे हमारे हरियाणा प्रदेश में लगभग 20 यूनिट है, तो वो भी अगर नौजवान साथी बनाना चाहे, मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू करना चाहे, स्पान उत्पादन का काम शुरू करना चाहे, उसमें भी अनुदान की राशि है 40%। तो ये 3 आयाम है मशरूम उत्पादन के, तो उन तीनों में सरकार की जो है एक अनुदान राशि 40% जिसको बोलते हैं वो दी जाती है, तो उसको प्राप्त कर सकते हैं और अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं।
9: जी और डॉक्टर साहब ये जो मशरूम की जिस तरह प्रशिक्षण बताया आपने, अनुदान का बताया, तो मशरूम के क्षेत्र में कैसे रोजगार के अवसर है, जैसे अचार का है या कोई दवाइयां है, या इसको हम किस प्रकार से बेच सकते हैं, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा वो बताइए।
8: जी जैसे मशरूम उत्पादन भी एक अपने आप में स्वरोजगार काम है। फिर क्या है कि मशरूम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेष प्रकार की मशरूम होती है, तो ताजा मशरूम भी बिक्री करके जो है अपना स्वरोजगार पा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। ऐसे ही मशरूम की ग्रेडिंग पैकिंग करके, विशेष प्रकार की पैनेट पैकिंग करके, इसको दूर दराज क्षेत्रों में हवाई मार्ग के द्वारा, रेल यात्रा के द्वारा और जो रेफ्रिजरेटेड वैन है उसके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में मशरूम को भेज के मार्केटिंग कर सकते हैं, ताजा मशरूम भेज के भी। इसके बाद अगर वो ताजा मशरूम नहीं बेच पा रहा है या सही लाभ नहीं मिल रहा है, तो मशरूम की प्रोसेसिंग में जा सकता है। मशरूम का जो अचार है बहुत स्वादिष्ट बनता है, मशरूम के अचार की बहुत डिमांड रहती है। मशरूम का जो अचार है, अच्छी अच्छी ब्रांड तो अपने ब्रांडिंग करके अच्छा दाम पे बेच रही है, 500 रुपए किलो तक बेच रही है, यानी कि 10 times वैल्यू एडिशन है। ऐसी मशरूम की मंगोड़ी बहुत पॉपुलर हो रही है, मशरूम के पापड़ बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, मशरूम के जो कैंडी है वो काफी पॉपुलर, मशरूम का जो जो सॉस है, मशरूम का इस प्रकार का जो सॉस है वो भी काफी, मशरूम का जो क्रीम है वो भी काफी पॉपुलर हो रही है। तो कई सारे जो मशरूम की प्रोडक्ट हैं जो बना के लाभ कमाया जा सकता है, और इसके लिए कोई बड़ी फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिंपल जो है, छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे मिक्सी है उससे मशरूम को ग्राइंड करने का है, सुखाने का है तो छोटे ओवन है, इनमें मशरूम पाउडर बनाना है तो मशरूम की जैसे आम जो चक्की होती है उस पर का ही उसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये सब बड़ा ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती। फिर भी हरियाणा सरकार का विशेष तौर पे जो है बजट में प्रावधान किया गया है कि मशरूम के वैल्यू एडिशन करने के लिए छोटी छोटी यूनिट को बढ़ावा देना है, तो वहां भी हरियाणा सरकार का ध्यान है, तो वहां भी आप जो नौजवान साथी उसका फायदा लेके इस काम को शुरू कर सकते हैं।
9: जी डॉक्टर साहब, अगर जो हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं, मशरूम से क्या क्या विटामिन मिलते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए।
8: जी साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब तक प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी हम मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यही कि आपको मशरूम को बेचना है, तो मशरूम चाहे आपने ताजा बेचनी है चाहे उसके प्रोडक्ट बना के बेचने हैं, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मशरूम है क्या। मशरूम एक संतुलित आहार है, पूर्ण आहार है, इसके अंदर प्रोटीन भी खूब है, इसमें करीबन जो है 30-35% प्रोटीन पाए जाते हैं मशरूम में, यानी कि चिकन मीट के बराबर जो है इसमें प्रोटीन युक्त भोजन है और हाई क्वालिटी प्रोटीन है, नंबर एक बात। दूसरी बात जो आप बता सकते हैं जो हमारा कंज्यूमर है उसको, कि मशरूम खाने से आपको जो डायबिटिक की नहीं होंगे, आप जो है आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कैंसर होने की समस्या नहीं होगी। तो ऐसे तीन जो चीजें हैं मुख्य तौर पर जो बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, यानी कि कैंसर होती है, डायबिटिक के लिए भी अच्छा है, और ये जो हार्ट पेशेंट्स के लिए भी एक अच्छा भोजन है और पूर्ण आहार है, जिससे जो शरीर की आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता है, खनिज तत्वों की आवश्यकता है, जो कैल्शियम की आवश्यकता है वो भी मशरूम में, आयरन की आवश्यकता है वो भी मशरूम में उपलब्ध है। तो ये खनिज तत्वों का भरमार इसमें मशरूम है, प्रोटीन भरमार है, फाइबर बहुत है, फाइबर जो है यानी कि जो पाचन शक्ति को ठीक रखती है वो भी बहुत है, बहुत इजीली डाइजेस्ट, मशरूम खाने से जो भी भोजन हमने किया वो डाइजेस्ट हो जाता है, साथ में मोटापा नहीं बढ़ता। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि विटामिन डी, क्योंकि आजकल हमारा जो रहन सहन है वो इस प्रकार का इंडोर ज्यादा हो गया है, तो विटामिन डी की कमी काफी पाई जाती है। अगर मशरूम को आप रेगुलरली कंज्यूम करोगे तो विटामिन डी भी की भी कमी नहीं रहेगी, और मशरूम को अगर आप थोड़ी देर धूप में रख देते हैं तो मशरूम की जो जो विटामिन डी कॉन्टेंट जो बनता है, प्रिकर्सर है, वो भी डबल हो जाता है। तो मशरूम में इतने यानी कि गुण है, यानी कि स्वादिष्ट तो है ही मशरूम खाने में जो भी रेसिपी बनती है, और साथ साथ में फाइबर तो है ही, पर ये एक पूर्ण आहार भी है। मशरूम खाएं, स्वस्थ रहें और लाभ कमाएं।
9: तो डॉक्टर साहब, आपसे संपर्क कैसे किया जाए, यहाँ पर हमारे जो श्रोता है उनको बताया जाए कि किस प्रकार से आपसे संपर्क करें, को फोन नंबर, कोई ईमेल आईडी?
8: जी, फोन नंबर लिख सकते हैं 98134-86046। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 98134-86046, और ईमेल आईडी है MHUMURTHAL @gmail.com यानी कि mhumurthal@gmail.com। आप ईमेल के द्वारा या फोन के माध्यम से, आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको पता चलेगा, उसे पता चल जाएगा कि कब ट्रेनिंग हो रही है और कोई तकनीकी दिक्कत है, वो जानकारी आप साथी प्राप्त कर सकते हैं। मशरूम एक बहुत अच्छा कोटेज इंडस्ट्री उभर के आ रहा है और हरियाणा प्रदेश जो है मशरूम उत्पादन में एक अग्रणी राज्य बना है। हरियाणा राज्य की जो स्थिति है, यानी कि हरियाणा राज्य दिल्ली के साथ छटा हुआ है, तो बड़ा हमारे पास जो है मार्केट है, तो मशरूम से जुड़ के जो है लाभ कमा सकते हैं, स्वरोजगार दे सकते हैं और मशरूम को बिक्री कर सकते हैं। मशरूम आजकल होट किक की तरह बिक रही है।
9: तो डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में जुड़े, अपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
8: धन्यवाद जी, नमस्कार, धन्यवाद।
6: बहनों भाइयों, ये जानकारी हमने आपसे जरूर साझा करी और खूम क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर भाई क्षेत्रीय जीव मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल सोनीपत के जो प्रभारी है डॉक्टर अजय सिंह यादव जी से हमने बातचीत करी थी। और भाई बहुत बढ़िया जानकारी थी और कोशिश हमने ज़रूर करनी चाहिए साथियों की जो हमारे आसपास के जो युवा है बेरोजगार है उनको ये रास्ता ज़रूर दिखाया जाए। और बात अब अगले विषय की जरूर कर लेते हैं और हमारा जो चर्चा का विषय है वर्षाकालीन भिंडी की बिजाई। साथियों, वर्षाकालीन भिंडी की खेती की जब हम बात करते हैं तो देखो इसमें जो वर्षा उपहार के रूप में है और इस किस्म में पीलिया रोगरोधी क्षमता है और ये किस्म बरसात मौसम के लिए उपयुक्त है। इसकी औसत पैदावार की बात करें तो 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से है, क्योंकि देखो वैज्ञानिक विधि तय जो सिफारिश से शुदा जो किस्में हैं उसकी हम बात करें, इसमें वर्षा उपहार की हम बात जरूर करें हैं और इसके पौध मध्यम लंबे व दो गांठों के बीच की दूरी कम होती है और फल की बात करें तो लंबे सिरे वाले, चमकीले, मध्यम मोटाई वाले और आकर्षित और पांच कोरों वाले होते हैं। जो किस्म भाई 45 दिन में या फल देना शुरू कर देती है। इसी तरह हिसार नवीन की बात करें तो भैया किस्म भी पीलिया रोग रोधी है और यह किस्म गर्मी और वर्षा के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और औसत पैदावार की बात करें तो भाई 40 से 45 दिन क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमने मिल जाता है। और HBH की बात 142 की बात करें तो यह भाई एक संकर किस्म से जो पीलिया रोग रोधी क्षमता होने के कारण ये भाई वर्षा ऋतु में भी उगाई जा सका है और इसके फल भाई 8-10 सेंटीमीटर लंबे, मध्यम मोटाई और पाँच कोर युक्त और भाई आकर्षित होते हैं। इसकी औसत पैदावार की बात करें तो 53 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमने मिला है। और भाई बात हमने वर्षाकालीन भिंडी की खेती की बात करी थी, वैज्ञानिक विधि से हम जरूर बता रहे हैं और मिट्टी पानी की जांच भाई ज़रूर करानी चाहिए। भिंडी की बिजाई से पहले भाई मिट्टी पानी की जाँच बहुत ज़रूरी से वह जरूर करवा ले। और भूमि की तैयारी की जब हम बात करते हैं तो भाई खेत में हल व पाटा चढ़ा कर मट्टी नाची भुरभुरी बना ले और बिजाई से लगभग 3 हफ्ते पहले गोबर की खाद खेत में जुताई करते टाइम डाले। और वर्षाकालीन फसल के लिए भाई खेत को उचित नाप की क्यारिया में बांट ले। और बिजाई के टाइम की बात करें तो वर्षा ऋतु की भाई फसल की बिजाई का जो टाइम की बात करते हैं भाई जून जुलाई है, क्योंकि इस दौरान भाई बारिश के जो आसार रहते हैं। और बीज मात्रा की बात करें तो भाई वर्षा ऋतु की फसल के लिए 5-6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से हमने मिलते हैं। और बिजाई की विधि की भी बात जरूर कर लेते हैं। इसमें साथियों वर्षा ऋतु की फसल के लिए 5-6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से डाले। बिजाई की विधि की बात करें तो बरसात की फसल के लिए पंक्ति की जो दूरी बात करें तो भाई 45-60 सेंटीमीटर और पौधे तक पौधे के फासले की बात करें तो 30 सेंटीमीटर हमने रखना चाहिए। बिजाई से पहले भाई बीज को रात भर पानी में भिगो दे। भिगोने के बाद जो बीज को छाया में सुखा कर बिजाई करें। खाद और उर्वरक की बात करें तो बिजाई के लगभग 3 हफ्ते पहले 10 टन गोबर का खाद प्रति एकड़ में डाल दे। इसके अलावा 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 24 किलोग्राम फास्फोरस शुद्ध प्रति एकड़ के हिसाब से देवे। नाइट्रोजन की भाई 1/3 मात्रा तथा बाकी सभी खाद बिजाई भाई इसमें पहले डाल देवे। और जो बची हुई नाइट्रोजन की बात है तो भाई इसमें 1/3 मात्रा बिजाई के लगभग 3 हफ्ते बाद 1/3 मात्रा फसल में फूल आने के अवस्था में देवे। सिंचाई की बात करें तो भाई बिजाई फलेवा देकर करे, बाकी सिंचाई जरूरत के हिसाब से इसमें करे। तो भाई तोड़ा की भी बात करें तो भाई देखो भिंडी के फलों का नरम अवस्था में रेशा बनने से पहले तोड़ लेना चाहिए। फसल की तोड़ाई किस्म के अनुसार भाई 45 से 55 दिन शुरू हो जाती है और फसलों की तोड़ाई की एक दिन के अंतराल पर हमने करनी चाहिए। भाई सावधानी भी ज़रूर रखनी चाहिए, कपास के पास से भिंडी नहीं लगानी चाहिए। कीटनाशक जो छिड़काव से पहले फल तोड़ लेवे और आसपास खड़ी खरपतवार को उखाड़ देवे, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं तो भाई जो वर्षाकालीन भिंडी है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। ये तो बात करिए हमने भाई वर्षाकालीन भिंडी की खेती की। और भाई अब थोड़ी सी जानकारी जरूर दे देते हैं भाई मौसम की। आज का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। और भाई इसी तरह भाई आने वाले 24 घंटे की बात करें तो भाई देखो अधिकतम 31 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल के कृषि कार्यक्रम की भी जानकारी आपको जरूर दे देते भाई। कल भाई रविवार कार्यक्रम रहेगा भाई संदेश आपके गीत। और इसी तरह भाई 1 तारीख को हम जो सोमवार को कार्यक्रम लेकर आते हैं भाई महीने की शुरुआत में, हमेशा हम जो महीने में हमने काम करना उसकी जानकारी देते हैं, यानी कि इस माह के कृषि कार्यक्रम। और ये तो जानकारी दी हमने कार्यक्रमों की। और भाई हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है ज़रूर इंतज़ार कर रहे हैं, उनका मनोरंजन जरूर करवा देते। और मनोरंजन के बाद भाई आज का कृषि प्रश्न जरूर ले गए। कुंभ क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है और उसका जो उत्तर 94660 21336 पर हम जरूर ले गए इस गाने के बाद, रागणी के बाद। तो सुनते ही रागणी।

0: तो साथियों, ये तो आपने रागिनी सुनी और बाइक कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे जरूर प्रश्न पूछा था, खूम क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है। भाई इसका सही उत्तर सोनीपत है और सोनीपत में भाई खूम की शुरुआत जरूर हुई थी और उसके बाद आसपास के क्षेत्र और हरियाणा भर में जरूर होने लगी। और अब बात जरूर कर लेते साथियों अन्य बातचीत की। भाई ये जो सही उत्तर हमारे को दिया भाई गांव तेजा मोड़ी अम्बाड़ा से भाई बंसीलाल ने जरूर दिया। इसी तरह भाई रणधीर सिंह बंगड़ मेजो देवी गौरव प्रवीण योगम वीरेन गांव जगुड़ी यमुनानगर से भी हमारे पास सही जवाब आया और रोहतक से भी भाई बाबा मस्तनाथ नगर से भाई हमारे पास प्रोफेसर जय सिंह खनगवाल का हमारे पास सही उत्तर आया है। और कुरुक्षेत्र से भी एक सही जवाब आया है पारस बबीता धर्मपाल मूर्ति देवी और मनोज कुमार और परिवार के सभी सदस्य। तो भाई आपको बहुत बहुत बधाई और एक उम्मीद करते हैं भाई आगे ऐसे ही आप ज्ञान से सभी का भाई आगे आप इसको आगे प्रसारित करते रहे ताकि हमारे जो श्रोता है वो आगे जरूर बढ़ते रहे और बातचीत हम जरूर करें। साथियों महत्वपूर्ण है ये भी क्योंकि नमो दीदी की जब हम बात करते हैं भाई ड्रोन ऐप है और इसके माध्यम से भाई हमारी जो बहनें हैं वे हमेशा मजबूती से आगे बढ़ते रहे क्योंकि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और इस योजना के तहत भाई महिलाओं स्वयं सहायता समूह को कृषि कार्य के लिए भाई ड्रोन प्रदान किए जाते हैं, भाई ट्रेनिंग दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है और भाई इसमें जो वित्तीय सहायता ड्रोन और आवश्यक उपकरणों की कुल लागत का 80% जो सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। तो भाई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। और बात दुधारू पशुओं की गर्मी से बचाव की बात करें तो भाई देखो जो इस दौरान भाई गर्मियों का जिस तरह प्रकोप है तो पशुओं का जरूर ध्यान रखें, हरे चारे का संतुलित आहार जरूर दे, पानी की व्यवस्था का सही रखें और भाई उनके बाड़े की जो बांधने की व्यवस्था है उसको भी आप बेहतर करें ताकि हम इसमें मजबूती से आगे बढ़ सकें। और इसी तरह साथियों जानकारी हम जरूर दे देते किसान कॉल सेंटर 1551, आप घर बैठे सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह PIB ऐप के माध्यम से भी आप महत्वपूर्ण जानकारियां केंद्र सरकार की आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं।
1: सजदे ने हाथ फेरी मने डरावे मत ना।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
6: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं आपकी अपनी आवाज है, आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्रीरामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्रीरामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तो साथियों, आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे किसान वाणी, और अब कार्यक्रम सुनते हैं ग्राम संसार।

कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और साथियों, कार्यक्रम ग्राम संसार में हम वो सभी बातें जरूर करते हैं हमारी जो लोक संस्कृति को मजबूती प्रदान करे, देश को हमेशा आगे बढ़ाए और हमेशा आपको अपडेट रखे। तो गांव गुआंड की लो हमारे आसपास क्षेत्र की बात वो ज़रूर होती है, क्योंकि नाम ही ग्राम संसार है तो गाँव से जुड़ी हुई हम हर वो बात करते, क्योंकि भारत गाँवों का देश है और गाँवों से ही विकास आगे हमेशा बढ़ा है। और बात आज हम चर्चा का विषय लेकर है भाई, अच्छी पुस्तकों के चुनाव व पढ़ने के महत्व के बारे में। और इसी तरह साथ जानकारी आपको जरूर देगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस की। लेकिन साथियों, कार्यक्रम में जो विषय जरूर हम ले लेते हैं अच्छी पुस्तकों का, क्योंकि अच्छी पुस्तकें ज्ञान और प्रेरणा का भंडार है। वे मस्तिष्क के लिए सर्वोत्तम व्यायाम है जो हमारी सोचने की क्षमता, एकाग्रता और भाषा कौशल को विकसित करती है। और वह एक अच्छी पुस्तक जीवन में सकारात्मक जो दृष्टिकोण है वो भी जरूर लाती है और जो सच्चे मित्र की तरह मार्गदर्शन भी करती है। और आज बेशक साथियों हम मोबाइल से चिपके रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी ज़रूर था जब हम हमारे एक घर के अंदर लाइब्रेरी भी ज़रूर होती थी, एक कॉर्नर ज़रूर होता था और हम खूब पढ़ते थे, लिखते थे। और भाई स्कूल से आते ही सबसे पहले तो भाई स्कूल का काम हुआ करता, लेकिन आज भाई जो ट्रेडिशन बदल गया है और हम जो परंपराओं की बात करें तो साथियों आजकल फ़ोन में ही सब कुछ जरूर हो गया। आजकल तो बच्चों के होमवर्क है या ट्यूशन का है वो सारा का सारा भाई फ़ोन से जुड़ा हुआ है, डिजिटलाइजेशन जरूर हो गया। लेकिन इसके अंदर साथियों हमें ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि पुस्तकें जो है साथियों आपको आगे ज़रूर बढ़ाती है, और फ़ोन से भी बढ़िया भाई पुस्तकें अगर जो आपके हाथ में होती है तो आप संसार में राज कर सकते हैं। और साथियों कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड, यानी कि जो शिक्षा एक हथियार की तरह है जिस तरह भाई आप संसार को बदल सकते हैं। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की बात करते हो भाई, विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। तो साथियों आप उस व्यक्ति को भी देखिए कि किन परिस्थितियों के अंदर उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा, और विश्व के अंदर साथियों प्रथम वे नागरिक है जो सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ और सबसे ज़्यादा एजुकेशनिस्ट है। तो प्रेरणा लेते हुए हमें ज़रूर आगे शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, और आज शिक्षा ही है जो पुस्तकें ही है साथियों जो व्यक्तियों के अंतर को अलग करती है। जो अच्छी तरह शिक्षित है भाई अपने समय में ज़रूर अच्छी तरह पढ़ाई करता है, याद करता है, साथियों वे अच्छे अच्छे पद भी उन्होंने प्राप्त किए हैं। और शिक्षा अगर जो अच्छी होती, अच्छी पुस्तकें हम पढ़ते तो जीवन के अंदर साथियों हम संसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर हम समाज को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। तो बातचीत ग्राम संसार में जरूर रहेगी, लेकिन साथियों कुछ संदेश और संदेश के बाद लोकगीत और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार में।

0: शहर और जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अब शहरों में रहते हैं और ये शहर दुनिया के 3/4 ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो और आबादी घनी हो, वहां बुरे मौसम, हवा में गंदापन और बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन शहर समस्या का हल भी बन सकते हैं, जैसे बेहतर सार्वजनिक परिवहन, कम गाड़ियां और अपने शहर में ही खाद्य उगाना। यह सब प्रदूषण को घटाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। सतत योजना बनाना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि यह एक आवश्यकता बन गया है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। आज लगभग 55% लोग पृथ्वी पर शहरों में रहते हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: किसानों की पहली पसंद कंपोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
7: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
6: कंपोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
7: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
6: खर्चा कम, उत्पादन ज्यादा, ये है कंपोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
7: 9813173102।
6: कंपोज एक्सपोर्ट्स, भरोसा।

0: किसानों की पहली पसंद कंबोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
1: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
0: कंबोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
1: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
0: खर्चा कम उत्पादन ज्यादा ये है कंबोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
1: 9813173102।
0: कंबोज एक्सपोर्ट्स भरोसे का प्रतीक।
2: बहनों और भाइयों ये तो अपने लोकगीत सुना मारी धरती मारी माँ से हमने इस गीत को जरूर लिया था और बात हम जरूर कर रहे थे अच्छी पुस्तकों के चुनाव में पढ़ने के महत्व के बारे में। साथियों देखो अच्छी पुस्तकें हमेशा सबसे अच्छा साथी होती है और अच्छी पुस्तकें पढ़ने का अनुभव अद्भुत बना सकते हैं। इसके लिए भाई कुछ बातें की बात करें तो भाई एक तो अपनी रुचि की पहचानें कि सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आत्मकथा है उपन्यास है इतिहास है या प्रेरणादायक किताबें हैं जो आपका जीवन बदल दे। इसी तरह साथियों समीक्षाएं की बात करें तो इनको भी जरूर देखना चाहिए। विभिन्न बुक क्लब जैसे ऑनलाइन मंचों पर पाठकों के अनुभव पढ़े अन्य पाठकों के सुझाव आपको अच्छी पुस्तकें चुनने में मदद करती है। लेखक और विषय का भी जरूर आप ध्यान रखें कि किसी नए विषय या लेखक की पुस्तकें चुनने से पहले उसके सारांश को अवश्य जरूर पढ़ना चाहिए भाई समरी क्या है और अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर जो हम बात करें तो भाई यदि आप तनाव कम करना चाहते हैं तो हल्की फुल्की या फिर कॉमिक पुस्तकें चुने और ज्ञानवर्धक के लिए वैचारिक या शैक्षणिक जो पुस्तकें जरूर पढ़े। और भाई जो पुस्तकें हैं देखिए जो टेक्स्ट की बुक्स की बात करें तो भाई देखो जो हमारे जो विद्यार्थी जरूर पढ़ते हैं लेकिन इसके अलावा अगर जो हम अन्य पुस्तकें पढ़ते हैं तो हम जरूर अनुभव को प्राप्त करते हैं क्योंकि आज यदि हम बात करते हो विभिन्न लेखकों या फिर जीवनियों की बात करते हैं बायोग्राफी की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तकें उनकी लिखी गई है और उनसे हम जरूर ज्ञान प्राप्त करके इस जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और क्या कह रहे हो भाई सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिला सकता है तो ज्ञान जरूर हमें प्राप्त करना चाहिए। तो सुनते हैं अब ये लोकगीत लेकिन पहले संदेश।
0: किसानों की पहली पसंद कंबोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
1: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
0: कंबोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
1: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
0: खर्चा कम उत्पादन ज्यादा ये है कंबोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
1: 9813173102।
0: कंबोज एक्सपोर्ट्स भरोसे का प्रतीक।

बहनों और भाइयों, कार्यक्रम है ग्राम संसार और मैं आपका साथी विनोद वोरल एक बार फिर से आपका स्वागत है। और साथियों, देखिए हमारे साथ आज आप जो डिजिटल तकनीक के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिस प्रकार से भाई अब रेडियो कम हो गए हैं। पहले तो घर में ट्रांजिस्टर हमने जरूर दिख जाता था, लेकिन भाई आज आपके हाथ में भी जो भाई मोबाइल में भी आपके रेडियो, तो आप आजकल इतने ऐप आए हुए प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए। न्यूज़ ऑन EIR भी है, इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण ऐप भी है जिसके माध्यम से आप हमारे साथ

सीधे जुड़ सकते हैं। और उस पर जब आप FM जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं ऐप, तो उस पर जैसे आप कुरुक्षेत्र को चयन करते हैं तो भाई सीधे हमारे से जो भी हमारे लाइव कार्यक्रम है आप हमारे से जुड़ जाते हैं। इसी तरह साथियों हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जितने भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं हम उस पर भाई अपलोड करते हैं और आप कितनी बार उनको कहीं भी सुन सकते हैं। और कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती भाई, भाग दौड़ ऐसी हो जाती है, कार्यक्रम भी छूट जाते हैं, लेकिन साथियों आप आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के यूट्यूब चैनल से आप सीधे हमारे से जुड़ के उन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। और अब बात कर लेते साथियों विश्व तंबाकू निषेध दिवस, क्योंकि साथियों देखिए 31 मई को दुनिया भर में हर साल हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य भाई यही है कि व्यापक प्रसार और नकारात्मक जो स्वास्थ्य प्रभाव की बात करते तो जो डाउन होता है साथियों, नशे को रोकना है, तंबाकू को रोकना है, क्योंकि साथियों जो तंबाकू भाई शरीर का विनाश कर देता है। और जब इसकी बात करते तो साथियों विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल हम 31 मई को दुनिया भर में मनाते हैं। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई तंबाकू के सेवन से होने वाले जो घातक स्वास्थ्य प्रभावों, बीमारियों और इसके कारण होने वाली मौतों के प्रति लोगों को जागरूक करना और तंबाकू की खपत को कम करने वाली नीतियों की वकालत करना है। तो भाई गंभीर बीमारियों के प्रति भाई जागरूकता बढ़ाना है, तंबाकू से भाई इसके सेवन से भाई मुंह, गले और फेफड़ों का कैंसर, सांस की बीमारियां और दिल का दौरा जैसी जानलेवा समस्याएं होती है, तो इस दिन लोगों को इन खतरों से आगाह हम ज़रूर करते हैं। तो आप जागरूक ज़रूर बढ़ाएं और लोगों को ज़रूर बताएं, क्योंकि तंबाकू के कारण होने वाली मौतों की बात करें तो भाई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में तंबाकू के सेवन से हर साल भाई 80 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवाते हैं। इन मौतों के आंकड़ों को कम करने के लिए जन जागरूकता भाई बहुत ज़रूरी है और आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। और जागरूकता अगर जो आप लोगों को बताते हैं तो साथियों निश्चित तौर पर इसे तंबाकू से होने वाली मौतों का आंकड़ा कम जरूर होएगा और शरीर की कीमत के महत्व के बारे में हमें ज़रूर लोगों को बताना चाहिए। और इस दिन भाई सरकारें है, सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है, समाज को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों को सख्ती से लागू करने की भाई प्रेरणा जरूर देते हैं। और इसी तरह साथियों समाज में हमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को आगे ज़रूर बढ़ाना चाहिए। तो साथियों आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही और उम्मीद करते कि आप जागरूकता बढ़ाकर समाज को एक सही दिशा व दशा को देकर आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। तो अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखिए। अच्छा बहनों भाइयों, राम राम।

सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 होते हैं। अब प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय जवान।

0: कार्यक्रम जय जवान सुनने वाले सभी सैनिक भाइयों को और श्रोता दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम हम विशेष रूप से अपने फौजी भाइयों की सेवा में प्रस्तुत करते हैं और उनको सुनाते हैं कुछ सदाबहार नगमे उनके स्वस्थ मनोरंजन के लिए। कार्यक्रम में आज भी कुछ गीत हम ऐसे ही लेकर आए हैं और उनको सुनवाएंगे ये सदाबहार गीत। उससे पहले ये विज्ञापन।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
0: श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम में पहला गीत हम ले रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है गीता मेरा नाम।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और जय जवान कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति बंदिश फिल्म में किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज में ये गीत आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध। आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए आपकी कसम फिल्म के इस गीत के साथ कार्यक्रम जय जवान अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोता दोस्तों, शाम के 7:45 होते हैं। अब प्रस्तुत है गैर फिल्मी रचनाओं का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में कुछ गैर फिल्मी रचनाएं आपकी नजर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे पहले ये विज्ञापन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: शुभ दोस्तों, कार्यक्रम गुलदस्ता में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में कुछ गजलें आपकी नजर हम कर रहे हैं। दोस्तों, इन गजलों में जो एक विशेष बात होती है वो होती है सुकून। संगीत के अपने अपने कई रूप हैं और उन रूपों में फिल्मी और नॉन फिल्मी, फिल्मी यानी जो फिल्मों में गीत संगीत सुनने देखने को मिलता है, इसके अतिरिक्त कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी होती हैं जिन्हें हम फिल्मों में नहीं देखते हैं। एल्बम के माध्यम से किसी समारोह के अंदर या कुछ और तरीके भी इनके होते हैं। इनमें अधिकतर शायरों, जो शायर होते हैं उनके उनकी रचनाएं होती हैं और वो अपने उन शब्दों से हम सब के बीच में वो बातें कहते हैं जिन्हें हम न केवल स्वीकार करते हैं अपितु उन्हें मानते भी हैं और उनके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी ही बातें इन गजलों में हमारे सामने समय समय पर आती रहती हैं और आज की इसमें जगजीत सिंह की गाई एक गजल आपकी नजर हम कर रहे हैं। इनसाइट एल्बम से निदा फाजली साहब की लिखी हुई, आइए सुनते हैं ये गजल।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: दोस्तों, कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन रहे हैं और गुलदस्ता कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति जावेद अख्तर साहब की लिखी हुई ये रचना, एल्बम का नाम है सोज।

कुछ कमी अपनी वफाओं में ही थी, तुमसे क्या कहते कि तुमने क्या किया। दोस्तों, जावेद अख्तर साहब के कुछ बोल कमाल के बोल, कि हो गई थी दिल को कुछ उम्मीद सी, खैर तुमने जो किया अच्छा किया। कितने गहरे मायने हैं इन बोलों के। खैर जो भी है, कार्यक्रम समाप्त करने के अपने दोस्त नवीन को इजाजत दें। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, गैर फिल्मी रचनाओं का यह कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजते हैं। यह समय है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का, फिल्म संगीत का। यह कार्यक्रम प्रस्तुत है, आइए आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम।

तो दोस्तों नमस्कार। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं आपकी सेवा में, आपका मित्र नवीन। दोस्तों इस कार्यक्रम में कुछ खास बातें आपके साथ हमारी रहती हैं, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही कुछ बातें कुछ गीत है। तो सदाबहार गीतों की इस श्रृंखला में, इस कार्यक्रम में

0: आपके साथ हम जुड़ते हैं, बात करते हैं, और अगर कुछ बातें ऐसी हो जाएं जो कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार हों, हमारे चारों तरफ वो चीज़ें हो रही हों, हम उनसे जुड़े हों, वो चीज़ें हमें प्रभावित भी कर रही हों, हम पर असर भी डाल रही हों, तो उन्हीं से संबंधित बात करना समय अनुकूल होता है। तात्कालिक परिस्थितियों में कुछ ऐसी परिस्थितियां उभर कर सामने आती हैं जिन पर बात करना अच्छा रहता है, सही रहता है, तो उसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे। और आज का हमारा शीर्षक रहेगा मौसम। दोस्तों, कैसा लगा आज का शीर्षक? निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि पूरे उत्तर भारत का मौसम बदला है और बदलाव के इस दौर का सभी ने स्वागत भी किया है, क्योंकि उससे पहले प्रकृति का एक सख्त रूप हम सब ने देखा। वो रूप अपनी जगह सही होगा, क्योंकि हर मौसम की अपनी एक जरूरत है, वो अपनी जगह सही होता है। और बात दोस्तों अगर समझने का हम प्रयास करें, जब जिस मौसम का एक समय आता है कालचक्र के अनुसार, वो उसमें सही होता है। बेशक हमारे लिए वो चीज़ें कुछ दिक्कत कर जाएं, हम उनको सहन ना कर पाएं, या हमारे लिए कुछ चुनौतियां या परेशानियां बढ़ जाएं, वो सारी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन प्रकृति का अपना एक आगे बढ़ने का तरीका है, उसे हम बदल नहीं सकते और उसे हम गलत भी नहीं कह सकते। जैसे सुबह सूर्य निकलता है, दिन भर होता है, शाम आती है, रात आती है, तो यही वर्ष भर मौसमों का तरीका भी चलता रहता है। आज निश्चित रूप से दोपहर बाद और कल से भी कुछ उत्तर भारत में गर्मी से राहत मिली है। भीषण गर्मी, जो 45 से 50 डिग्री का जो तापमान पूरे उत्तर भारत में चल रहा था, लोगों ने राहत की सांस ली है, तो ऊपर वाले का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इतनी सख्त परीक्षा के बाद हमें थोड़ी राहत भी दी है, हमें हौसला भी दिया है, और आज शाम बहुत सुहानी भी हुई है। ठंडा मौसम है, हर आदमी खुश है और सभी इस मौसम का स्वागत करते हुए आनंद भी ले रहे हैं, तो गर्मी से राहत मिली, निश्चित रूप से अच्छा लगा। तो मौसम पर ही आज की बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे दो विज्ञापन।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: तुमको पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है।
1: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में धरती फिल्म से कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना। दोस्तों, मौसम जब अच्छा होता है तो इंसानी जज्बात कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आते हैं। ये तो बात हुई फिल्मी दुनिया में जो नायक नायिका हैं, वो अपने अपने जज्बात एक दूसरे के साथ साझा करते हुए ये गीत गा रहे थे। और दूसरी बात ये कि मौसम जब बदलता है तो हमारे कुछ भाव एक दूसरे के प्रति बदलते तो हैं ही, लेकिन उनमें हम कुछ ऐसी मन के भावों की जो कल्पना है, जो मन की पतंग है, वो पूरे आसमान में उड़ने लगती है और आगे ही आगे बढ़ना चाहती है। कहने का भाव ये कि हमारी कल्पनाएं कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाती हैं कि हम किसी से मिलने के लिए भी बेताब हो सकते हैं, हमारे कुछ ख्वाहिश भी हमारे सामने आ जाती हैं जो हमारे होठों से बाहर भी निकलती हैं, शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, भावों के माध्यम से। तो दोस्तों, पागीसा फिल्म का गीत लता जी की आवाज में आपकी नजर, बेहद खूबसूरत गीत है ये।

दोस्तों पाकीज़ा फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। गीत लिखा कमाल अमरोही साहब ने और संगीत दिया गुलाम मोहम्मद ने। कितने खूबसूरत अल्फाजों के साथ कुछ बातें कही जा रही हैं और लता जी की आवाज में गजब हो जाता है जब ऐसे गीत इस संगीत के साथ निकल कर सामने आते हैं।

तो मित्रों, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज मौसम जो बदला है या जो एक परिवर्तन नजर आया, क्या कहते हैं आप, ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय बाद हमें ऐसा मौसम देखने को मिला, क्योंकि पिछले दिनों जो गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाया, हम सभी उससे परेशान हुए, प्रभावित हुए। और आज की जो हल्की बारिश आई, निश्चित रूप से वो बारिश नहीं थी, एक राहत भरा पैगाम था और हम सभी उससे आनंदित हुए। और जहाँ तक बात इस 8-10 दिन पहले की जो मौसम की लंबी चली, ये मौसम ऐसा लगा कि बहुत लंबे समय तक चलता आया है। आक्रमण फिल्म का ये गीत लता जी और किशोर जी की आवाज में आपकी नजर, आइए सुनते हैं यही शब्द यही बोल जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये मौसम आया है कितने सालों में, जी हां, 8-10 दिन का समय सालों बराबर ही तो लगा। आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।

दोस्तों, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में मौसम शीर्षक पर आपके साथ आज बातें हो रही हैं। और जहाँ तक मौसम और बदलाव का संबंध है, तो दोस्तों, समय समय पर चीज़ें प्रकृति के अनुसार अपने आप आगे बढ़ती हैं, अपना अलग अलग रूप भी दिखाती हैं, और कई बार हमें उनसे लाभ भी होता है और कई बार थोड़ा बहुत परेशानी भी होती है। प्रकृति तो अपने चाल चलेगी ही, और हमें भी उसकी इस चाल को स्वीकार करना होगा और उसके साथ तालमेल भी बिठाना होगा, और हम करते भी हैं, ये भी उतने ही सच्ची बात है। लेकिन फिर भी इंसान हैं, परेशान भी होते हैं, खुश भी होते हैं। तो मौसम की जहां तक बात है, मौसम एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हम सभी उसके साथ ढले हुए भी होते हैं, बंधे हुए भी होते हैं, चाहे वो हमें कुछ ठीक लगे या ना लगे। जुदाई फिल्म का गीत मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में आपकी नजर, आइए सुनते हैं।

दोस्तों देखिए, बदलाव कितना असरदार है। आनंद बख्शी साहब के बोलों को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और रफ़ी साहब की ये आवाज़ क्या बात है, बेहद खूबसूरत आवाज़। गीत सुनते हैं तो एक नशा चढ़ने लगता है, साथ में आशा दीदी का जो एक सहयोग इस गीत में मिला, कंप्लीट गीत बन जाता है।

दोस्तों, रफ़ी साहब की आवाज़ अपने आप में, अगर यूं कहें कि संगीत का काफ़ी हद तक या किसी हद तक एक पर्यायवाची बनता है, तो बहुत से लोग आप में से मेरी बात का समर्थन करेंगे और सहमत भी होंगे। खैर, रफ़ी साहब की जब बात चली है और कुछ गीत ऐसे हैं, तो लोफर फिल्म का गीत क्यों न सुनवाया जाए, क्योंकि अगर ये गीत इस कार्यक्रम में हम शामिल नहीं करते हैं तो कुछ कार्यक्रम में कमी रहेगी। कार्यक्रम हो सकता है कि आप में से कुछ दोस्तों को फीका फीका सा लगे। खैर, ऐसा हम होने नहीं देंगे। आइए सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में लोफर फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, कुछ बातें कुछ गीत में मौसम शीर्षक पर कुछ गीत आपकी नज़र। और मौसम के बदलने में जो परिवर्तन हमें सकारात्मक या अपने अनुकूल महसूस होते हैं, उसमें हम ऐसा भी बोलते हैं कि मौसम में आज कुछ रंग भर गए हैं। रंगों को देखना एक अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। चमकदार रंग, चटकदार रंग हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करके एक सुकून की सांस हमें लेने के लिए मजबूर भी करते हैं, जो कि निश्चित रूप से एक आनंददायक अनुभूति होती है। बंदिश फिल्म का यह गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, आपकी नज़र।

तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और एक गीत आपकी नजर अनुराधा पौडवाल सुरेश ओबराय की आवाज में, यादों के मौसम फिल्म का ये गीत, आइए सुनते हैं इस गीत को। बेहद खूबसूरत अल्फाज और संगीत इस गीत में हमें सुनने को मिलेगा और फिर बात करते हैं इसके बाद।

भीगे बाल वो भीगा बदन वो भीगी भीगी हर धड़कन वो गाल हया में डूबे हुए वो होंठ वफा से लरसे हुए वो आंखें सोई सोई सी वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो क्यों खामोश हो तुम इस दिल से क्या नाराज हो तुम।

दोस्तों समय सीमित है, इजाजत चाहेंगे अपने दोस्त नवीन को। कार्यक्रम समेटने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में मौसम शीर्षक पर कुछ फिल्मी नगमे। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या और उसके बाद रात्रि 9 अंग्रेजी में समाचार होंगे। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और 9:15 से आगे आप विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरो गोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP

0: मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, यह अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना

साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आनंद बख्शी लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, फिल्म थी आपकी कसम। विविध भारती से यह है कार्यक्रम आपके लिए।

0: ज्वेल थी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

रंगोली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले लगभग 3,500 जिंगल्स के लिए आवाज दी। क्रिकेट विश्व कप 1999 के दौरान भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए जोश ऑफ इंडिया गीत में भी उन्होंने गाया। उन्होंने संगीत में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। केके का कहना था कि गायक का चेहरा दिखने के बजाय उसका सुना जाना ज्यादा जरूरी है।

0: ये गीत काफी लोकप्रिय रहा। हालांकि बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से। उनके गीतों से युवा अपने आप को रिलेट कर पाते थे क्योंकि उनके गीतों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी महसूस कर पाते थे और भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते थे, जैसे कि ये गाना उन्हीं के लिए गाया गया हो।
1: तड़प

1999 में उन्होंने अपना एक एल्बम लॉन्च किया पल, जिसका गीत यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है काफी लोकप्रिय रहा और स्कूल कॉलेज के लगभग हर फेयरवेल फंक्शंस का हिस्सा रहता था। इस गाने के बगैर कोई भी फेयरवेल फंक्शन अधूरा ही माना जाता था।

केके के चर्चित गानों की बात करें, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना आंखों में तेरी काफी लोकप्रिय हुए। काइट्स का जिंदगी दो पल की, जन्नत का गाना जरा सा, गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है।

उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया और उन्हें बचना ए हसीनो फिल्म के गाने खुदा जाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का स्क्रीन अवार्ड मिला।

के बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म भी करते थे और नेचर लवर भी थे। केके के कुछ अपने उसूल भी थे जिनसे वो समझौता नहीं करते थे। एक बार एक गाने को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें लगा कि गीत के बोल ठीक नहीं हैं और उनकी इस आपत्ति का सम्मान करते हुए गाने के बोल बदल दिए गए। अच्छे गायक की उनकी अपनी परिभाषा थी। केके मानते थे कि अच्छा सिंगर वही है जो किसी संगीतकार के गाने को अपना बना के गा सके।

0: संगीतकार ललित पंडित ने कृष्ण कुमार कुन्नाथ के लिए अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
1: के को पूरे म्यूजिक फ्रेटर्निटी बहुत प्यार करती है, बहुत ही अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत दोस्त थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में लाइफ में कभी कभी और शोबिज मुकेश भट्ट जी की फिल्म में गाने गाए हैं, इनमें सारे मेरे जतिन ललित के भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज में एक यूथ को अट्रैक्ट करने की एक क्षमता थी और गाने में जो सुर पकड़ने की ताकत थी उनमें बहुत थी। और सबसे बड़ी बात है जो सिंगर में लोग ढूंढते हैं और जो कुदरत की तरफ से आती है वो एक वॉइस क्वालिटी। उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही यूथफुल वॉइस क्वालिटी थी। और वॉइस क्वालिटी का ऐसा होता है कि एज से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, वॉइस पुरानी नहीं होती आपकी, आपकी गायकी आपको मेंटेन करनी पड़ती है और वो केके में थी।

का हिस्सा बने, जिसके लिए वो खास तौर से जाने जाते थे। युवा दिलों की धड़कन बने और अपने आखिरी पलों में भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो युवाओं के साथ ही थे। 53 वर्ष की अवस्था में मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में कॉलेज के कॉन्सर्ट के बाद हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए।

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर। आलेख और स्वर दिलीप का, संपादन और प्रस्तुति तेजस्वी कांबले की।
1: आज के फनकार।

अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजते हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम चांदनी रातें सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम के लिए हमें हमारे श्रोता दोस्तों की बहुत लंबी सूची फरमाइशी गीतों के लिए प्राप्त हुई है और गुजारिश रहेगी आप सभी से, जो भी हमारे साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, कृपया वो इस समय हमें कोई भी फरमाइश के लिए अपना व्हाट्सएप संदेश ना भेजें। सूची लंबी है, सभी को शामिल करना भी एक चुनौती कई बार बन जाता है, फिर भी बहरहाल कोशिश हम करेंगे कि सभी दोस्तों के नाम कार्यक्रम में शामिल करें। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बरसात की एक रात फिल्म के इस गीत के साथ। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आनंद बख्शी का लिखा और राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम का पहला गीत आप सबकी नज़र और पसंद करने वाले दोस्तों के नाम इस गीत के बाद।

श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना, बरसात की एक रात फिल्म से हमने उसे लिया था। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे दोस्त हैं जो सबसे पहला संदेश आज हमें प्राप्त हुआ, हम उसे शामिल कर रहे हैं। और आप हैं जलालाबाद शामली यूपी से राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी और सयान मंसूरी। दूसरा संदेश इसी कार्यक्रम के लिए सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक कुमार वर्मा, राजकुमार बोडाना। अगला संदेश हमारे दोस्त हैं विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नहाटा, दीक्षा और कुश मुणत। आप सब बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। ये हमारे साथी हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। ये संदेश हमारे इन दोस्तों का रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। अगला संदेश हमारे जो साथी हैं वो हैं लोहारू से लोकू कॉलोनी हरियाणा से, बिल्लू सिंह चिड़ालिया, लक्ष्मी, सुरेंद्र, बरखा, योगेंद्र, नरेंद्र और इनके दोस्त, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। ये हमारे साथी हैं रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज, ऋषि और कृष्णा घोड़के। हुरजा उत्तर प्रदेश से आप हैं तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश, चंदन और अंकुश अरोड़ा। ये हमारे साथी हैं पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना भगत। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, आप सब हैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। और ये हमारे साथी हैं विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्वी चौहान, इंदुरकर माई, बेबी शोरिया, श्रेयस, अंकिता, अनिकेत चौहान। आप सब हैं वरना शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से। और ये हमारे दोस्त हैं गांव जगूड़ी रादौर जिला यमुनानगर हरियाणा से, रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम और वीरेन। आप हैं गांव तेजा मोड़ी अम्बाड़ा से बंसीलाल संधु, कबीर सिंह संधु। और ये हमारे दोस्त हैं नम्रता, खुशबू, खुशदीप परिवार के सदस्य, चरकी दादरी हरियाणा से। गांव लसूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। तो दोस्तों, ये पहले गीत के लिए फरमाइश थी। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। रूप तेरा मस्ताना बोल आनंद बख्शी के और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: मंगल भवन मंगलहारी।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफी की आवाज में, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गीत आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस गीत को पसंद करने वाले हमारे साथी हैं आप सब, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। गांव व डाकघर निमनाबाद, जिला जींद, हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से आप हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी। गांव दुल्हापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आप हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। कृष्णा पार्क दिल्ली से आप हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओबराय। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूड़ी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूड़ी। गांव हीरा वाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु। पटेल नगर मलोट से आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, पारजू। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से राजेश सावले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल। ये संदेश हम ले रहे हैं हमारे इन दोस्तों का। आप सब हैं गांव बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, भागवत, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, समरराज, आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा। अगला संदेश मुगलपुरा बागपत से आप हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी और ये हमारे दोस्त हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल और सोपान ताइडे। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पल, विलिस डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव, साइना और निवान। गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवाशहर पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीक्षा और मैक्स। गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया। दोस्तों लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए हीर रांझा फिल्म में एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत।

राजकुमार फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। पसंद करने वाले श्रोता साथी आप सब, आप हैं अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक। आप सब हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। आप सब हैं नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी से। ये संदेश दिल्ली से मजनू का टीला, कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से अमना नसरीन बागवान, असमा परी, रविया मनताशा, आशु अहमद। यह संदेश हमारे इन दोस्तों का, शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनयना, सुकन्या और सविता, गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी, गांव टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से। ये हमारे दोस्त हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा, दंतरे की भाटापारा छत्तीसगढ़ से। गांव पंचायत काले गांव जाफराबाद मराठवाड़ा से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित, प्रथमेश, प्राणी, माफ कीजिए प्रणाली, सर्वद देशमुख, सानवी और कल्पना देशमुख। अगला संदेश हमारे इन साथियों का, आप सब हैं रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय बाहन पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और परिवार, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल तन्वी बोध, अंकित कांगड़ा, शिव कॉलोनी रादौर जिला यमुनानगर हरियाणा से राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा, गायत्री पुजारा, साहिल पुजारा और रोहन, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम वर्मा। श्रोता दोस्तों लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम में लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में मन मंदिर फिल्म से ये गीत।

मन मंदिर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शुद्ध दोस्तों, कार्यक्रम चांदनी रातें आप सुन रहे हैं अपने दोस्त नवीन के साथ। और अगली फरमाइश इस कार्यक्रम में हमें जो मिली है वो है आप सबकी, फाजिल्का पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, ट्वांशी खेड़ा, ये हमारे दोस्त हैं। सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक स्वाति, जमानिया गाजीपुर यूपी से आप हैं, जिला ये हो धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और अयान बाबू, गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित और हैप्पी, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से आप हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख मूसा, राजकुमार बोडाना, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहर जहां आप सब हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और ये संदेश हमारे इन दोस्तों का गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर राजस्थान से विनोद बरासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, जिव्यम जैन, गांव नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक, मंडी डब्वाली बठिंडा रोड से आप है राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी, तानिया, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू और पंकज साहू और त्रिपति साहू। श्रोता दोस्तों, लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए

एक निजी कंपनी आर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।